एफएम 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संबत 1948 के वैशाख माह की 25वीं तिथि, तदनुसार 15 मई सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:54 हो चुके हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। श्रोताओं, अब आइए आपको लेकर चलते हैं हिंदी में समाचार के लिए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
1: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में कई एयरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वैमानिकी विकास एजेंसी के विमान एकीकरण और उड़ान परीक्षण केंद्र की आधारशिला रखी जाएगी। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एनडीए समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज

परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एनडीए समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। सरकार ने अग्रिम प्राधिकरण योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देता है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है, ताकि उनकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। दोबारा बिना शुल्क सोने के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। इससे पहले इस योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर कोई सीमा नहीं थी। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 111 लोगों की मौत और 200 लोगों के घायल होने की खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल जायजा लेने का निर्देश दिया है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। कल शाम धर्मशाला में मुंबई इंडियंस ने एक गेंद शेष रहते 205 रन बनाकर जीत हासिल की। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत, कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन वार। आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का चिंतन। विद्वानों का कथन है, मुश्किलें केवल उन्हीं के हिस्से आती हैं जो उन्हें पार करने की हिम्मत रखते हैं, और मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जो कभी हार नहीं मानते। ये था आज का चिंतन। और आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं आज और प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा। अभी कुछ ही पलों में आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस। सुनिए आज का भाग 189, 6:35 पर। 6:45 पर संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ऐसी लागी लगन। कलाकार है गायक अनूप जलोटा। सुनिए इस श्रृंखला का चौथा भाग, प्रस्तुति मनीषा जैन की। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं आज शाम 6:45 पर। सात बजे भूले बिसरे गीत कार्यक्रम। 7:30 पर हम है राही प्यार के। 8:15 पर वंदे मातरम एक जय घोष। लेखक है मिलिंद सबनिस। प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। सुनिए इसका भाग 28। इसका पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज दोपहर 2 बजे। पर सुनिए चित्रलोक कार्यक्रम। 9:30 पर आज के फनकार। कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेत्री माधुरी दीक्षित पर। प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज रात 9:30 पर। 10 बजे सुनिए पिटारा में हेलो फरमाइश। 11 बजे रंग तरंग कार्यक्रम। 12:05 से सजेगी यादों की महफिल। दोपहर 1 बजे से तय करेंगे सुरीला सफर। 2:30 से सुनिए सदाबहार नगमे। 3 बजे हेलो सहेली। प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। 4 बजे सुनिए पिटारा में गीतों भरी कहानी। कहानी है जीवन एक सरल रेखा। लेखिका श्वेता उपाध्याय की लिखी कहानी। संपादन सहायक काजल भद्रगे। प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

5:30 पर सुनिए तराने नए पुराने, 6:35 पर संध्या रंजन, 7:00 सुनिए जयमाला, 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिए गुलदस्ता, 8:00 हवा महल में सुनिए हास्य नाटिका बुखार, लेखन है वीरेंद्र कश्यप का, निर्देशन है गंगा प्रसाद माथुर, इन्हीं की प्रस्तुति। आठ बजकर पंद्रह मिनट पर रात्रि चित्रलोक, 9:00 आपके लिए और 10:00 आप सुनेंगे छाया गीत, लेखक एवं स्वर राजुल अशोक का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी, 10:30 पर ढलती जाए रात। ये था आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा।

सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहउ मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजसु विधि हाथ। श्री रामचरितमानस का ये दोहा भारतीय जीवन दर्शन का मानो एक आधार स्तंभ है। राजा दशरथ की अंत्येष्टि तथा दशगात्र विधान संपन्न हो जाने के पश्चात मुनि वशिष्ठ ने राजसभा में भरत को धीरज बंधाते हुए ये वचन कहे थे। राजा दशरथ के निधन पर सोच करने का औचित्य नहीं है। सोच उस राजा के बारे में करना चाहिए जो नीति निपुण नहीं होता और जिसे प्रजा प्राणों के समान प्रिय नहीं होती। मुनि वशिष्ठ ने इस प्रकार नारी वर्ग सहित समाज के विभिन्न वर्णों, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी तथा अन्य लोगों के हित अहित और उन कार्यकलापों की चर्चा की जिनके कारण वे सोच करने के हेतु बनते हैं। राजा दशरथ तो सब प्रकार से बड़भागी थे, अतः उनके कारण विषाद व्यर्थ है। उन्होंने भरत को राज दिया है तो भरत को पिता के वचन को साकार करना चाहिए।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का पाठ का भाग 189।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: ऐसी लागी लगन, इस श्रृंखला में भक्ति के विविध रूपों और आयामों पर चर्चा हम कर रहे हैं अनूप जलोटा जी के साथ। इस कड़ी में आज भक्ति भाव की कौन सी छटा अनूप जी बिखेरेंगे, हम उन्हीं से पूछते हैं। अनूप जी बताइए,
1: आज हम कृष्ण की बात करते हैं। कृष्ण एक ऐसे ईश्वर हैं जो हमें अधिकार देते हैं, थोड़ी लिबर्टी दे देते हैं कि हम उनको चोर भी कह सकते हैं। हम उन्हें माखन चोर कहते हैं, हम उनको रणछोड़ कहते हैं, हम उनके साथ नृत्य कर सकते हैं, हम उनकी रासलीला में शामिल हो सकते हैं। भगवान ऐसे कौन से हो सकते हैं जो इतनी हमें इजाजत देते हो कि हम उनके साथ कर सकें। इसकी बड़ी सुंदर कहानी है कि जब भगवान राम सिंहासन पर बैठ गए, राजा बन गए, तो जो वानर सेना थी वो उनके पास आई और उन्होंने कहा कि प्रभु हमारे साथ तो बड़ा धोखा हो गया। उन्होंने कहा क्या धोखा हो गया, तो हम तो आपके भक्त हैं, हम आपके साथ खेलने आए थे, आनंद करने आए थे, और आपने हमको रावण युद्ध में लगा दिया। उसके बाद अब आप राजा बन गए, अब तो हम बिल्कुल आपके साथ खेल नहीं सकते, हम तो बड़ा दूर रहते हैं आपसे। तो भगवान राम ने कहा कि बात सही है, अब मैं राजा बन गया हूँ, अब तुम लोगों के साथ मैं खेल नहीं सकता, लेकिन द्वापर युग में मैं कृष्ण बन के आऊंगा और तुम लोगों को ग्वाल बाल बना दूंगा और हम सब खेलेंगे
0: जी।
1: तो अपने भक्तों को देखो भगवान यूं संभाले, भय राम जी के बानर, किशन जी के ग्वाले। तो भगवान कृष्ण एक ऐसे भगवान हैं जो हमें आनंद देते हैं, मित्र बन के हमारे साथ खेलते हैं। लीजिए ऐसा ही एक भजन आपको सुनाता हूँ।
2: वो काला एक बांसुरी वाला, बांसुरी

0: संगीत सरिता में भक्ति भाव पर आधारित श्रृंखला ऐसी लागी लगन। इस श्रृंखला में हमारे अतिथि हैं जाने माने गायक श्री अनूप जलोटा। इनसे बातचीत की है ममता सिंह ने। आज सुनते हैं इस श्रृंखला की चौथी कड़ी।
1: सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। विविध भारती के स्टूडियो में श्री अनूप जलोटा जी मौजूद हैं।
2: नमस्कार जी।
1: जागिए ब्रजराज कुंवर, कमल कोश फूले, कुमुदिनी जिये सकुच रही, भृंग लता झूले। श्रोताओं, कृष्ण भक्ति का संसार बड़ा विविध रंगी है। इसमें कृष्ण के बाल रूप, सखा रूप और मधुर रूप की अद्भुत छटा बिखेरी गई है।

0: सचमुच हम बांसुरी बजैया के रंग में जैसे डूब गए थे, खो से गए थे। अनूप जी, हमें बताइए कि इस भजन में किस राग की चर्चा थी?
1: कोई प्योर राग इसमें हमने इसमें इस्तेमाल नहीं किया, मिक्स है
0: जी। और हम ये भी आपसे जानना चाहते हैं कि कृष्ण के बहुत सारे भजन आपने गाए हैं, उन भजनों की रचना प्रक्रिया बताते हुए कुछ झलक प्रस्तुत करें।
1: मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, इस भजन को पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी ने सबसे पहले गाया और कमाल का गाया। उसके बाद उसी श्रृंखला में उसी भजन को कुछ उसी स्टाइल में मेरे पिताजी ने उतारा और उसको एक सरलता प्रदान करी। उसके बाद कई लोगों ने उस भजन को गाया अलग अलग धुनों में, लेकिन हमने, मैंने और पिताजी ने उसी धुन को साथ रखा जो पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी ने गाई थी। इस भजन के साथ साथ जो व्याख्या होती है वो बड़ी ही हृदय स्पर्शी है
0: जी।
1: कन्हैया आस पड़ोस के घरों में जाते थे माखन चुराने। एक गोपी बड़ी चालाक थी, उसने क्या किया था कि जहां माखन की मटकी टांग के रखी थी उसी रस्सी से एक घंटी भी बांध के रखी थी। सोचा था कि कन्हैया आएंगे, ये मटकी फोड़ेंगे, घंटी बजेगी, हम उनको पकड़ लेंगे। कन्हैया पहुंचे अपने साथियों के साथ, देखा कि घंटी भी बंधी हुई है, समझ गए कि ये गोपी अपने को बहुत चालाक समझती, तो घंटी को आदेश दिया बिल्कुल चुप रहना, बोलना नहीं, मेरे साथियों को भूख लगी है, सबको माखन खाना है, बिल्कुल चुप रहना। मटकी फोड़ी गई, कन्हैया के साथियों ने खूब माखन खाया और घंटी चुप, बिल्कुल चुप। जब सब खा चुके तो कन्हैया ने सोचा थोड़ा मैं भी खा लूं, और जैसे ही जरा सा माखन मुख सरगाया तो घंटी जोर जोर से बजने लगी।
0: क्या बात है,
1: कन्हैया ने कहा ये क्या, जब मेरे साथी खा रहे थे तो तुम चुप थी और मैंने जरा सा माखन खाया तुमने बजना शुरू किया। घंटी बोली हमारे ठाकुर जी भोग लगा रहे हो तो हम कैसे चुप रह सकते।
0: क्या बात,
1: बस आ गई गोपी, पकड़ लिया कन्हैया को, ले गई यशोदा के पास और यशोदा पूछ बैठी कन्हैया तूने माखन खाया क्या, और कन्हैया के मुख से अनायास

भोर और सांझ। तो भोर सुनिए भोर की राग, राग भैरव, सांझ राग यमन कल्याण। शायद आपको समय का आभास हो।

बेटा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में, समीर के बोल थे और आनंद मिलिंद का संगीत था। और श्रोताओं अब आइए जानते हैं स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का हाल और साथ ही साथ मौसम का पूर्वानुमान। दिनांक 14 मई 2026 को जिला पदाधिकारी रोहतास के द्वारा जिला पदाधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ में दैनिक साक्षात्कार किया गया। उक्त दैनिक साक्षात्कार के क्रम में 8 व्यक्तियों के द्वारा आवेदन पत्र शिकायत पत्र दिया गया, जिसमें आवेदक राजेश्वर प्रसाद शर्मा ग्राम पोस्ट मुड़ियार थाना कोड़ी गोला के द्वारा अनावश्यक रूप से लगे गेट को हटाने के संबंध में आवेदन पत्र दिया गया, जिसे शीघ्र निष्पादन कराने हेतु जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी रोहतास को अग्रसारित किया गया। आवेदक उमा शंकर साह ग्राम गंगहाड़ी प्रखंड दिनारा के द्वारा अतिक्रमण हटाने हेतु आवेदन पत्र दिया गया, जिसे जांच कर अविलंब कार्रवाई करने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी विक्रमगंज को निर्देशित किया गया। आवेदिका अनीता एएनएम अहराओं स्वास्थ्य उपकेंद्र दिनारा के द्वारा स्थानांतरण करने हेतु निवेदन पत्र दिया गया, जिसे जांच कर नियमानुसार कार्रवाई हेतु सिविल सर्जन रोहतास को निर्देशित किया गया। इसी प्रकार शेष आवेदन पत्र को संबंधित कार्यालय पदाधिकारी को शीघ्र निष्पादन हेतु अग्रसारित किया गया। जिला पदाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आम जनता से जुड़े मामलों का समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। और श्रोताओं अब आइए जान लेते हैं मौसम का हाल। आज सुबह सूर्योदय हुआ 5:10 पर और सूर्यास्त होगा 6:31 पर। आज आर्द्रता होगी 68% और दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है।

और श्रोताओं अब आइए कार्यक्रम में सुनवाते हैं अब एक और प्यारा गीत, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म से लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल, जतिन ललित का संगीत।

इस खूबसूरत गीत के बाद श्रोताओं आइए जान लेते हैं विभिन्न समाचार पत्रों में छाई आज की सुर्खियों को। चारों अखबारों के आज हम श्रोताओं तीन अखबार के साथ हाजिर हैं, जिनमें दैनिक जागरण, दैनिक हिंदुस्तान और प्रभात खबर शामिल है। आज दैनिक भास्कर नहीं है हमारे साथ। तो हिंदुस्तान की आज की सुर्खी है, प्रोत्साहन राशि के लिए मेधा सॉफ्ट पोर्टल 25 मई से खुलेगा। मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना और मेधावृत्ति योजनाओं के लिए मेधा सॉफ्ट पोर्टल 25 मई से खुलेगा। शिक्षा विभाग ने वर्ष 2026 में मैट्रिक और इंटर परीक्षा पास करने वाले छात्र छात्राओं के लिए मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना और मेधावृत्ति योजनाओं के लिए मेधा सॉफ्ट पोर्टल खोलने का निर्देश जारी किया है। शिक्षा विभाग के निदेशक प्राथमिक शिक्षा सह नोडल पदाधिकारी डीबीटी ने एनआईसी के तकनीकी निदेशक को पत्र लिखकर 25 मई से मेधा सॉफ्ट पोर्टल खोलने का अनुरोध किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, पटना सहित 16 जिलों में 750 से अधिक नाइट कैमरे लगेंगे। बिहार में सड़क दुर्घटना, आपराधिक घटनाओं और यातायात नियमों को तोड़ने वालों पर अंकुश लगाने के लिए राज्यभर में कुल 750 से अधिक नाइट कैमरे लगाए जाएंगे। परिवहन विभाग के मुताबिक पटना सहित 16 जिलों में 750 नाइट कैमरे लगने हैं, जिसमें पटना के अलावा गया, भागलपुर, जहानाबाद, बेगूसराय, किशनगंज, पूर्णिया, बांका, जमुई, डेहरी, सासाराम और सीतामढ़ी सहित अन्य जिलों के राज्य नेशनल हाईवे मुख्य सड़कों, गली मोहल्ले में कैमरे लगाने के लिए जगह चिन्हित होगी। ये कैमरे पीपीई मोड में लगाए जाएंगे और लगाने वाले निजी संचालकों को चालान भुगतान के आधार पर कमीशन दिया जाएगा। इसको लेकर जून जुलाई से इन सभी जिलों में प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। परिवहन विभाग की ओर से वर्तमान में जिला मुख्यालयों के भीड़ भाड़ वाले व्यस्तम और अन्य चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। इसके माध्यम से यातायात व्यवस्था की निगरानी हो रही है। बिना हेलमेट बाइक चलाने वाले एवं सीट बेल्ट पहने बिना कार चलाने वालों के साथ ही अन्य तरह के यातायात नियमों को तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। प्रभात खबर की दूसरी सुर्खी है, अगले माह लागू होगा स्मार्ट पीडीएस, नए आवेदन पर 20 दिनों तक रोक। राज्य के सभी पीडीएस दुकानों को स्मार्ट पीडीएस सिस्टम से जोड़ने का काम शुरू हो गया है। अब देश भर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाया जाएगा। इसके तहत राशन कार्ड से जुड़ी कई पुराने डिजिटल प्रणालियों और आवेदन सेवाओं को अपग्रेड किया जाएगा, ताकि लाभुकों को तेज, सुरक्षित और पारदर्शी सुविधा मिल सके। नई व्यवस्था लागू करने की प्रक्रिया के तहत बिहार में ईपीडीएस प्लेटफॉर्म, आरसी ऑनलाइन और आरसीएमएस ऑफलाइन जैसी सेवाओं को अस्थायी रूप से अगले आदेश तक स्थगित किया गया है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, जिला शिक्षा पदाधिकारी हर महीने 11 विद्यालयों की मॉनिटरिंग करेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी हर महीने 11 सरकारी विद्यालयों की मॉनिटरिंग करेंगे। शिक्षा विभाग ने अलग अलग अधिकारियों को भी जिम्मेवारी सौंपी है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हर महीने 25 विद्यालयों को देखेंगे। सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक, सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के पद

0: सहित जिले के पुट्टपर्ती में कई एरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर श्री सिंह उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान कार्यक्रम सुविधा की भी आधारशिला रखेंगे। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रूपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97.77 रूपये प्रति लीटर जबकि डीजल की कीमत 90.67 रूपये प्रति लीटर हो गई है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 106.68 रूपये और डीजल 93.14 रूपये प्रति लीटर की दर से मिलेगा। कोलकाता में पेट्रोल 108.74 रूपये और डीजल 95.13 रूपये प्रति लीटर पर उपलब्ध होगा। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 103.77 रूपये और डीजल का मूल्य 95.35 रूपये प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। एक रिपोर्ट।
1: ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है ताकि उसकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। इसमें यह भी कहा गया है कि दोबारा बिना शुल्क सोने के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप और धनशोधन मामले में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया है। कोलकाता के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में कल शांतनु से 10 घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। शांतनु सिन्हा को आज अदालत में पेश किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने कालीघाट पुलिस स्टेशन के पूर्व प्रभारी शांतनु को सोना पप्पू उर्फ विश्वजीत पोद्दार द्वारा चलाए जा रहे कथित अपराध गिरोह से जुड़े धनशोधन मामले में कई बार पूछताछ के लिए तलब किया था। सूत्रों के अनुसार ईडी को शांतनु बिस्वास से जुड़े कुछ संदिग्ध वित्तीय लेनदेन मिले हैं, जिनमें सोना पप्पू और उनके करीबी सहयोगी भी शामिल हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एडीएस समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई है, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। सीबीआई ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह के विरुद्ध विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और एलआईसी द्वारा हजारों करोड़ रुपए के कथित धोखाधड़ी के 7 मामले दर्ज किए गए हैं। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम

0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केरल में सरकार गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। सोमवार को नए यूडीएफ मंत्रालय का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस बीच नए मंत्रालय के सदस्यों को लेकर चर्चा जारी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: वीडी सतीशन सोमवार को केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यूडीएफ सूत्रों ने तिरुवनंतपुरम में बताया कि मुख्यमंत्री के साथ पूरी मंत्री परिषद भी शपथ लेगी। वहीं नए मंत्रियों और उनके विभागों को लेकर यूडीएफ के घटक दलों के बीच गहन चर्चा जारी है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला 4 मई को चुनाव परिणाम आने के बाद तिरुवनंतपुरम और नई दिल्ली में 10 दिन तक चली लगातार बैठकों और विचार विमर्श के बाद लिया गया। कांग्रेस और यूडीएफ के अन्य सहयोगी दल कल तक नई मंत्री परिषद को अंतिम रूप देने की कोशिश में जुटे हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एस पुल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: केरलम के शबरीमला मंदिर में कल शाम से मासिक पूजा एडवम शुरू हो गई है। मंदिर में दर्शन सुबह 5 बजे से किए जा सकते हैं। श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन बुकिंग सुविधा उपलब्ध है। उधमपुर जिले के शिव पार्वती मंदिर में आयोजित होने वाला ऐतिहासिक 3 दिवसीय वार्षिक मोंगरी मेला आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसे शिव पार्वती मेले के नाम से भी जाना जाता है।
2: मेले में मोंगरी, पंचैरी, उधमपुर और जम्मू कश्मीर के अन्य क्षेत्रों तथा बाहर से भी भारी संख्या में लोग सरदब्बड़ आते हैं। वे यहां कुदरती गुफाओं में विराजमान भगवान शिव, देवी पार्वती और अन्य देवी देवताओं को नमन करते हैं। इन गुफाओं में प्राकृतिक रूप से बना 9.5 फीट का शिवलिंग है। युवा सेवा और खेल विभाग के सहयोग से कबड्डी, रस्साकशी, पत्थर उठाना और अन्य मनोरंजक गतिविधियों का भी आयोजन किया जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से मैं एन गुलशन रैन।
0: महाराष्ट्र के सतारा में आज प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों और महा आवास अभियान के राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान लाभार्थियों के लिए निर्मित 5 लाख घरों का आवंटन किया जाएगा। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह के हिस्से के रूप में आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित आकाशवाणी केंद्र द्वारा एक वॉकथन का आयोजन किया गया। ये आयोजन आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्षों के सफर को यादगार बनाने के लिए किया जा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना 8 जून 1936 में हुई थी। केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सिक्किम के 3 दिन के दौरे पर कल रात नामची जिला पहुंचे। आज वे प्रस्तावित नामची पर्यटन सर्किट पीएम डिवाइन के तहत भालिंडुगा में स्काई वॉक परियोजना और गंगटोक के आर्किडियम जैसी कई पर्यटन स्थलों और विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने केरलम में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। राज्य के तटवर्ती इलाकों में आज 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। खेलों में भारत की वुशू खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाऊ में आयोजित 11वें सांडा विश्व कप में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की थी फुआंग गांगू को हराया। प्रतिस्पर्धी वुशू को ताउलू और सांडा में 2 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है वैष्णवी।
3: फरत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सवाल उठाए जाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति समिति में मंत्री क्यों, तटस्थ हो तीसरा सदस्य। जनसत्ता के शब्द हैं ये बहुमत की तानाशाही, चयन समिति में निष्पक्ष व्यक्ति क्यों नहीं। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित किया। अब दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब में भी एसआईआर, दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है। दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के लिए कई जरूरी कदम उठाए। सरकारी दफ्तरों का समय बदला, 2 दिन घर से काम, हिन्दुस्तान सहित सभी अखबारों की खबर है। नव भारत टाइम्स ने सीयूईटी यूजी में सुधार लाने पर

0: लेख प्रकाशित किया है। अपने संपादकीय पन्ने पर पत्र लिखता है, एग्जाम पैटर्न में लगातार बदलाव और दूर सेंटर होने की वजह से परेशानी में स्टूडेंट्स, एनटीए का बोझ हट बांटा जाए। वहीं राजस्थान पत्रिका ने आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर एक शोध प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, समय बदला, दूरियां बढ़ी, लेकिन परिवार अब भी सबसे मजबूत सहारा। 1993 में संयुक्त राष्ट्र ने की थी इस दिवस की शुरुआत।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत शुल्क मुक्त सोने के आयात की सीमा 100 किलोग्राम तय की। प्रवर्तन निदेशालय ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप में कोलकाता पुलिस उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया। और वुशु में अपर्णा दहिया ने मकाऊ में सांडा विश्व कप में महिला वर्ग के 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत।

हकीकत फिल्म का ये देशभक्ति गीत हम सुन रहे थे। मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में कैफी आजमी के बोल, मदन मोहन का संगीत। और श्रोता, इसी के साथ देशभक्ति संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:20 हो चुके हैं। श्रोताओं, अब लीजिए पेश है अगला कार्यक्रम, फरमाइशी पत्रों पर आधारित पसंद आपकी। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में। और श्रोता, आपके प्यारे प्यारे पत्रों को इस कार्यक्रम में हमने शामिल कर लिया है। पहला गीत हमारे श्रोता सुनना चाहते हैं उदित नारायण और साधना सरगम की आवाजों में फिल्म अनाड़ी से। तो आप सभी को आपकी पसंद का गीत हम सुनवा रहे हैं। और आप हैं छत्रपति सांभाजी नगर से, राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश। आपने सुनना चाहा है अनाड़ी फिल्म का ये खूबसूरत गीत। तो चलिए हम आपको आपकी पसंद का गीत सुनवा रहे हैं। एक और पत्र ले लेते हैं, इन्होंने कोई भी गीत सुनना चाहा है। आप हैं नाज मंजिल मैसोर सीतामढ़ी बिहार से, अकरम हुसैन, इशरत अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, अरहान, हमजा, मुजम्मिल, हुमेरा नाज, सुमेरा नाज, अबीहा नाज, शाहिन नाज, नूरी नाज, बच्चू शेख और चीना शेख। कोकिलवारा उराई जिला मुजफ्फरपुर से हैं फैसल शेख, नुजहत जहां नाज। शेख टोली समस्तीपुर से हैं शाहनवाज परवेज और मुसरत जहां नाज। तो चलिए आप सभी सुनिए अनाड़ी फिल्म का ये गीत।

बहुत ही खूबसूरत गीत हम सुन रहे थे फिल्म अनाड़ी से उदित नारायण और साधना सरगम की आवाजों में। अब आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म मुकाबला से अनुराधा पौडवाल और अभिजीत की आवाजों में। इस गीत को सुनना चाहते हैं हमारे ये श्रोता जो कि हैं थाना मोड़ गढ़नोखा रोहतास से मुन्ना भाई मंसूरी, नजमुन्निशा, सद्दाम मंसूरी, नगमा निशा, लाल बाबू, सिमरन अली, अरबाज मंसूरी, सैफ अली, शबाना और शहबाज। तो आप सभी को आपकी पसंद का गीत हम सुनाएंगे। कुछ और पत्र ले लेते हैं और ये अगला पत्र है जिन्होंने लिखा है अपनी पसंद से कोई भी गीत सुनवा दें। आप हैं ब्रह्मपुरा।

निगाछी से भाई अच्छीलाल राय, पान्नो देवी, मुकेश कुमार राय, प्रेम कुमार और प्रिंस कुमार। तो आपको भी हम सुनवाएंगे मुकाबला फिल्म का ही नगमा। और एक और पत्र है, ये है लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी और दतरंगी से भागवत प्रसाद वर्मा। इन्होंने भी कोई भी गीत सुनना चाहा है, तो चलिए हम सभी सुनते हैं मुकाबला फिल्म का ये गीत।

ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का पसंद आपकी कार्यक्रम में। और श्रोताओं भाई सुनते अगला गीत हद कर दी आपने फिल्म से आनंद राज आनंद की आवाज में। और इस गीत को सुनना चाहते हैं हमारे ये श्रोता जो कि हैं डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राजपाल गजभिये राधिका गजभिये अनिस्का और तन्मय बिलाई छत्तीसगढ़ से हैं रोशन देवांगन कौशल्या देवांगन और हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन। तो आप सभी को सुना रहे आपकी पसंद का गीत हद कर दिया आपने फिल्म से। कुछ और पत्र ले लेते हैं। ये पत्र है सदाबहार रेडियो श्रोता संघ के श्रोताओं का। आप है ताजपुर मोरवा से कारी राय कारी मीनाकारी पुंजराज आर्यन आरती पुंज आकर्षण पुंज जयश्री पिंकी रिंकी नीतू मोहम्मद फारूक ललन मिश्रा ढोली सकरा से जयंत कुमार बैरागी। आप सभी को सुनवा रहे हैं हद कर दिया आपने फिल्म का गीत। और एक और पत्र है गोकुल चौक गंगजला सहरसा से राधे कुमार विद्यार्थी सविता राधे राकेश रंजन राजीव रंजन संजय कुमार ओम कुमार गुंजेश कुमार रिया रानी कुमकुम कुमारी साक्षी बुल्की वाली फलना झा नया नगर सुपौल से श्वेता रंजन पप्पू जी रजनीश कुमार आनंद कुमार आशुतोष कुमार अमिताभ कुमार और गजेंद्र कुमार निराला ने कोई भी गीत सुनना चाहा है। तो चलिए सभी सुनते हैं हद कर दिया आपने फिल्म का ये गीत।

हद कर दी आपने। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे आनंद राज आनंद की आवाजों में, और बहुत ही ये खूबसूरत गीत हमने सुना। और अब आइए पढ़ते हैं आपके अगले पसंद की ओर। और अगला गीत है शतरंज फिल्म से साधना सरगम और कुमार सानू की आवाजों में। इस गीत को सुनना चाहते हैं हमारे ये श्रोता जो कि है जय हिंद तेंदुआ नवीनगर औरंगाबाद से, गिरेंद्र सिंह, अजीत सिंह, सुजीत और टुनटुन। ये हमारे श्रोता हैं महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रियांश ठाकुर। इन्होंने कोई भी गीत सुनना चाहा है, तो चलिए आप सभी सुनिए अगला गीत शतरंज फिल्म से साधना सरगम और कुमार सानू की आवाजों में।

0: केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: इधर आइए, इधर।
2: इधर?
1: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
3: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
2: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
3: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
2: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222502। हमारा ईमेल एड्रेस है patna@gmail.com।
3: शुभवाणी,
2: लाभवाणी,
3: आकाशवाणी।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
5: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स,

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप दीप्ति रमन से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सरकारी अस्पतालों से मरीजों को रेफर करने की प्रक्रिया को समाप्त करने के निर्देश दिए। पथ निर्माण मंत्री कुमार शैलेंद्र ने कहा, भागलपुर के विक्रमशिला सेतु से अगले 15 दिनों में हल्के वाहनों का आवागमन शुरू हो जाएगा। बिहार के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी पहली बार भारतीय क्रिकेट की एक टीम में शामिल।

0: और मौसम विभाग ने आज उत्तर और दक्षिण बिहार के कई जिलों में बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि सरकारी अस्पतालों से मरीजों को रेफर करने की प्रक्रिया को समाप्त किया जाएगा। श्री चौधरी ने इसके लिए अधिकारियों को मानक संचालन प्रक्रिया SOP तैयार करने के निर्देश दिए हैं। दरभंगा मेडिकल कॉलेज और एम्स की समीक्षात्मक बैठक के दौरान श्री चौधरी ने यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अत्यंत जरूरी होने पर ही मरीजों को बड़े अस्पताल में रेफर किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने दरभंगा एम्स और DMCH विस्तार का काम तेजी से पूरा करने के भी निर्देश दिए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री ने दरभंगा हवाई अड्डे की सुरक्षा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को हस्तांतरित करते हुए कहा कि दरभंगा हवाई अड्डे का नामकरण कवि कोकिल विद्यापति के नाम पर किया जाएगा। पथ निर्माण मंत्री कुमार शैलेंद्र ने कहा है कि विक्रमशिला सेतु से अगले 15 दिनों में हल्के वाहनों का आवागमन शुरू हो जाएगा। मुंगेर में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शैलेंद्र ने बताया कि इसके लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO की टीम देश के पहले बेली ब्रिज बनाने का काम करेगी।
1: अगले 15 दिन के अंदर में उसको लाइट वेकिंग को हम लोग शुरू करेंगे और वो वैली ब्रिज है जो देश का पहला वैली ब्रिज है बनने जा रहा है और उस पर जो स्ट्रक्चर फिर बाद में बनेगा वो ट्रस्ट के माध्यम से उस पर कास्टिंग होगा जो कि 35 साल की गारंटी होगी। पूरे पारदर्शिता के साथ प्रामाणिकता के साथ वो कार्य हो रहा है।
0: पथ निर्माण मंत्री ने कहा कि प्रदेश में पुलों की निगरानी के लिए एक स्पेशल टीम बनाई जाएगी। इसके लिए एक एक वरीय अभियंता को प्रमंडलवार जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।
1: 9 कमिश्नरी को बांटे और उसमें अलग अलग हर कमिश्नरी में एक इंजीनियर रहेगा और उसका पूरा रूपरेखा तैयार करेगा। उसमें कितने सड़क हैं, कितने पुल हैं, कब बना है, कब शुरू हुआ, क्या स्ट्रेंथ है, क्या इसका लाइफ है, इस सारी जानकारी हमारे कार्यालय से होगी। विशेष तौर पर हमारी टीम महाराष्ट्र जाएगी, गुजरात जाएगी, तमिलनाडु जाएगी और वहाँ की जो तकनीक है उसको देखेगी। उसके बाद यदि यहाँ से बेहतर तकनीक होगा तो अब उसका जो तकनीक बेहतर होगा उसको यहाँ भी इस्तेमाल करेंगे।
0: सूचना और प्रावैधिकी मंत्री नीतीश मिश्रा ने शासन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के उपयोग को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया है। पटना में विभागीय समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि AI आधारित तकनीकों के प्रयोग से शासन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया जा सकता है। उन्होंने सभी परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन, तकनीकी गुणवत्ता और डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया। केंद्र सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। एक रिपोर्ट।
2: ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है ताकि उसकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। इसमें यह भी कहा गया है कि दोबारा बिना शुल्क सोने के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में उच्च शिक्षा सचिव, विद्यालय शिक्षा सचिव, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक, CBSE के अध्यक्ष और केंद्रीय विद्यालय संगठन तथा नवोदय विद्यालय समिति के आयुक्तों सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। प्रदेश के सभी विद्यालयों की निगरानी बिहार इजी स्कूल ट्रैकिंग प्लस ऐप के माध्यम से की जाएगी। शिक्षा विभाग ने 1 से 12 तक के विद्यालयों के लिए यह व्यवस्था अनिवार्य कर दी है। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि 21 मई से प्रदेश के सभी विद्यालयों सतत और प्रभावी निरीक्षण BEST प्लस ऐप के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि किसी स्कूल में विद्यार्थियों की उपस्थिति 60% से कम पाई जाती है तो शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों को अभिभावकों से संपर्क कर उपस्थिति बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश के सभी सार्वजनिक वितरण प्रणाली

0: पीडीएस दुकानों को स्मार्ट पीडीएस सिस्टम से जोड़ने का काम शुरू हो गया है। इसके अंतर्गत राशन कार्ड से जुड़ी पुरानी डिजिटल प्रणालियों और आवेदन सेवाओं को और बेहतर किया जाएगा। विभाग के विशेष सचिव उपेंद्र कुमार ने बताया कि खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के निर्देश पर राज्य में स्मार्ट पीडीएस व्यवस्था लागू की जा रही है। सचिव ने बताया कि नई व्यवस्था लागू करने की प्रक्रिया के तहत राज्य में स्मार्ट पीडीएस व्यवस्था से राशन कार्ड सेवाओं में एक बड़ा बदलाव होगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए 15 से 20 दिनों तक नए राशन के आवेदन की प्रक्रिया बंद रहेगी। वैश्विक ईंधन संकट के बीच तेल विपणन कंपनियों ने देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। पेट्रोल की कीमतों में प्रति लीटर ₹3.14 जबकि डीजल की कीमतों में ₹3.11 प्रति लीटर की वृद्धि हुई है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारी एक्स हैंडल @EIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश की सभी पंचायतों में 19 मई से नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए सहयोग शिविर का आयोजन किया जाएगा। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने इस संबंध में सभी प्रमंडलीय आयुक्त, जिला पदाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी किए हैं। निर्देश के अनुसार प्रत्येक महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को सहयोग शिविर का आयोजन किया जाएगा। ये शिविर पंचायत सरकार भवन और उनके निकट किसी सार्वजनिक स्थल पर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 30 दिन पहले से शुरू होगी। मौसम विभाग ने आज उत्तर और दक्षिण बिहार के कई जिलों में बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। इस दौरान शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार सहित 19 जिलों में बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग के अनुसार इस अवधि में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की आशंका है।
2: दिनांक 15 मई को राज्य के उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में मेघ गर्जन बटा वज्रपात के साथ तेज हवा, हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: राज्य सरकार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में सभी जिलों के सिविल सर्जनों को नाव पर अस्पताल चलाने के निर्देश दिए हैं। इन नाव अस्पतालों में चिकित्सा पदाधिकारी, ANM और पारा मेडिकल कर्मी तैनात रहेंगे। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह चलंत अस्पताल बाढ़ और जल जमाव से घिरे क्षेत्रों में घूम घूम कर मरीजों का उपचार करेंगे। सरकार ने सभी जिला पदाधिकारियों को नाव और नाविक उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी दी है। इस संबंध में विभाग ने सभी जिलों से दवाओं की उपलब्धता का ब्यौरा मांगा है। प्रदेश में सड़क दुर्घटना, आपराधिक घटनाओं और यातायात नियमों की निगरानी के लिए पटना सहित 16 जिलों में 750 से अधिक नाइट कैमरे लगाए जाएंगे। परिवहन विभाग के अनुसार पटना के अलावा गया, भागलपुर, जहानाबाद, बेगूसराय, किशनगंज, पूर्णिया, बांका, जमुई, अन्य जिलों में राष्ट्रीय राजमार्ग, मुख्य सड़कों और गली मोहल्लों के कैमरे लगाए जाएंगे। रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से आज से असिस्टेंट लोको पायलट के 11,000 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभ्यर्थी 14 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इधर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट में नामांकन की तिथि 18 मई तक बढ़ा दी है। इससे पहले नामांकन की अंतिम तिथि 12 मई निर्धारित थी। वहीं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की 12वीं की कंपार्टमेंट और सप्लीमेंट्री परीक्षा के लिए आवेदन 2 जून से शुरू होगा। यह परीक्षा 15 जुलाई को होगी। बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रदेशवासियों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की है। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर प्रदेशवासियों से गैर जरूरी विदेश यात्राओं को एक वर्ष तक टालने

का आग्रह किया है। साथ ही खाद तेल का उपयोग कम करने और प्राकृतिक खेती को अपनाने पर भी जोर दिया है। पूर्व मध्य रेलवे ने राजगीर में लगने वाली मलमास मेले को लेकर यात्रियों की सुविधा के लिए राजगीर और हावड़ा के बीच एक जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन बिहार शरीफ, अस्थावा, बरबीघा, शेखपुरा, किउल और भागलपुर के रास्ते चलेगी। हावड़ा राजगीर स्पेशल ट्रेन कल से 17 जून तक तथा राजगीर हावड़ा स्पेशल ट्रेन 17 मई से 18 जून तक प्रतिदिन संचालित होगी। इधर रेलवे ने पटना हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव जमुई स्टेशन पर देने का फैसला किया है। यह व्यवस्था आज से शुरू हो गई है। बिहार के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को पहली बार भारतीय क्रिकेट की ए टीम में शामिल किया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने वैभव को आगामी श्रीलंका और अफगानिस्तान के साथ होने वाली एक दिवसीय त्रिकोणीय सीरीज के लिए भारतीय ए टीम में जगह दी है। गौरतलब है कि आईपीएल क्रिकेट समेत अन्य प्रतियोगिताओं में वैभव ने शानदार प्रदर्शन किया है। इधर आईपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। यह मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। वहीं कल धर्मशाला में खेले गए मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, बिहार की हवाई संपर्कता 5 वर्ष में 10 गुना बढ़ेगी। अखबार लिखता है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दरभंगा हवाई अड्डे की सुरक्षा सीआईएसएफ को सौंपी। दैनिक जागरण लिखता है, पेट्रोल में 3.14 रुपए और डीजल में प्रति लीटर 3.11 रुपए की हुई वृद्धि। दैनिक भास्कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखता है, बिहार में खेती से लेकर फैक्ट्री तक हर क्षेत्र में एआई का जोर दिखेगा। प्रभात खबर ने बिहार कोचिंग संस्थान विधेयक की खबर को अपनी लीड बनाते हुए लिखा है, बिना रजिस्ट्रेशन कोचिंग चलाने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना। आज अखबार का शीर्षक है, बिहार विधान परिषद उपचुनाव में राजद उम्मीदवार जीता। राष्ट्रीय सागर लिखता है, वीडी सतीशन केरल के होंगे नए मुख्यमंत्री, 18 को लेंगे शपथ। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सरकारी अस्पतालों से मरीजों को रेफर करने की प्रक्रिया को समाप्त करने के निर्देश दिए। पथ निर्माण मंत्री कुमार शैलेंद्र ने कहा, भागलपुर के विक्रमशिला सेतु से अगले 15 दिनों में हल्के वाहनों का आवागमन शुरू हो जाएगा। बिहार के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी पहली बार भारतीय क्रिकेट की ए टीम में शामिल। और मौसम विभाग ने आज उत्तर और दक्षिण बिहार के कई जिलों में बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: इधर आइए इधर।
1: इधर?
0: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
2: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
1: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
2: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
1: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
2: शुभ वाणी,
1: लाभ वाणी,
0: आकाशवाणी।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल

0: कल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी

0: कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से
4: एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए कार्यक्रम संबंधी जानकारी दे देते हैं।

अब से थोड़ी ही देर बाद सुबह 9:10 पर गीत मालिका कार्यक्रम में हिंदी फिल्मी गीतों का हम आनंद लेंगे। सुबह 9:30 पर हम चलेंगे विविध भारती केंद्र और सुनेंगे आज के फनकार कार्यक्रम। सुबह 10:00 दिल्ली से हिंदी में समाचार प्रसारित होगा और सुबह 10:05 पर हम लेकर आएंगे साप्ताहिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। संकलन और स्वर होगा रजनीश कुमार श्रीवास्तव का, प्रस्तुतकर्ता होंगे संतोष कुमार। सुबह 10:30 पर आप सुनिएगा भोजपुरी एल्बम लोकगीत का कार्यक्रम लोक माधुरी।

सुबह 10:45 पर आप सुनेंगे भोजपुरी एल्बम सॉन्ग का कार्यक्रम रसधार और दिन में 11 हम चलेंगे विविध भारती के स्टूडियो और सुनेंगे कार्यक्रम रंग तरंग। दिन में 12 दिल्ली से हिंदी में समाचार प्रसारित होगा। शाम 5:10 पर आप सुनिएगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन और शाम 5:30 पर हम लेकर आएंगे सखियों का मनपसंद कार्यक्रम घर आंगन। इसमें बहनों से बातें होंगी परिवार जीवन का आधार अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर। पाक कला में गर्मियों में सत्तू का शरबत बनाएं, इस पे आप इस रेसिपी के बारे में जानेंगे। गीत संगीत और भी बहुत कुछ इस कार्यक्रम में शामिल होगा। आज के इस कार्यक्रम में सूत्रधार हैं विनीता सिंह और प्रस्तुतकर्ता हैं संतोष कुमार। शाम 6 आप सुनेंगे ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम गांव घर। इसमें चर्चा सुनेगा अपने परिवार पर भी दे ध्यान अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर और लोकगीत में आप सुनेंगे सुरेंद्र प्रसाद से लोकगीत। वार्ता सुनेगा विश्व शांति में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका पर वार्ताकार अमित मुखर्जी से वार्ता और एक जानकारी में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शांतिपूर्वक सहजीवन दिवस पर भी आपको जानकारी मिलेगी। इस कार्यक्रम में आज के सूत्रधार हैं संध्या सिंह और प्रस्तुत करता है संतोष कुमार। शाम 6:30 पर हम लेकर आएंगे भोजपुरी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सांझ गीत और शाम 7:15 पर आप सुनिएगा सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास। शाम 7:25 पर पटना से प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल का प्रसारण होगा और शाम 7:50 पर हम लेकर आएंगे ईमेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम ई मनपसंद। रात्रि 8:45 पर दिल्ली से समाचार संध्या का प्रसारण होगा और हमारे केंद्र से रिले होगा। रात्रि 9 लोकधारा में भोजपुरी लोकगीत का आनंद लीजिएगा। रात्रि 9:15 पर आप सुनिएगा कार्यक्रम बंदगी और आज के फनकार कार्यक्रम विविध भारती से सुनिएगा रात्रि 9:30 पर। रात्रि 10 हिंदी एल्बम सॉन्ग का कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे रसरंग और रात्रि 10:30 पर चित्रपट तराने कार्यक्रम में हिंदी फिल्मी गीतों का आनंद लीजिएगा। रात्रि 10:55 पर अगले दिन प्रसारित होने वाले

कार्यक्रमों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। और रात्रि 11 बजे दिल्ली से हिंदी में समाचार, अंग्रेजी में समाचार रात्रि 11:05 पर। सभा का समापन हम करेंगे रात्रि 11:10 पर। तो श्रोताओं, ये थी कार्यक्रम संबंधी जानकारी आज हमारे केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के माफ कीजिएगा सुबह के 9:10 हो चुके हैं और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीत मालिका। स्वागत है आप सभी का हिंदी फिल्मों के इस खूबसूरत सफर में। और पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं 1942 ए लव स्टोरी फिल्म से, ये गीत।

0: अकेले हम अकेले तुम, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में। बोल थे मजरूर सुल्तानपुरी के, संगीत था अनु मलिक का। इसके पहले आपने सुना था 1942 ए लव स्टोरी फिल्म का गीत कुमार सानू की आवाज में, जावेद अख्तर के बोल, राहुल देवबर्मन का संगीत। अब आइए सुनते अगला गीत फिल्म बाजीगर से, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में, नवाब आरजू के बोल, अनु मलिक का संगीत। लेकिन सबसे पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

बाजीगर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में नवाब आरजू के बोल और अनु मलिक का संगीत। श्रोताओं, इसी के साथ हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत मालिका अब यहीं संपन्न होता है। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखिए सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित या मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, कामकाज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

नमस्कार, कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के फनकार उस जगमगाती स्माइल के नाम जिसके जादू से बचना मुश्किल है।

0: अलग ही है उनका हर अंदाज।
1: ये निगाहें नश्तर, ये होंठ कौसर, मेरी आगोश में होश भी बेहोश होगा।
0: तो आइए मिलते हैं द गॉर्जियस सुपर टैलेंटेड डांसिंग डीवा माधुरी दीक्षित से।

की लाडली और घर में सबसे छोटी सबके दुलारी माधुरी दीक्षित का जन्म 15 मई 1967 को मुंबई में हुआ। नृत्य के प्रति जन्मजात रुझान का असर था जो नन्ही माधुरी संगीत सुनते ही ठुमकने लगती। 3 साल की उम्र से ही उन्होंने कथक सीखना आरंभ किया। कुछ ही वर्षों में कथक की बारीकियां उनके नृत्य में नजर आने लगी। जल्दी उनकी डांस परफॉर्मेंस सराही जाने लगी और

पढ़ाई के साथ साथ माधुरी दीक्षित कल्चरल एक्टिविटीज में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करती। स्कूली शिक्षा के बाद माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनने के उद्देश्य से उन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया। कुछ ऐसे संयोग बने कि उन्होंने हिंदी फिल्मों के रुपहले संसार में किस्मत आजमाने का मन बना लिया। वो साल था 1984 जब राजश्री प्रोडक्शंस के बैनर तले उनकी पहली फिल्म रिलीज हुई, अबोध। इस फिल्म में उनके साथ थे बंगाल के अभिनेता तापस

फिल्म अबोध को दर्शकों का प्यार तो नहीं मिल सका, लेकिन माधुरी दीक्षित को मिली आलोचकों की प्रशंसा। आने वाले समय में माधुरी दीक्षित की कई फिल्में आईं। आवारा बाप 1985 में, स्वाति, हिफाजत और उत्तर दक्षिण 1987 में, 1988 में उनकी एक साथ चार फिल्में रिलीज हुईं, मोहरे, खतरों के खिलाड़ी, दयावान और तेजाब। फिल्म तेजाब में फिल्म हिफाजत के बाद एक बार फिर उनके साथ नजर आए अनिल कपूर। तेजाब की मोहिनी ने माधुरी दीक्षित को रातों रात स्टार बना दिया।

1989 में कई सितारों से सजी फिल्म वर्दी में उनकी जोड़ी जैकी श्रॉफ के साथ जमी। इसी साल आई सुभाष घई की फिल्म राम लखन में एक बार फिर अनिल कपूर के साथ उनकी जोड़ी खूब पसंद की गई।

वक्त के साथ सफलता की सीढ़ियां चढ़ती माधुरी दीक्षित अलग अलग फिल्मों में अलग अलग किरदारों में फैंस के दिल में अपनी जगह बनाती गईं। मल्टी स्टारर फिल्म त्रिदेव की जया माथुर हो या प्रेम प्रतिज्ञा की भोली भाली लक्ष्मी राव या फिर परिंदा की पारो, रोल छोटा हो या बड़ा, माधुरी दीक्षित के अभिनय की छाप गहरी होती गई।

90 के दशक में माधुरी दीक्षित के करियर का एक नया दौर शुरू हुआ। 1990 में आई फिल्म कृष्ण कन्हैया के बाद फिल्म दिल की जबरदस्त कामयाबी ने उन्हें शिखर पर पहुंचा दिया। आमिर खान के साथ उनकी इस फिल्म के लिए उन्हें पहला फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला।

अपनी फिल्मों के जरिए माधुरी दीक्षित उस नए जमाने की लड़की की पहचान बन गई, जो खूबसूरत और स्टाइलिश होने के साथ अकलमंद भी है, आजाद ख्याल है और उसूलों की पक्की है। थानेदार, 100 डेज, साजन जैसी फिल्मों ने ये साबित कर दिया कि परफेक्ट डांसिंग मूव्स और खूबसूरती के अलावा माधुरी दीक्षित में कमाल की अभिनय

1992 में आई फिल्म बेटा, जिसमें एक बार फिर माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर की जोड़ी नजर आई। फिल्म जबरदस्त हिट हुई और माधुरी दीक्षित को मिला दूसरा फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड।

0: अपने अभिनय से हर किरदार को यादगार बनाने वाली माधुरी दीक्षित 90s की बॉक्स ऑफिस क्वीन बन गईं। फिल्म थिएटर से उतरने के बावजूद उनका रोल जहन में हमेशा ताजा रहा। भला कौन भूल सकता है फिल्म खलनायक की जाबाज पुलिस ऑफिसर गंगा को, या फिल्म अंजाम की सताई हुई शिवानी चोपड़ा को, या फिल्म मृत्युदंड की केतकी सिंह को, जो अपराध और अत्याचार के खिलाफ चुनौती बनकर खड़ी हो जाती है।
1: हम कुछ पूछ रहे हैं आपसे।
2: देखिए, जाने दीजिए हमको, दीदी का तबीयत ज्यादा खराब है।
1: हमको भी कुछ बात करना है।
2: वो हम बाद में भी कर सकते हैं।
1: बाद में नहीं, अभी।
2: भगवान के लिए अभी ये बहस मत उठाइए, दीदी को जरूरत है हमारा।
1: देखिए श्रीमती जी, अपना औकात में रहिए, हमरा मर्द बनने का कोशिश मत कीजिए।
2: औकात को ताकत का तराजू में तोड़ने का कोशिश मत कीजिए। आप हमारे पति हैं, परमेश्वर बनने का फूल मत कीजिए।
0: 1994 में माधुरी दीक्षित ने एक बार फिर राशि प्रोडक्शंस की फिल्म की हम आपके हैं कौन। सलमान खान के साथ ये उनकी एक और हिट मूवी थी, जिसके लिए उन्हें मिला तीसरा फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड।

साल 1997 लेकर आया भावनात्मक उथल पुथल से जूझते तीन किरदारों की फिल्म दिल तो पागल है। इस फिल्म में माधुरी दीक्षित के साथ शाहरुख खान और करिश्मा कपूर थे। फिल्म जबरदस्त हिट हुई और माधुरी दीक्षित ने जीता 4th फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड।

1999 में माधुरी दीक्षित अमेरिका के कार्डियोवैस्कुलर सर्जन डॉक्टर श्रीराम माधव नेने के साथ विवाह बंधन में बंध गईं।

प्रेम त्रिकोण पर आधारित माधुरी दीक्षित की फिल्मों में सन 2000 की फिल्म पुकार का जिक्र भी आता है, जिसमें प्रेम में हारी ईर्ष्या दग्ध अंजलि के रूप में उनकी जमकर प्रशंसा हुई।

माधुरी दीक्षित एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो हर उम्र हर वर्ग के दर्शकों की फेवरेट रही हैं। 2001 में मशहूर चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन साहब ने उन्हें लेकर फिल्म गजगामिनी का निर्माण किया। इसी साल रिलीज हुई राजकुमार संतोषी की फिल्म लज्जा, जिसमें जानकी के रोल में उन्हें बहुत सराहा गया।

0: देश हो या विदेश, माधुरी दीक्षित की फिल्मों का जबरदस्त क्रेज रहा है। 2002 में फिल्म देवदास आई, जिसमें माधुरी दीक्षित ने चंद्रमुखी की भूमिका निभाई। इस फिल्म में कथक नृत्यांगना माधुरी दीक्षित के अभिनय को भी बहुत प्रशंसा मिली। उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के अवार्ड से नवाजा गया।
1: थाई शाम रोक लई, रोक लई, रोक लई, थाई शाम रोक लई, और चक मुख चूम लई, मुख चूम लई, मुख चूम लई, सर से मोरी चुनरी गई, गई, गई, सर से मोरी चुनरी गई, सरक सरक सरक, सरक सरक सरक, सरक सरक।
0: फिल्म देवदास के बाद माधुरी दीक्षित अपने परिवार के साथ अमेरिका चली गईं। वहीं रहते हुए उन्होंने एक फिल्म साइन की। खबर मिलते ही एक बार फिर रुपहले पर्दे पर उन्हें देखने के लिए फैंस बेकरार हो गए और सन 2007 में उनकी बेकरारी को करार देते हुए रिलीज हुई फिल्म आजा नचले।

2012 में वो वापस भारत लौटी और 2014 में रिलीज हुई आलोचकों द्वारा प्रशंसित फिल्म डेढ़ इश्किया, जिसमें माधुरी दीक्षित के साथ नसीरुद्दीन शाह, अरशद वारसी और हुमा कुरैशी नजर आए।

0: इसी साल अभिनेत्री जूही चावला के साथ माधुरी की फिल्म आई गुलाब गैंग, जिसमें वुमन एक्टिविस्ट के रोल में उनके सशक्त अभिनय की बहुत सराहना हुई।
1: जैसे तिल में तेल है, चोंच चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, तू जाग सके तो जाग। जुर्म जुर्म होता है और इंसाफ इंसाफ होता है। हमारे यहाँ कहावत है, डंडा सबका पीर होता है।
0: 2018 में

माधुरी दीक्षित पहली बार एक मराठी फिल्म में नजर आईं। फिल्म का नाम था बकेट लिस्ट। इस फिल्म में एक बार फिर माधुरी दीक्षित के अभिनय की धाक जम गई।

2019 में एडवेंचर कॉमेडी टोटल धमाल में वो एक बार फिर अजय देवगन और अनिल कपूर के साथ नजर आई। 2019 में ही रिलीज हुई फिल्म कलंक में माधुरी दीक्षित के अभिनय की सराहना हुई।

सक्रियता के अलावा माधुरी दीक्षित ने जज के रूप में रियलिटी डांस शोज किए हैं। साथ ही वो अपनी प्रोडक्शन कंपनी के प्रोजेक्ट्स में भी व्यस्त रहती हैं। अपने अभिनय और नृत्य के साथ निखरती मेस्मराइजिंग माधुरी दीक्षित हर रोल में सब

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेत्री माधुरी दीक्षित पर। शोध आलेख और स्वर राजुल का था। प्रस्तुति सहयोग मिला आकांक्षा सिंह से और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था। लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयन से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
1: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। उन्होंने कहा कि हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व पर बल दिया है। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97.77 रुपये प्रति लीटर, जबकि डीजल की कीमत 90.67 रुपये प्रति लीटर हो गई है। मुंबई में अब पेट्रोल 106.68 रुपये और डीजल 93.14 रुपये प्रति लीटर की दर से मिलेगा। वहीं कोलकाता में पेट्रोल 108.74 रुपये और डीजल 95.13 रुपये प्रति लीटर पर उपलब्ध होगा। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 103.77 रुपये और डीजल का मूल्य 95.35 रुपये प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकर योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के अंतर्गत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। एक रिपोर्ट।
2: ये योजना आभूषण निर्यातकों को 0 शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है, ताकि उसकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। इसमें यह भी कहा गया है कि दोबारा बिना शुल्क सोने के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: मेडिकल नीट यूजी परीक्षा की नई तारीख की घोषणा कर दी गई है। अब ये परीक्षा 21 जून को आयोजित होगी। सरकार की मंजूरी के बाद राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इसकी घोषणा की थी। इससे पहले कल परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा के लिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप और धनशोधन मामले में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया है। उन्हें आज अदालत में पेश किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार ईडी को शांतनु बिस्वास से जुड़े कुछ संदिग्ध वित्तीय लेनदेन मिले हैं। भारत की वुशु खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाऊ में आयोजित 11वें सांडा विश्व कप में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की थी फुआंग नांगानुगु को हराया। और आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। लखनऊ में ये मैच शाम 7:30 बजे से

होगा। प्रतियोगिता में कल मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से मात दी। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

चैंपियनशिप के फाइनल में जापान को 3-0 से हराकर लगातार 12वीं बार खिताब अपने नाम किया। जीत के नायक लियांग झिंगकुन रहे, जिन्होंने टोमोकाजू हरिमोटो के खिलाफ शुरुआती 2 गेम हारने के बाद शानदार वापसी करते हुए मैच जीता। उन्होंने निर्णायक गेम में 8-3 से पिछड़ने के बावजूद लगातार 8 अंक लेकर जीत दर्ज की। इसके बाद दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी वांग चुकिंग ने सोरा मालसुमा को हराया। तीसरे रबर में लिन शिडोंग ने शुन सुके तोनामी को मात देकर चीन की जीत पक्की की। 4 दिन में 2 ग्रैंड स्लैम चैंपियन को हरा सरोना सेमीफाइनल में। 4 दिन में 2 ग्रैंड स्लैम चैंपियनों को उलटफेर का शिकार बनाकर सरोना क्रिस्टी करियर में पहली बार इटालियन ओपन टेनिस के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। रोमानिया की 36 वर्षीय खिलाड़ी ने मंगलवार को यहां लातविया की येलेना ओस्टापेंको को क्वार्टर फाइनल में शिकस्त दे दी। अब उनका सामना मीरा एंटीबा और कोको गफ के बीच होने वाले क्वार्टर फाइनल की विजेता से होगा। लगातार सेट में हराया। इस तरह क्रिस्टी ने पिछले 10 में से 8 मुकाबलों में जीत दर्ज की। 26वीं वरीयता प्राप्त क्रिस्टी ने 22वीं वरीय येलेना को लगातार सेट में 6-1, 7-6 से पराजित किया। 2017 में फ्रेंच ओपन की चैंपियन रही येलेना के पास पहले सेट में क्रिस्टी के रिटर्न और प्लेसिंग का कोई भी जवाब नहीं था। हालांकि उन्होंने दूसरे सेट में कड़ी टक्कर दी। एक समय वह 5-3 से आगे थी और मुकाबला निर्णायक सेट में जाता नजर आ रहा था, लेकिन क्रिस्टी ने टाई ब्रेक बिना कोई अंक कमाए कब्जाया और अंत में करीब 1.5 घंटे चले मुकाबले में जीत के साथ सेमीफाइनल का टिकट कटाया। संदीप और संजीव ने जीता स्वर्ण पदक। संजीव 55 किलोग्राम और संदीप 60 किलोग्राम ने मंगलवार को राष्ट्रीय ओपन रैंकिंग कुश्ती में अपने अपने भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीते। संजीव ने फाइनल में सुशील कुमार को

0: तो संदीप ने हर्ष को पराजित किया। विजय 63 किलोग्राम ने विनय को, निशान 67 किलोग्राम ने विकास को और सूरज 72 किलोग्राम ने गौरव को हराया। विकास 77 किलो, प्रतिद्वंदी सन्नी मंजीत 82 किलोग्राम, उमेश तेजपाल 87 किलोग्राम, सागर आशीष 97 किलोग्राम अभिमन्यु और मेहर 130 किलोग्राम विपिन को हरा चैंपियन बने। सात्विक चिराग की जोड़ी का विजयी आगाज। सात्विक साईराज रांकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी ने थाईलैंड ओपन सुपर 500 टूर्नामेंट में विजयी आगाज किया। उन्होंने पुरुष युगल के पहले दौर के मुकाबले में मंगलवार को इंडोनेशिया के मोह पुत्रा एनविश्यांस और बागास मौलान की जोड़ी को शिकस्त दे दी। तो दोस्तों, यह थी खेल गतिविधियों से जुड़ी खबरें। आइए अब हम आपको लिए चलते हैं कन्या मध्य विद्यालय शिवसागर के शारीरिक शिक्षक अमित कुमार के पास और उनसे हम आज जानेंगे कबड्डी के बारे में। अमित कुमार जी, आकाशवाणी सासाराम आपका हार्दिक स्वागत करता है।
1: धन्यवाद सर।
0: अमित जी, कबड्डी भारत का वर्तमान में ही नहीं अति प्राचीन समय से लोकप्रिय खेल रहा है, क्योंकि सबसे पहली बात कि कबड्डी खेलने से शरीर हष्ट पुष्ट रहता था, कोई लागत नहीं होती थी और दूसरे में दो टीमों के बीच एक संपर्क स्थापित होता था और इसमें दर्शकों की भी संख्या अच्छी खासी होती थी, जिससे लगता था कि हाँ कोई मनोरंजक और रोमांचक गेम खेल रहा है। आज वर्तमान में कबड्डी ने क्या क्या परिवर्तन किया, और सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि कबड्डी की शुरुआत कब से हुई थी और भारत में आधुनिक युग में फिर इसकी शुरुआत और मान्यता कब से मिली।
1: धन्यवाद सर। मैं बताना चाहूंगा कि हालांकि भारत में कबड्डी की शुरुआत 4000 ईस्वी पहले हुआ था, 1938 ईस्वी में भारतीय ओलंपिक खेलों में कबड्डी को जोड़ा गया था, उसके बाद 1990 में इसे एशियाई खेलों में भी खेला गया, इसके बाद प्रो कबड्डी आया, प्रो कबड्डी लीग से इसे और लोकप्रिय बनाया गया। प्रो कबड्डी की शुरुआत सबसे पहले 2014 में हुआ था।
0: अमित जी, कबड्डी जो हम लोग खेलते हैं, जैसा कि अभी अभी आपने भी हमें जानकारी दी कि 4000 वर्ष पहले से इसकी शुरुआत हुई थी, भारत में शुरुआत हुई थी, तो कबड्डी खेलने का जो ग्राउंड होता है उसकी क्या परिमिति होती है, क्या उसका सीमा होता है?
1: तो सबसे पहले पुरुष वर्ग हम लोग खेलते हैं, साधारण जनरल ग्राउंड होती है 12x8 की और महिला का होता है 11x8, हम लोग बनाते हैं इसे जनरल खेलने के लिए।
0: मीटर में
1: बनाते हैं। हाँ हाँ, 12 मीटर लंबाई होती है पुरुष की और चौड़ाई 8 मीटर।
0: कबड्डी में कितने प्लेयर को आप लोग चुनते हैं एक टीम में और कितना प्लेयर एक बार में खेल सकता है?
1: कबड्डी में ऐसे 11 प्लेयर रहते हैं, लेकिन हम लोग खिलाते हैं सात टीम खेलता है कबड्डी में, एक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं और इसका नियम है कि कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं, दोनों तरफ साथ साथ खेलते हैं। इसका नियम कबड्डी के ग्राउंड माप जो बताए हैं कि 12x8 का होता है, 12 मीटर लंबा 8 मीटर चौड़ा, उसके बाद उसमें बक लाइन और बोनस लाइन होती है।
0: बक लाइन क्या है और बोनस लाइन क्या है?
1: बक लाइन है कि जो विपक्षी टीम है वो अपने में जाता है बोलते हुए या कोई भी बोलते हुए जाता है करते हुए, अगर बक लाइन से पहले अगर वो बिना टच किए आ जाता है अपने तरफ तो उसको आउट माना जाता है,
0: और अगर उस लाइन को छू लेता है तो?
1: अगर उस लाइन को छू लेता है तो वो खेलने के लिए तैयार है, खेलता है अपन पूरा गेम खेलता है। अगर उसमें पहले अगर भाग जाता है 30 सेकंड तक कोई टीम को मार देता है, मार कर आ जाता है तो उसको एक पॉइंट दिया जाता है,
0: और अगर नहीं भी मारा छू करके चला गया तो भी पॉइंट मिलता है?
1: मारा नहीं, हाँ छू करके चला गया तो भी पॉइंट मिल गया,
0: एक पॉइंट। तो यह कितने मिनट का होता है या कोई पॉइंट बैडमिंटन की तरह निर्धारित है? यह जो गेम है, जैसे मान लीजिए कि आपको फुटबॉल 90 मिनट का होता है तो उसी तरह का इसमें भी कोई समय सीमा निर्धारित है क्या?
1: 15 जूनियर वर्ग के लिए,
0: और सीनियर के लिए
1: 20-5-20
0: यानी 20 मिनट के बाद फिर 5 मिनट का
1: अंतराल होता है, फिर 20 मिनट की गेम।
0: और गर्ल्स के लिए कुछ समय?
1: 15-5-15।
0: यानी अगर हम यूं कहें कि गेम ये 30 मिनट का होता है, 5 मिनट इसके लिए अलग से दिया जाता है फ्रेशनेस के लिए, यूं कहें एक ड्रिंक ब्रेक या सुस्ताने के लिए।
1: हाँ सर, उसे ड्रिंक के लिए दिया जाता है 5 मिनट का समय, कि 5 मिनट जब खेलते खेलते थक जाता है 5 मिनट रेस्ट के बाद फिर इसको उतारा जाता है।
0: आपने एक बकलाइन बोला, यह जैसे दो टीमें खेल रही हैं, एक बीच की रेखा होती है, एक टीम इस तरफ एक

0: टीम उस तरफ, तो बक लाइन की दूरी बीच की रेखा से कितनी दूर होती है?
1: बक लाइन की दूरी 3 मीटर होती है। 3 मीटर के बाद फिर जो बोनस लाइन एक होता है, बोनस बक लाइन से बोनस लाइन की दूरी 1 मीटर की होती है।
0: 1 मीटर की होती है। और क्या बक लाइन के बाद भी कोई
1: इंड लाइन होता है, अंतिम रेखा, उसकी दूरी 2 मीटर, बोनस लाइन से इंड लाइन की दूरी 2 मीटर की होती
0: है। अमित जी, यह इस जो खेल है इसमें एक रोमांच यह है कि इसमें जब एक व्यक्ति मरता है तो एक व्यक्ति जिंदा होता है। मुझे लगता है यह दुनिया की सबसे अजीबोगरीब नियम है।
1: अजीबोगरीब? हाँ सर, एक व्यक्ति मान लीजिए उधर का अगर पॉइंट व्यक्ति मर जाता है तो इधर विपक्षी टीम का अगर पॉइंट बनता है तो उसको फिर उसमें लाकर खिलाया जाता है, जिंदा हो जाता है वो। जो
0: यह एक बहुत ही रोमांच भरा होता है क्योंकि आस नहीं होती है, जैसे क्रिकेट में आप आउट हो गए तो आउट हो गए।
1: क्रिकेट में आउट हो जाने पर वो आउट हो जाए, हमेशा आउट, अब उसमें नहीं खेल पाएगा। लेकिन इसमें फिर नियम है कि जो विपक्षी टीम अगर मार देगा फिर से ही जिंदा होकर फिर खेलने के लिए चला जाता है।
0: यानी अगर हम यह कहें कि यह एक आशावादी खेल है।
1: हाँ, आशावादी इसमें बढ़ते जाता है, अपने जब तक पूरा समय नहीं समाप्त होता है तब तो वो खेल चल।
0: इसीलिए यह एक रोमांच पैदा करता है क्योंकि इसमें खेलने वाला जो प्लेयर है वो अगर आउट भी हो गया तो उसे उम्मीद होती है कि मैं फिर से दोबारा
1: आ सकता हूँ।
0: बातें तो होती रहेंगी। बड़ा अच्छा लग रहा है अमित जी आपसे बातें करते हुए। कुछ गाना वाना सुनना पसंद करते हैं क्या?
1: हाँ सर, गाना वाना बहुत सुनना पसंद है।
0: मैं चाहता हूँ कि आपकी पसंद का गाना आपको सुनाऊं और अपने श्रोताओं को भी सुनाऊं। क्या सुनना चाहेंगे आप, कौन सा गाना आप हमें बताएं?
1: हाँ सर, एक गाना सुना देते तो अच्छा रहता है, जिंदगी एक सफर है सुहाना।
0: वाह भाई, आपका पसंद तो बहुत ही बेहतर है। वाकई जिंदगी का सफर जो है वो बहुत ही सुहाना होता है। तो लीजिए अमित जी, मैं आपकी पसंद का गाना आपको भी सुनाता हूँ और अपने श्रोताओं को भी सुनाता हूँ।

0: अमित जी, मैंने आपकी पसंद का गाना आपको सुना दिया, अब हम बातचीत आगे बढ़ाते हैं। आप चूंकि एक शारीरिक शिक्षक हैं और आपको स्वास्थ्य अनुदेशक भी कहते हैं, तो यानी कि किसी भी बच्चे की, किसी भी प्लेयर के स्वास्थ्य की देखरेख की जिम्मेवारी होती है। तो मान लीजिए कि आपके पास कोई बच्चा कबड्डी खेलने के लिए आता है, आप उसको खेल में शामिल करते हैं, तो उसे किस किस तरह का एक्सरसाइज आप कराएंगे और इसमें बच्चों का शरीर कैसा चाहिए?
1: सबसे पहले तो हम देखेंगे कि वो बच्चा खेलने लायक है कि नहीं, उसका शरीर का बनावट कैसा है, वो खेल पाएगा नहीं खेल पाएगा, शरीर से कैसा कमजोर है, कैसा है, दौड़ने आता है कि नहीं, क्योंकि जो सबसे छोटा बच्चा होता है उसको दौड़ने के लिए बताया जाता है, तो सबसे पहले वो दौड़ना सीखता है, उसके बाद उसको खेल के नियम के बारे में बताया जाता है, खेल के अगर बढ़िया से अगर अच्छे तरह से वो पकड़ कर लेता है तब उसको खेलने का नियम और खेल में भाग लिया जाता है।
0: जैसे ये एक ताकत का गेम है, तो आप उसकी शारीरिक ताकत को बढ़ाने के लिए उसे किस किस तरह का एक्सरसाइज कराएंगे और किस किस तरह के डाइट देंगे?
1: सबसे पहले उसको हम एक्सरसाइज कराएंगे, उसको दौड़ाएंगे कि अच्छे तरह से वो दौड़ पाता है कि नहीं, उसको रोज दौड़ाएंगे कि दौड़ने के लिए अभ्यास करेंगे, रोज पहले 100 मीटर 50 मीटर की दौड़ दौड़ो, रेस करो, और उस धीरे धीरे वो अपना शरीर को मेंटेन जब कर लेता है तब उसको खेल के में आगे बढ़ाया जाता है।
0: और अगर सीनियर बच्चे आपके पास आते हैं तो आप उसको किस तरह का शरीर बनाने के लिए कहते हैं?
1: सीनियर बच्चा जब आता है तो उसको बोलते हैं कि अपना बीम मारिए, सपाट मारिए और अपने शरीर को बढ़ाइए।
0: खान पान के लिए जैसे आजकल सबसे ज्यादा जरूरी है डाइट, तो किस किस तरह के डाइट लेने की सलाह देंगे आप बच्चों को?
1: सबसे पहले तो हम कहेंगे कि खान पान अच्छी तरह से खाइए, पौष्टिक आहार कीजिए, पौष्टिक आहार में जैसे 2 टाइम सुबह में नाश्ता करिए, उसके बाद भोजन करिए, इस तरह से उसको खाने के नियम बताया जाता है।
0: भोजन में क्या क्या लेने के लिए आप बोलेंगे और नाश्ते में क्या लेने के लिए कहेंगे?
1: भोजन में दाल चावल सब्जी उसको बताएंगे जिसमें उसको विटामिन मिल सके, नाश्ते में अंडा वो खाए, अंडा केला, हरा साग सब्जी हो, सलाद हो, ये सब थोड़ा विशेष रूप से खाएगा, दूध पिएगा 2 टाइम शाम को या दिन में 2 टाइम दूध पिएगा तो और उसके शरीर में थोड़ा वृद्धि होगी, ताकत बढ़ेगी।
0: यानी कहने का मतलब कि उसे जंक फूड से दूर रहना होगा?
1: हाँ सर, जंक फूड से जो फास्ट फूड है आजकल जमाने में अधिक लोग खाते हैं, चाट चाउमीन फुचका मैगी, इस सबसे उसको दूर रहना होगा।
0: अभी वर्तमान में हमारे रोहतास में और बिहार में कबड्डी की क्या स्थिति है?
1: अभी हमारे रोहतास में और बिहार में बहुत कबड्डी की अच्छी स्थिति हो गई है, हमेशा मैच होता है उसमें, हमारे रोहतास जिला की टीम ने बहुत ही भाग लिया है, छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो वो सब अच्छी तरह से भाग लेते हैं।
0: अमित जी, कबड्डी में आपने बताया रोहतास की स्थिति अच्छी है, बिहार की भी स्थिति है, बल्कि भारत की स्थिति इस खेल में बहुत ही अच्छी है, विश्व कप विजेता भी रहा है, अभी विश्वविद्यालय भी बिहार में खुला, ये सब देख के आपको क्या लगता है खेल में क्या भविष्य बिहार का?
1: ऐसा लगता है कि खेल में बिहार का बहुत भविष्य आगे जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे हमारा बिहार भी आगे बढ़ते जा रहा है और पूरा गेम हमारे बिहार में धीरे धीरे होने के कगार पर है।
0: आप अपने विद्यालय में बच्चों की टीम बनाए हैं कबड्डी के?
1: हाँ सर, बच्चों का टीम बनाए हैं।
0: आप उसको किस किस तरह से

0: लोगों को ट्रेनिंग देते हैं आप?
1: हम उसको सबसे पहले रोज बोलते हैं कि तू लोग जाकर पहले फील्ड में अपना दौड़ो, एक्सरसाइज करो, उसके बाद आओ, तब हम तू लोग को कबड्डी का ट्रेनिंग देते हैं। और रोज एक घंटा लगभग, रोज टिफिन के बाद एक घंटा रोज लगभग सबको सिखाते हैं।
0: बिहार में खेल के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए बिहार सरकार ने एक घोषणा की है, मेडल लाओ नौकरी पाओ। यह कितना अच्छा है?
1: यह लड़कों के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि लड़का अपना सोचेगा कि हम जब खेलेंगे, दौड़ेंगे, कूदेंगे, तभी हम मेडल लाएंगे और मेडल के आधार पर हमें नौकरी मिलेगी बिहार में।
0: जो एक पुरानी मान्यता थी कि पढ़ोगे तो ही बेहतर हो सकते हो, इस मान्यता को तो लगभग कम कर दिया गया, क्योंकि खेल में भी भविष्य है।
1: इस मान्यता को लगभग बहुत ही कम कर दिया, क्योंकि जो बच्चा खेलने लायक है वह हमेशा खेल के तरफ भागेगा। पहले क्या होता था कि जो पहले इस तरह के कोई नहीं था सुविधा, इसलिए सब बच्चा जो खेलने लायक भी है वो भी पढ़ने पर ज्यादा ध्यान देता था। लेकिन अब इससे होगा कि जो बच्चा खेलने लायक हो वो और खेल को विशेष बनाएगा, क्योंकि हम खेलेंगे तभी नौकरी पाएंगे, खेल में भी नौकरी पा सकते हैं।
0: अमित जी, खेल के प्रति जो बच्चों की रुचि जागी और सबसे पहले उसमें भविष्य दिखाई दिया, यानी कहने का मतलब है कि जब हमारा हॉबी हमारा करियर बन जाता है तो कितना अच्छा महसूस होता है।
1: जब हमारा करियर बन जाएगा तो हम एक आदमी बन जाएंगे, क्योंकि हमारे दूसरे पर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा और इस तरह खेल के माध्यम से हम ज्यादा लोकप्रिय हो जाएंगे।
0: और अपने लोकप्रिय होने के साथ साथ राज्य का नाम, गांव का नाम, देश का नाम भी रोशन करेंगे।
1: तो सबसे पहले अपने गांव का नाम रोशन करेंगे, राज्य का नाम रोशन करेंगे, शहर का नाम रोशन होगा और इस तरह से हमारे देश का भी नाम रोशन होगा।
0: अंतिम प्रश्न, चलते चलते आपसे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातें करना, लेकिन समय की बहुत कमी है, कबड्डी आने वाले समय में और भी कितना बेहतर हो सकता है आपकी नजर में?
1: हमारे कबड्डी आने वाला समय में और बेहतर हो सकता है, क्योंकि सारा बच्चा जो है वह कबड्डी की तरफ भागेगा। कबड्डी में कोई ना खर्च लगता है ना कुछ, सिर्फ शरीर से उसमें मेहनत करना है। उसको बना दीजिए कहीं भी, अपना कहीं भी जो बच्चा है अपना खेल लेगा, उसमें ना कोई बैट खरीदना पड़ेगा ना फुटबॉल खरीदना पड़ेगा, सिर्फ अपने शरीर का बनावट के अनुसार शरीर से मेहनत करके वो कबड्डी में धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ सकता है।
0: ये बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, आपने अपना कीमती समय दिया और हमें इतनी अच्छी जानकारी दी,
1: थैंक यू सर।
0: तो दोस्तों, इसी के साथ संपन्न होता है हमारे यह कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। आपको हमारे यह कार्यक्रम कैसा लगा आप अपने विचारों से हमें अवश्य अवगत कराएं। तो फिर देर किस बात की, उठाइए कलम और लिखिए हमारे पता। हमारा पता है कार्यक्रम खेल खिलाड़ी, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी सासाराम, पिन कोड 821115। संकलन एवं सर रजनीश श्रीवास्तव, प्रस्तुतकर्ता संतोष कुमार।
2: अभी हम सुन रहे थे कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, भोजपुरी एल्बम लोक गीत का लोक माधुरी।

सत्येंद्र पांडे कोपा की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत, अशोक पुरी का लिखा हुआ, सत्येंद्र पांडे के संगीत निर्देशन में। आइए सुनते हैं अगला गीत सर्वानंद।

मुन्ना सिंह की आवाज में अभी आप सुन रहे थे ये गीत, गणेश दत्त किरण का लिखा हुआ, यूसुफ खान का संगीत, और इसी के साथ लोक माधुरी कार्यक्रम भोजपुरी एल्बम लोकगीत का समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, श्रोताओं आइए सुनते हैं भोजपुरी एल्बम सॉन्ग का अगला कार्यक्रम रसधार।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

विक्की बउआ और खुशी कक्कर की आवाजों में भी आप सुन रहे थे आशिक मरेला रूरो के ये गीत। रविराज दीपू का लिखा गीत था, मनोज बंटी का संगीत था। इसके पहले हमने सुना था राजा सिन्हा और प्रिया सिन्हा की आवाजों में गीत, जिसको लिखा था शशि भूषण सिंह ने, अरशद जमाल का संगीत।

गीत था और श्रोता इसी के साथ रसधार कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, दिन के 11 बज चुके हैं और अब आइए आपको लेकर चलते हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र।

गांधीज फेवरेट भजन बाय लता मंगेशकर। इस एल्बम से लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे नरसिंह मेहता का लिखा ये भजन, संगीत हृदयनाथ मंगेशकर का। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर सुन रहे हैं।

0: माजिद शोला कवाली की आवाज में सुन रहे थे आप ये कवाली। पायम सिद्दीकी सईदी ने इसे लिखा, मामी बाचू का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और आइए सुनते हैं ये जरूरी संदेश।
1: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। आपको बता दें कि आज दोपहर 3 बजे से आप सुन सकते हैं हेलो सहेली कार्यक्रम, जिसमें सखियों की फोन इन फरमाइशें पूरी होंगी।

कुसैर अल जाफरी के ये कलाम आप सुन रहे थे। अशोक खोसला की आवाज में कुलदीप सिंह का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। आपको बता दें कि आज दोपहर 3 बजे से आप सुन सकते हैं हेलो सहेली कार्यक्रम, जिसमें सखियों की फोन इन फरमाइशें पूरी होंगी।

अनूप जलोटा की आवाज में सबा अफगानी का कलाम आपने सुना, अनूप जलोटा का संगीत। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आपको याद दिला दें कि आज दोपहर 2 बजे वंदे मातरम एक जय घोष, ये श्रृंखला आप सुन सकते हैं। श्रृंखला की 28वीं कड़ी आज आपको सुनाई जाएगी। और हेलो सहेली कार्यक्रम 3 बजे से सुनेगा, जिसमें सखियों की फोन इन फरमाइशें होंगी पूरी। शाम 4 बजे होगा पिटारा में गीतों भरी कहानी का सिलसिला, कहानी जीवन एक सरल रेखा, जिसे लिखा है श्वेता उपाध्याय ने। और अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगली गजल है ये, जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल सुनिए, द लेटेस्ट जगजीत सिंह चित्रा सिंह गजल इस एल्बम से, और इसे लिखा है सुदर्शन फकीर ने।

सुदर्शन फकीर का लिखा यह कलाम आप सुन रहे थे। जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजों में जगजीत सिंह का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

राहत तिंदौरी का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे रूप कुमार राठौर और संजीवनी की आवाजें करीब फिल्म के इस गीत में संगीत अनु मलिक का। आप सुन रहे कार्यक्रम रंग तरंग और आपको ये बताते चलें कि रोजाना शाम 6:35 से संध्या रंजन इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन सकते हैं भक्ति संगीत और संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ऐसी लागी लगन। कलाकार हैं गायक अनूप जलोटा। चौथी कड़ी आज सुन सकते हैं शाम 6:45 से और रोजाना इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं सुबह और शाम 6:45 से। रंग तरंग कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। मोहित चौहान, केम त्रिवेदी और अतुल मित्तल की आवाजें, उन्हीं के बोल उन्हीं का शब्द और एल्बम है सिल्क रूट बूंदे।

सिल्क रूट बूंदे इस एल्बम से गीत आप सुन रहे थे। मोहित चौहान, केम त्रिवेदी और अतुल मित्तल की आवाजें, उन्हीं के बोल, उन्हीं का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग आप सुन रहे हैं विविध भारती पर

खैरा गैरा नथु खैरा। इस एल्बम से सुनिधि चौहान की आवाज में समीर के बोल आप सुन रहे थे। राजू सिंह का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में कुछ गजलें भी आपको सुनवाई गई, क्योंकि एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें गजल, कवाली, पॉप गीत और लोकगीतों का संगम होता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ और गजलें सुनने का आपका मन है, तो आज शाम 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत आप सुन सकते हैं गुलदस्ता में गजलें, जो कि नॉन फिल्मी गजलें हैं। और इसके साथ ही 8 बजे हवा महल में सुनिए हास्य नाटिका बुखार, जिसे लिखा है वीरेंद्र कश्यप ने, निर्देशन गंगा प्रसाद माथुर का। फिलहाल कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रंग तरंग विविध भारती पर।

बाबा सहगल की आवाज में आप सुन रहे थे जुगनी मस्त कलंदर एल्बम से ये गीत, और इसे लिखा बाबा सहगल और देव कोहली ने, बाबा सहगल का संगीत। आपको बता दें कि आज रात 9:30 से आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेत्री माधुरी दीक्षित पर, और इस वक्त रंग दरंग कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं रेमो डिसूजा की आवाज में, माफ कीजिएगा, रेमो फर्नांडिस की आवाज में ये गीत ओ मेरी मुन्नी एल्बम से।

0: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: इसके साथ ही आज का रंग तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

हैं समाचार के साथ मैं कनकलता। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता हैं और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है।

0: शिक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारी विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने थोड़ी एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। एडमिट कार्ड, इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुँच जाएगा।
1: श्री प्रधान ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भविष्य में किसी भी तरह की अनियमितताओं को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने संबंधी उपाय किए जाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में एनटीए ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल एनटीए के आधिकारिक चैनलों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया है। इससे पहले इस महीने की 3 तारीख को भी परीक्षा कथित पेपर लीक के कारण रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। प्रधानमंत्री आज सुबह संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, साथ ही पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्रालय के अपर सचिव पश्चिम असीम महाजन ने कहा कि ऊर्जा दोनों देशों के संबंधों का एक प्रमुख स्तंभ है। एक रिपोर्ट।
2: इंडिया और यूए की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। उन्होंने आपसी हित के द्विपक्षीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। डॉ जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराक्ची की भागीदारी की सराहना भी की। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रूपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी गैस की कीमतों में 2 रूपये की वृद्धि की है। इसके साथ ही दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी की कीमत 79.09 रूपये, गाजियाबाद और नोएडा में 87.70 रूपये और गुरुग्राम में इसकी दर 84.12 रूपये हो गई है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी ने आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से राजधानी में ईंधन की खपत कम करने और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन संचालित शटल बस सेवा शुरू की। ये केंद्रीय सचिवालय और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशनों तथा सेंट्रल विस्टा क्षेत्र के प्रमुख सरकारी प्रतिष्ठानों के बीच निर्बाध और पर्यावरण अनुकूल अंतिम मील कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज शुरुआती कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 82 अंक बढ़कर 75,481 पर, जबकि निफ्टी 29 अंक की वृद्धि के साथ 23,719 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर ऐसे गीत चुने गए हैं जिनमें पारिवारिक रिश्तों की भी बातें हैं और परिवार का आपसी संगठन, आपसी प्रेम भी दर्शाया गया है। तो चलिए सुनते हैं ये गीत।
4: बम चिक चिक बम, चिक बम बम बम, चिक चिक बम।

बिल्कुल कुछ ऐसा ही तो होता है हमारा परिवार। हम फिल्म से गीत आपने सुना सुदेश भोसले, मोहम्मद अजीज, उदित नारायण और साथियों की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर आज यादों की महफिल कार्यक्रम में कुछ ऐसे गीत जिनमें परिवार की एकजुटता के बारे में बताया जाता है या पारिवारिक रिश्तों की बातें हैं।

दादी माँ फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। मन्ना डे और महेंद्र कपूर की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, रोशन का संगीत। आपको याद दिला दें कि दोपहर 3 बजे सखियों की फोन इन फरमाइशें पूरी होंगी हेलो सहेली कार्यक्रम में। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। और दोपहर 2 बजे से सुन सकते हैं वंदे मातरम एक जय घोष, इस श्रृंखला की 28वीं कड़ी। शाम 4 बजे गीतों भरी कहानी मैं आज सुनेंगे, सुनिएगा जीवन एक सरल रेखा, ये कहानी जिसे लिखा है श्वेता उपाध्याय ने। और कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से अंतराल का।

घर घर की कहानी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। शब्बीर कुमार, चंद्रानी मुखर्जी, उत्तारा केलकर और साथियों की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल बप्पी लाहिरी का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल में आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर ऐसे गीत जिनमें पारिवारिक रिश्तों की बातें हैं और साथ ही है पारिवारिक एकजुटता का संदेश।

किशोर कुमार की आवाज में ढोंगी फिल्म का गीत आपने सुना, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल में आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर आपको सुनवा रहे हैं ऐसे गीत जिसमें पारिवारिक एकजुटता की बातें तो हैं ही, साथ ही पारिवारिक रिश्तों का उल्लेख भी। कुछ ऐसा ही गीत आपको अब सुनवाने वाले हैं साधना सरगम और साथियों की आवाजें हैं, महबूब के बोल, ए आर रहमान का संगीत, फिल्म डोली सजा के रखना। सुनिए ये गीत।

0: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

चाचा जिंदाबाद फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, राजेंद्र कृष्ण के बोल, मदन मोहन का संगीत। रोजाना दोपहर 2:30 से आप सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर, और रोज रात छाया गीत होता है 10 बजे। अगर आप किसी दिन छाया गीत सुनने से रह जाएं तो चिंता ना कीजिएगा, सुन सकते हैं रोजाना शाम 5 बजे से छाया गीत का पुनः प्रसारण। विविध भारती पर इन दिनों आप कई कार्यक्रम सुन रहे हैं, और इस वक्त आप सुन रहे हैं यादों की महफिल कार्यक्रम, जिसमें आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर पारिवारिक रिश्तों को बताते गीत या पारिवारिक एकजुटता को दर्शाते गीत हमने शामिल किए हैं।

0: जो नकली है कभी उससे वफाएं हो नहीं सकती।
1: अरे नहीं भाई नहीं, हाँ बुरा हो वक्त तो साया भी अपना दूर रहता है। वफादारी का शिकवा क्या
2: जमाना ये ही कहता है, जमाना ये ही कहता है, जमाना ये ही कहता है।
3: अरे क्या

0: दुनिया है यहाँ अपने भी आंखें फेर लेते हैं, अगर कुछ नाम हो जाए तो आकर घेर लेते हैं।
1: हाँ, जहाँ वाले मोह

0: ओ मामा मामा मामा घर वाले काहे चक्कर ऐसा है अपना चक्कर चक्कर में तुम नहीं आना प्यारे मामा ओ मामा।
1: परवरिश फिल्म के इस गीत को आप सुन रहे थे मन्ना डे और मोहम्मद रफी की आवाजों में, हसरत जयपुरी के बोल दत्ताराम वाडकर का संगीत। आपको याद दिला दें कि 10 बजे रोजाना आप सुन सकते हैं छाया गीत कार्यक्रम, और अगर आपसे सुनना रह जाए या आप दोबारा सुनना चाहें तो हर शाम 5 बजे आप पहले दिन के छाया गीत का पुनः प्रसारण सुन सकते हैं। आपके लिए ये कार्यक्रम रोजाना 9 बजे होता है और 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है अभिनेत्री माधुरी दीक्षित पर। तो अब इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर, और आज इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर पारिवारिक संबंधों को दर्शाते गीत हमने शामिल किए हैं।

क्या कहना फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। कविता कृष्णमूर्ति और हरिहरन के साथ साथियों की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, राजेश रोशन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल में आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर याद कर रहे हैं वो गीत जिनमें परिवार के सदस्यों की बातें हों या पारिवारिक एकजुटता के बात हों।

एनिमल फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। सोनू निगम की आवाज, राजशेखर की बोल, हर्षवर्धन रामेश्वरम का संगीत था इस गीत में। अगर आप नए गानों के शौकीन हैं तो सुनिए हमारा कार्यक्रम चित्रलोक रोजाना रात 8:15 से, और ये कार्यक्रम सुबह 8:30 पर भी आता है। दोनों ही समय आप सुन सकते हैं नए फिल्मी गीत विविध भारती पर। और इस वक्त विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, जिसमें आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर पारिवारिक रिश्तों को दर्शाते गीत आपको सुनवा रहे हैं।

इस गीत के साथ ही यादों के महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। और इससे पहले आपको बता दें, सत्य पे सत्ता फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार, भूपिंदर, सपन चक्रवर्ती और राहुल देवबर्मन की आवाजों में। राहुल देवबर्मन का संगीत, गुलशन बावरा के बोल। और अब कार्यक्रम से इजाजत लेते हैं, विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि इस कार्यक्रम के बारे में आप जानते ही हैं कि रोजाना हमारी फेसबुक पेज पर हम पोस्ट करते हैं एक इबारत या टेक्स्ट जिसमें छुपे होते हैं आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले गीत, यानी रोजाना कार्यक्रम में जो भी गीत शामिल होते हैं वो उसी टेक्स्ट से आते हैं और उनमें कुछ शब्द ऐसे समाये होते हैं जिन पर आधारित गीत कार्यक्रम में शामिल किए जाते हैं। तो ये अंदाजा लगाना होता है हमारे श्रोताओं को कि आज के कार्यक्रम में कौन कौन से शब्दों पर गाने शामिल हो सकते हैं। और कार्यक्रम का मजा तो इसी बात में है कि आपके गानों की लिस्ट और हमारे गानों की लिस्ट किसी तरह से मैच हो जाए। और अगर आपके कुछ गीत अलग भी हैं तो भी आप उसे हमारे पोस्ट पर कमेंट के जरिए बता सकते हैं, क्या पता शायद वो गीत शामिल हो जाए कार्यक्रम में। और आज की जो इबारत है या टेक्स्ट है वो हम आपके लिए एक बार पढ़ देते हैं ताकि आपको अंदाजा हो जाए। और हमारे जो साथी अब तक फेसबुक पेज से नहीं जुड़ पाए हैं वो जा सकते हैं www.facebook.com/vbsmumbai। इस पते पर जाकर आपको विविध भारती राष्ट्रीय सेवा का पेज मिल जाएगा। बहुत से साथी पूछते हैं कि कौन सा असली पेज है, तो विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देवनागरी हिंदी में लिखा हुआ है और उसके बाजू में एक नीले कलर का टिक बना हुआ है और इसके साथ ही आप देख सकते हैं फॉलोअर्स 1000K लिखा होगा, यानी माफ कीजिएगा 100K लिखा होगा, यानी कि 100,000 फॉलोअर हैं। और यही पेज विविध भारती का आधिकारिक पेज है, इसे आप फॉलो कर सकते हैं और इसमें ही आपको ये पोस्ट नजर आएगी। तो आज की इबारत मैं एक बार आपके सामने पढ़ दूं, गर्मी जहां झुलसाती है वहीं इससे जुड़ी यादें हमारे मन पर मीठे नर्म फाहे रख जाती हैं। गर्मियों की छुट्टियां, रेलगाड़ी का सफर, कभी नानी की कहानी तो कभी दादी का दुलार, गिल्ली डंडा, छुपन छुपाई, खेल खेल में दिन बीत जाते थे भाई, सैर सपाटे, पिकनिक, बाग बगीचे और मस्ती, वो दिन भी क्या दिन थे। तो इस इबारत से अंदाजा तो हमारे बहुत से साथियों ने लगाया है कि आज बातें बचपन में मिलने वाली गर्मियों की छुट्टी की है। और साथ ही बहुत सी बातें होंगी जहां हम घूमने जाते थे, रेलगाड़ी के सफर की बातें होंगी, ऐसा हमारे साथियों ने कुछ अंदाजा लगाया है और शब्द भी हमारे साथियों ने लिख भेजे हैं। लेकिन कार्यक्रम का पहला गीत सुनवाने से पहले हम आपसे कुछ और भी पूछना चाहते हैं, तो आप आपकी गर्मियों की छुट्टियों की यादें हमसे साझा कर सकते हैं और साथ ही ये भी बताइए कि बचपन में आपने कौन कौन से खेल खेले हैं, क्योंकि इसमें तो हमने 2-3 खेलों के ही नाम बताए, लेकिन आप कौन कौन से खेल खेला करते थे ये बता सकते हैं। क्या गर्मियों की छुट्टियां आपके लिए फिल्में ज्यादा देखने का मौका लेकर आती थी या कुछ नहीं, और क्या गर्मियों में आप पिकनिक का प्लान बनाते थे, या जब बत्ती गुल हो जाती थी तो गर्मी से निजात पाने के लिए क्या आपने हाथ वाला पंखा झरा है, या अंताक्षरी खेली है अपने साथियों के साथ, कौन सा हुआ आपका पसंदीदा गाना, ये सब हमें बताइए। और साथ ही ये भी बताइए कि नानी और दादी से आपको डांट ज्यादा पड़ती थी या दुलार ज्यादा मिलता था, क्योंकि हम पूछना चाह रहे हैं कि आप बचपन में थे शरारती या शरीफ, या बचपन की इन यादों को सुनकर आप भी भरते हैं ठंडी ठंडी आहें, या आपके अंदर अब भी आप अपने इस बचपन को जीते हैं। ये सारी बातें हम तक पहुंचाइए, हमारे बहुत से साथियों ने बहुत से कमेंट्स लिखे हैं, लेकिन हम आपको सुनवाते हैं पहले कार्यक्रम का पहला गीत।

मुकेश की आवाज में देवर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और याद किया जा रहा था बचपन को, क्योंकि आज हम भी कुछ याद ही कर रहे हैं क्योंकि गर्मियों की छुट्टियों की बातें हो रही है। हमारे एक साथी ने लिखा कि सुरीला सफर में आज अपने पुराने दिनों को याद करेंगे, बचपन की गलियारों में झांकेंगे। तो आज की इबारत में से याद शब्द तो हमने ले लिया एक गीत में, और कौन से शब्द हो सकते हैं जिनके गीत आज के कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं आप हमें बताइए। हमारे साथी ने बताया, हमने पूछा था कि कौन कौन से और खेल आप खेलते हैं, क्योंकि हमारे इबारत में तो सिर्फ दो खेल के नाम हैं। तो उन्होंने बताया कि पकड़ दांव, लंगड़ी, खो खो, रुमाल दांव, कबड्डी जैसे कई खेल खेला करते थे। वेकेशन में दोस्तों के साथ उनके खेतों में जाते थे, नहाते थे, कच्चे आम, इमली, शहतूत जैसे फल खाने का आनंद भी खूब उठाया है। बचपन अनमोल था, कोई भी कीमत से उसे नहीं खरीदा जा सकता। हमारे एक और साथी ने बताया कि बचपन में पढ़ता था तब दोस्त फिल्म दिखाने हमें काका जी सभी कजन भाई को लेके गए थे। बचपन में छोटे धर्मेंद्र होते हैं तो पिताजी उन्हें आती जाती रेल दिखाते हैं, गाना बजता है, हम उसे आकाशवाणी गीत कहते थे। फिल्म में फिर कई बार गाना बजता है, जब धर्मेंद्र बड़े हो जाते हैं, रेलगाड़ी में बैठते हैं तब भी गाना बजता है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। और हमारे एक और साथी ने कहा कि बचपन में गर्मियों की छुट्टियां पड़ते ही हम सुबह का खाना लेकर अपने परिवार के साथ खेत पर चले जाते थे, वहीं वटवृक्ष की छांव में बैठकर ठंडी ठंडी हवा के साथ हम खेलते थे, अंताक्षरी खेलते थे, खाना खाते थे, थोड़ी देर सुस्ताकर पेड़ ये कैरियां तोड़कर लाते थे। जब गन्ने से गुड़ बनाया जाता था तो हम पहले उसका रस पी लेते थे, कितना सुकून मिलता था, काश वो बचपन के दिन वापस लौटकर आ जाएं। भाई ऐसा तो नहीं हो सकता है, लेकिन आज गीतों के जरिए जरूर आपको कुछ यादें ताजा हो सकती हैं। हमें ये भी बताइए कि क्या आप बचपन को जीते हैं अब भी, क्या पिकनिक वगैरह पर कहीं जाते थे गर्मियों की छुट्टियों में। और ये सारी बातें बताते बताते हमारे साथी जब गर्मियों की बात कर रहे हैं तो वो पसीने की बात बहुत कर रहे हैं कि भाई बड़े पसीना छूटता है, गर्मी बड़ी तपती है। तो एक गीत वैसा ही सुना दें आपको, बताइए कौन से फिल्म का ये गीत है।

हुस्न का गुलाम फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। गीता दत्त और उषा मंगेशकर की आवाजें, योगेश के बोल, रॉबिन बनर्जी का संगीत। फिलहाल तो हमें नहीं दिखा है कि किसी ने सही जवाब हमें भेजा हो, पर हो सकता है नेटवर्क के इश्यू की वजह से कभी कभी लेट भी जवाब मिल जाता है। हालांकि हमारी एक साथी कहती है कि गर्मी की छुट्टियां यानी ननिहाल या दूर गांव में सफर पर जाने का मौज मस्ती का सुहाना मौसम। आपने सभी के बचपन वाले से मनभावन यादों को आज हम याद करने वाले हैं और उन्होंने बहुत से गीत भी भेजे हैं जिन शब्दों से आज के कार्यक्रम में गीत हो सकते हैं। अब उन्हें ये देखना होगा कि भाई उनके गीत आज के कार्यक्रम के गीतों के लिस्ट से मैच होते हैं या नहीं। हालांकि हमें लगता है कि कोई ना कोई गीत तो जरूर सबकी लिस्ट से मैच हो ही जाएगा। हमारे एक और साथी बता रहे कि हमने पूछा था ना कि नानी और दादी से डांट पड़ती है कि प्यार मिला हमेशा, यानी शरारती थे या शरीफ। तो हमारे एक साथी कह रहे हैं, बहुत से साथियों ने तो कह दिया वो शरीफ थे भाई। और एक और साथी कहते हैं कि दादी नानी से ढेर सारा प्यार और डांट भी मिली। मेरी दादी हमें लेकर सब्जी भाजी लेने जाती, लौटते समय कुछ ना कुछ खाने को पक्का मिलता। और नानी तो जब भी घर आती तो बच्चों के लिए चीजी और खिलौने की प्रतीक्षा रहती थी कि इस बार क्या लाएंगी। हमने तो अभी भी उनके खिलौने बहुत संभाल कर रखे हैं। नानी दादी नाना दादाजी सभी बहुत याद आते हैं और हर वर्ष गर्मियों की छुट्टियों में अधिक ही याद आते हैं। हमारे साथी कह रहे हैं कि बचपन में उन्होंने साथियों के साथ गिल्ली डंडा, चुपम छुपाई, पोसंपा, लड्डू कंचे, माफ कीजिएगा, लट्टू कंचे, आम डंडी और चोल पुलिस कैरम ये सारे खेल खेले हैं। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि नानी के गांव की बात हो तो गर्मी हालांकि सभी हदें पार कर रही है, लेकिन अगर नानी के घर की बात हो तो सर्दी हो गर्मी हो सभी फुर हो जाती है। पिछले एक दशक से हमारे इंदौर से रेल मार्ग बंद है तो सफर में पहले जैसा उतना आनंद नहीं आता, लेकिन वो मजा नहीं आता जो रेल की गाड़ी में यात्रा करते हुए आता है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि दादी माँ बहुत ज्यादा डरा के रखती थी, हम लोगों को उनकी आंख से डर लगता था, हम लोग बहुत बदमाशी करते थे इसलिए। और नानी भी के घर में नानी को ज्यादा डांटने का मौका नहीं मिलता था, पर डर डर के हम लोग रहे बचपन में भाई। लेकिन आप साथ में तो बता रहे ना कि इतनी शरारते करते थे, थोड़ा डराना तो जरूरी पड़ता है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि गर्मियों में जब घर से बाहर निकलना बंद हो जाता था तो समय बिताने के लिए हम घरेलू इंडोर खेल खेलते थे, जिसमें चूड़ियों के टुकड़े और इमली के बीज के साथ खेलने वाला खेल जो कि लूडो से मिलता जुलता खेल था। जमीन पर चौक से कुछ ब्लॉक ड्रॉ करके चार अलग अलग रंग की चूड़ियों को रखकर इमली के बीज बनते थे हमारे पास और हम इसे खेलते थे। इसे चाय चूड़ी कहते थे स्थानीय भाषा में भाई। इस तरह का खेल हमने भी कुछ खेला है और बड़ा ही आनंद आता है उस खेल को देखकर। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि भाई हम कार्यक्रम में बैडमिंटन वगैरह उन्होंने बहुत खेला है, अंताक्षरी खेली है ऐसा वो बता रही हैं। बचपन में पकड़म पकड़ाई, बर्फ पानी और लुका छुपी छुपाई बहुत हम खेला करते थे बचपन के टाइम से। हमारे साथियों ने कहा बहुत सारे खेलों के बारे में बता रहे हैं। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जुजस्ती हुई

0: गर्मी में रेलगाड़ियों का लंबा सफर करीब 1500 किलोमीटर तय करके हम अजमेर से पश्चिम छोर गुजरात के सोमनाथ तीर्थ पर आज दोपहर पहुंच गए हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। तो भाई आपके साथ आपका ये सफर सुहाना हो, हम यही कह सकते हैं। और एक गीत क्यों ना बताया जाए, क्यों ना सुनाया जाए आपको, क्योंकि बात हो रही है छुट्टियों की, तो ऐसा ही एक गीत आपके लिए भेज रहे हैं। बताइए कौन सी फिल्म का गाना है।
1: तूने मुस्कुरा के

0: मेरी छुट्टी हो गई,
1: दूसरी ढूंढ ले लुगाई।
0: मेरी छुट्टी हो गई, तूने मुस्कुरा के देखा, मेरी छुट्टी हो गई, मेरी छुट्टी हो गई, मेरी छुट्टी हो गई। जान किस अदा से, जान किस

0: जाने किस अदा से, जाने किस अदा से देखा सबकी छुट्टी हो गई, जाने किस अदा से देखा सबकी छुट्टी हो गई।
1: मोहम्मद रफी और कृष्णा कल्ले की आवाज में आप सुन रहे थे शंकर खान फिल्म का ये गीत। फिल्म का नाम ही हमने आपसे पूछा था, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, बल्कि इससे पहले वाली जो फिल्म का नाम हमने पूछा था हुस्न का गुलाम, वो जवाब भी आपने हमें दिया, आपका जवाब हमें मिल गया। हमारे साथ ही आप सुन रहे हैं मिलकर हम सभी सुरीला सफर, जिसमें आज इस इबारत जो हमने भेजी है जिसमें गर्मियों की छुट्टियों की बातें हैं और दादी नानी के घर की बातें हैं, वो सारी बातें हम कर रहे हैं, वो अनुभव हम आपस में बांट रहे हैं और साथ ही उनमें कुछ शब्द हैं जिनसे गीत आपको सुनवा रहे हैं। और आपकी लिस्ट और हमारी लिस्ट मैच हो जाए इसका तो बड़ा ख्याल रखा जा रहा है, देखते हैं कहां कहां तक हमारी और आपकी लिस्ट मिलती है। हमारे साथी कहते हैं कि नानी दादी की संगत तो नसीब नहीं हुई, मगर ये कमी अपने नातिन और पोतों को दुलार करके हम पूरी कर रहे हैं। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि आज भी बचपन में जीता हूं, एरोप्लेन की आवाज आती है तो ऊपर देखता हूं, रेलवे स्टेशन से गुजरती गाड़ी के डिब्बे गिनता हूं, बच्चों के साथ खेल खेल में जुड़ जाता हूं। एक साथी ने बताया कि बचपन में पकड़म पकड़ाई, बर्फ पानी और लुका छुपी खेला करते थे। और हमारे साथी बोल रहे हैं कि उन्होंने बताया कि छुपन छुपाई, कोकोनट, रंग पूछने वाला खेल, चोर सिपाही, खो खो आदि खेलते थे।

एक और साथी ने बताया कि दादी घर में सब मोहल्ले के बच्चे लड़कियां मिलकर 7x7 स्टोन्स वाला गेम होता था, जिसको बॉल से गिरा के वापस से लगाना होता था। ये बहुत खेला करते थे हम सड़क पर। और हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि गर्मियों के मौसम में अपने दोस्तों के साथ सितोलिया, कबड्डी, लुका छुपी, मार दड़ी, क्रिकेट, फुटबॉल और वॉलीबॉल जैसे अनेक प्रकार के खेल खेले हैं। और हाथ से झलने वाले पंखे याद करें हमारे एक साथी जो उसके बारे में बता रहे हैं। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि जब छोटे थे तो नानी के घर में ही रहा करते थे। और एक और साथी कह रहे हैं कि नानी के यहाँ तो साल में 10-15 दिन जाते थे, लेकिन दादी तो हमेशा साथ रहती थी, बहुत अच्छी थी, हम उन्हें हाथ से खाना खिलाते थे, उनको बहुत मिस करते हैं। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है कि व्यक्ति कितना भी बड़ा हो जाए, उसके दिल के एक कोने में बचपना हमेशा जिंदा रहता है। कुछ लोग उम्र के साथ उसे छिपा देते हैं, पर कुछ लोग बचपना खुलकर जीते हैं, वो हमेशा खुश रहते हैं, तनाव से दूर रहते हैं। अब दादी और नानी की बात हो गई है, तो उन पर जो उनके संबंधित जो गीत हैं वो सुनवा दिए जाएं। भाई दादी वाला गीत तो हमने चुन लिया है, हो सकता है आपके लिस्ट से वो मैच करे, लेकिन नानी पर आधारित दो गीत हमारे पास हैं। अब आपको ये बताना है कि नानी की नाव आज चलेगी या नानी की मोरनी को मोरों के साथ भेजा जाए। तो आप हमें बताइए, तब तक हम दादी वाला गीत आपको सुनवा रहे हैं। किस फिल्म का ये गीत है ये भी बताइए।

घराना फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और फिल्म का नाम ही हमने आपसे पूछा था, आपने बिल्कुल सही नाम बताया। हमारे साथी कहने की आज की इबारत प्रासंगिक और रोचक है और बचपन की स्वर्णिम यादों संग पारिवारिक मनोरंजन के विभिन्न आयाम को दर्शाती है। रेलगाड़ी का सफर हो या सैर सपाटे का जिक्र, बच्चे से लेकर हम उम्र वालों को रोमांचित करता है। इतनी रोमांच होता है गर्मियों का कोई असर इस सफर को निरुत्साहित नहीं कर पाता। गांव की गलियों में वो गिल्ली डंडा, लट्टू खेलना, चोर सिपाही खेल याद आते हैं तो आंखें सजल हो जाती हैं और

0: मेरे साथियों ने बहुत सी बातें याद की हैं। हमारे एक साथी कहते हैं कि हम झरने के पास समंदर के किनारे पश्चिमी घाट के सैरगाहों पर जहां सुकून और शांति दोनों मिलते हैं वहां जाएं, और गर्मी की छुट्टियां हो रही हैं तो बच्चों को नानी के घर भेजने के बजाय सबको सिक्किम जैसी जगहों पर घुमाने ले चलें, जहां के एडवेंचर देखते सब गदगद हो जाएंगे। पहाड़ों पर मिलने वाला गर्म सूप सबको पसंद आएगा। भाई एक अच्छा आइडिया तो है, लेकिन नानी के घर की बराबरी तो कोई भी जगह नहीं कर सकती। हमारे एक और साथी कहने की छुट्टियों में दादी और नानी के घर जाना बच्चों वाला सभी बच्चों को पसंद है, और हम नानी को बंगाल टाइगर बोलते थे क्योंकि हमारी नानी किसी से भी डरती नहीं थी। बंदर को भगाना हो, चिड़िया पकड़नी हो, चिड़िया को पकड़कर उस पर कलर लगा देती थी। हम लोग भी नानी के यहां जाने पर आम के पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ते, और जब माली आता तो छोटा पेड़ होने के कारण हम पेड़ से कूद जाते। कभी कभी तो चोट भी लगती थी, और बहुत सारे खेल थे, कागज पर चोर पुलिस खेलना, कैरम बोर्ड खेलना, कच्चे गिट्टे बहुत खेलते थे, हार जाने पर कच्चे और गिट्टे फेंक भी देते थे। तो बचपन को असल में इन्होंने याद कर लिया। हमारे एक और साथी कहने कि बचपन में हम चक्का चलाते थे और रेडियो जब बजता था तो ऐसा महसूस होता था कि इसके भीतर बैठे बैठे लोग बोल रहे हैं, और हमें आज भी अपना बचपन याद आता है। हमारे एक और साथी बता रहे कि गर्मियों का मतलब फ्रिज में रखी ठंडी ठंडी पेय पदार्थ, मिट्टी के घड़े का पानी, ढेर सारे रसीले आम, रात में छत पर पानी छिड़क कर बिस्तर लगाना और तारों को गिनते हुए सो जाना। ये सुकून आज के एयर कंडीशन में भी नहीं मिलता। जैसे कि आपने जिक्र किया, गिल्ली डंडा, छुपन छुपाई, पूरा मोहल्ला ही हमारा मैदान होता था, और हम दोस्त के घर का दरवाजा हर दोस्त के घर का दरवाजा हमारे लिए हमेशा खुला रहता। बचपन की यादें वाकई किसी मीठे नरम फाहे की तरह हैं, और जो जिंदगी की भागदौड़ में हमें थोड़ी ठंडक दे जाती है। हमारे एक और साथी बता रहे कि सफर में सबसे मजा आता था, ऐसे तो गार्जियन कुछ नहीं खरीदेंगे, पर ट्रेन में ये डिब्बे में दूध का मलाई, बर्फ, लेमन जूस, ककड़ी, मूंगफली बहुत बेचने वाले आते थे, और हम खूब खरीदते थे और खरीदवाते थे, खाते थे। ऐसा तो जरूर होता था, और उन्हें भी मन कर जाता था ना लंबे सफर में कुछ खाने का। हालांकि हमने आपसे पूछा था कि नानी पर दो गाने हमारे पास हैं, तो नानी की नाव चलाएं या नानी की मोरनी की बात होगी, ये हमने आपसे पूछा था। हमारे साथियों ने क्या कहा ये तो हमने देख ही लिया, लेकिन हम सुनवा रहे हैं आपको ये गीत। बताइए किस फिल्म का है।
1: नाव चली नानी की नाव चली, नीना की नानी की नाव चली लंबे सफर पे, आओ चली भागो चली जागो चली, ये कैसे चले लाओ पैसे चले, खड़े हो जाओ तीन तीन की लाइन में, खड़े हो जाओ लाइन में, खड़े हो जाओ सब खड़े, ला ला ला ला ला लाइन में लाइन में लाइन में लाइन में लाइन में लाइन में, तुम भी खड़ी हो जाओ, जा जा जा जा उधर लाइन में, हाँ तुम भी आओ ना।
2: मेरे पास पैसा नहीं है।
1: पैसे नहीं है तो ये लो, लाओ पैसे और लाइन में खड़ी हो जाओ, जाओ पहले वो तीन फिर तीन फिर दूसरे तीन, तुम भी आओ पहले लाइन में चले आओ। अब शुरू करते हैं, एक दो
3: नाव चली नानी की नाव चली, नीना की नानी की नाव चली लंबे सफर पे, सामान घर से निकाले गए, नानी के घर से निकाले गए, इधर से उधर से निकाले गए और नानी की नाव में डाले गए।
2: क्या डाले गए?
3: एक छड़ी, एक घड़ी, एक झाड़ू, एक लाड़ू, एक संदूक, एक बंदूक, एक तलवार, एक तलवार, एक घोड़े की जीन, एक ढोलक, एक बीन, एक घोड़े की नाल, एक धीवर का जाल, एक लहसुन एक आलू, एक तोता, एक भालू, एक डोरा, एक ड्री, एक बोरा, एक बोरी, एक डंडा, एक झंडा, एक हंडा, एक अंडा, एक केला, एक आम, एक पक्का, एक कच्चा, और टोकरी में एक बिल्ली का बच्चा। फिर एक मगर ने पीछा किया, नानी की नाव का पीछा किया, नीना की नानी की नाव का पीछा किया।
2: क्या हुआ?
3: चुपके से पीछे से ऊपर से नीचे से एक एक सामान खींच लिया, एक बिल्ली का बच्चा, एक केला, एक आम, एक पक्का, एक कच्चा, एक अंडा, एक हंडा, एक झंडा, एक डंडा, एक बोरी, एक बोरा, एक डोरी, एक डोरा, एक तोता, एक भालू, एक लहसुन एक आलू, एक धीवर का जाल, एक घोड़े की नाल, एक ढोलक, एक दीन, एक घोड़े की जीन, एक तलवार, एक तलवार, एक बंदूक, एक बंदूक, एक लाडू, एक झाड़ू, एक झड़ी, एक घड़ी।
2: मगर नानी क्या कर रही थी?
3: नानी थी बेचारी बुढ़ी बहरी, नीना की नानी थी बुढ़ी बहरी, नानी की नींद थी इतनी गहरी, इतनी गहरी।
2: कितनी गहरी?
3: नदिया से गहरी, दिन दोपहरी, रात की रानी, ठंडा पानी, गरम मसाला।

0: पेट में ताला 16.5, 15, 15 2, 3, 3, 45, 4, 7 75, 96, 90 7, 5, 8, 20 नंबर 35 गले में रस्सा।
1: आशीर्वाद फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। अशोक कुमार की आवाज, गुलजार के बोल, बसंत देसाई का संगीत। कार्यक्रम सुरीला सफर विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। हमारे एक साथी बता रहे हैं कि मेरा ननिहाल तो लोकल ही था, पर मेरी तीन बुआ बाहर रह करती थी। गर्मी की छुट्टियों में सब बच्चों सहित आते थे, तब हम लोग चिट्ठी लिखकर पता करते थे कि कब वे आ रहे हैं। खूब प्लानिंग करते थे, मोहल्ले के बच्चों के साथ मिलकर खूब मस्ती करते थे, तरह तरह के खेल खेलते थे। सुबह सब मिलकर मॉर्निंग वॉक पर जाते, एक घर के सहायक थे, हम लोगों के साथ रहते थे। मेरे पिताजी वकील थे और कोर्ट में भी 2 महीने की छुट्टी होती थी, उनका ऑफिस भी खाली रहता था जो घर के पास ही था। दिन में बाहर धूप होने के कारण सब वहीं इकट्ठा होते थे, फिर खूब धमाक चौकड़ी मचती थी। लड़ते भिड़ते रोते हंसते सब अपने अपनी समस्या का समाधान कर लेते थे। वो दिन बहुत याद आते हैं, वाकई वो दिन बहुत याद आते हैं। जब छोटे रहते हैं तो कुछ इतनी ज्यादा चीजें सोचते नहीं हैं, अभी लड़ाई होती है और अभी मिल जाते हैं और अपने मन में कोई बातें इस तरह से नहीं पालते। हालांकि हमने नानी के बारे में जब पूछा कि कौन सा गीत सुनाया जाए तो दोनों ही गीतों की फरमाइश आई और कहा गया कि वे दोनों ही गीत सुनने चाहिए। आशीर्वाद फिल्म का गीत आपने सुना, सही जवाब हमारे साथी ने दिया। और हमारे साथी कह रहे हैं कि बात तो समय की है, जब हम अपने दोस्तों को घर से बाहर खेलने के लिए बुलाया करते थे उसके भी कोड वर्ड हुआ करते थे, सीटी बजाना, कोयल की आवाज, टक टक की आवाज निकालना आदि। वो सब आवाज मेरे अंदर बैठी है, बैठा मेरा दोस्त सुन लिया करते थे और तुरंत बाहर खेलने आ जाया करते थे। तो इस तरह से होता था ये काम कि किस तरह से, क्योंकि घर से बाहर निकलने की मनाही होती थी धूप में। हाँ, हालांकि नानी की इतनी बातें हो रही हैं तो हमने सोचा कि क्यों ना दोनों ही गीत आपको सुनवा दिया जाए। तो ये सुनवा रहे हैं दूसरा गीत, बताइए किस फिल्म का ये गीत है। और इसी नाम से एक और फिल्म बनी, उसमें भी बच्चों का एक गीत है, अगर आप वो भी बता सकें तो क्या ही अच्छा होगा।

मासूम फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे रानू मुखर्जी की आवाज में। और हमने ये पढ़ा, हमारे साथियों ने कमेंट किया हुआ था कि भाई नानी का एक गीत तो सुनवा दिया लेकिन दूसरा गीत आपने नहीं सुनवाया। और हमारे बहुत से साथी तो रूठने का प्लान बना रहे थे लेकिन ये अच्छा हुआ कि उनका प्लान नहीं बन पाया, क्योंकि छुट्टियों में नानी की बातें दो बार ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता। वहीं हमारे साथी ने बहुत सारी बातें कह रहे हैं और कह रहे हैं कि दूसरे दूसरे गीतों की फरमाइश भी कर रहे हैं, लेकिन देखिए क्योंकि शब्द जो हों उनसे आधारित गीत ही हम सुनवा सकते हैं। हमारे एक और साथी ने बताया कि परिवार की बात चल रही है तो भाभी जी को ट्रेन से बुलवा लीजिए और मामा जी को रॉकेट पर घूमने चलते हैं। भाई दोनों काम करेंगे तो नानी जी के घर पे कौन रहेगा, तो इसलिए अभी इस कार्यक्रम में हम बता रहे हैं कि हमारे एक साथी कह रही कि आज जीवन का संध्या समय सुनहरे बचपन की मासूम अलहड़ बातें याद करने से सुखमय हो जाता है। प्रदूषण रहित सृष्टि का सानिध्य, नदी में नहाना, मछलियां देखना, नीम के पेड़ पर बंधे झूले पर झूलना, अलग अलग तरह के पशु पक्षी देखना, विशाल वटवृक्ष की छाया में नानी के हाथ का घर का बना मक्खन और रोटी का नाश्ता, अमराई के आम खाते खाते सभी रिश्तेदार भाई बहनों के मेले में छुट्टियां कैसे गुजर जाया करती थी पता ही नहीं चलता था। वाकई वो दिन किस तरह से गुजरते थे हमें पता नहीं चलता था, शायद इस वजह से भी गर्मियों की जो छुट्टियां हुआ करती थी वो बड़ी छोटी लगती थी। हमारे साथियों ने बताया कि एक दूसरा जो मासूम फिल्म है वो भी है, लेकिन हमारे साथी थोड़ा ज्यादा दोनों उन्होंने गीत पसंद किए क्योंकि मासूम नाम से तो तीन फिल्में बनी हैं। और हमारे एक साथी ने बताया कि मासूम में लकड़ी की काठी वाला गीत है। और एक और साथी ने बताया छोटा बच्चा जान के कोई ना आंख दिखाना दे, ये भी मासूम फिल्म का ही गीत है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि कांच का कंचा, माचिस की अलग अलग छाप वाली, लोहे का पहिए को सरिये से चलाना, हाथों में चलने वाली तार की दो पहियों वाली से जुड़ा हुआ ऊपर तक छोटा स्ट्रिंग वाली हाथों से चलाकर तार की गाड़ी मैंने अपने हाथ से बनाई थी। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आशीर्वाद फिल्म का गीत आपने सुनाया, बिल्कुल सही आपने बताया, और इसके बाद मासूम फिल्म का गीत भी हम सुन चुके हैं। हमारे एक और साथी बता रहे हैं कि घर में ही खेलने के लिए अंताक्षरी, लूडो, चोर सिपाही, वजीर बादशाह, कैरम, 3-2-5 आदि खेलों से नाना नानी, मामा मामी, मौसी सभी दिल बहला लेते थे। शाम को 4 बजने की प्रतीक्षा रहती थी। एक और साथी कहने कि नानी की डांट तो नहीं पड़ी पर उनका वो 54, 58 और 1 रुपए वाला बड़ा याद आता है कि जाओ कुछ लेकर खाना, और वो फ्रॉक के लिए उनका कपड़ा लेकर आना, अच्छी तरह से सिलवाना मम्मी से। दादी भी नहीं डांटती थी, प्यार ही ज्यादा पाया। हाँ, कभी कभी हम गीले पोछे पर चलते और भाई बहन लड़ते तो जरूर कोई ना कोई पीटता। दोनों ने डांट तो नहीं खाई, सीधा पिटाई खाई है, लेकिन काम भी कुछ ऐसा ही रहा है तो इसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते। बस हम कर सकते हैं एक काम कि कुछ खेलों को याद कर लें। चलिए सुनाते हैं आपको ये खेल से जुड़ा गीत। हमें बताइए कि किसने लिखा है ये गीत और किस फिल्म से हमने लिया।

मैंने नहीं तो

ड्रीम गर्ल फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, जिसे लिखा आनंद बख्शी ने, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। फिल्म का नाम आपने बिल्कुल सही बताया। हमारे एक साथी कह रहे हैं, नहीं लेकिन इससे पहले आपसे एक सवाल पूछ लें। देखिए, इस गीत में कई बार ये कहा गया कि अच्छी तरह से किया नहीं गया, जब वो छुपन छुपाई खेल रहे हैं तो अच्छी तरह से आंख बंद नहीं की और चुपचाप देख लिया गया, वहीं जब उसे ढूंढ लिया जाता है तो भी कहा जा रहा है कि हम इस बात को नहीं मानते। तो इस तरह का खेल में कौन किया करता था? कि आप में से कोई ऐसा है जो ये किया करता था, खेल में एक बार पकड़े जाने के बाद कहता था कि हम नहीं मान रहे या हम नहीं खेल रहे, और इस तरह से रूठ जाता था, या घर के बड़ों को बुला के ले आता था कि भाई देखिए ये हमारे साथ इस तरह का काम करे, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं। तो क्या आप ऐसा करते थे, थोड़ी बड़ी बेईमानी करते थे खेल में? हमें बताइए। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बचपन में हमारे मामा लोगों ने कॉमिक्स बहुत सारी इकट्ठी करके उनको बाइंड करके रखा था, तो दोपहर में तो कहीं निकलने का सवाल ही नहीं था, हम लोग तो बस उसे ही पढ़ते रहते थे। हमारे एक साथी याद कर रहे हैं अपनी नानी को, जो एक पैसों की थैली अपनी कमर में खोंस कर रखती थी। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हाथ का पंखा भी झला है, पंखे का फ्रेम आता था, उसे हमने क्रोशे से बनाया है। गर्मी की छुट्टियों में ननिहाल में जब लाइट नहीं थी तो गर्मी लगने पर हम दालान में लगे नीम के पेड़ पर चढ़कर बैठ जाते थे और अपनी हमउम्र मौसियों के साथ बड़े मजे करते थे। हमारे एक साथी ने सत्य घटना बताई कि बरसों पहले रेलवे स्टेशन पर पानी पीने के लिए छोटी सी रूप में बड़े मटके और लंबी मिट्टी की पानी का बर्तन, जिसे कोठी गुजरात में कहा करते हैं, कोई बुजुर्ग बैठे मुसाफिरों को गिलास में पानी पिलाते थे, कोई 2-3-5-10 पैसा देते थे, निःशुल्क रेलवे की तरफ से व्यवस्था होती थी। स्टेशन में छोटी आधी गोल टंकी होती थी, ऊपर पानी का नल को दबाकर खड़े खड़े पानी पी सकते थे, तो नल के ऊपर का गोला उसे दबाते थे तो पानी आता था। मैंने बचपन में देखा था, एक बार एक बुजुर्ग दादा पानी पी रहे थे तो उनकी तरफ छिप गई और फिर वो बोल रहे थे कि बस अब नहीं, लेकिन वो पानी बंद ही नहीं हो रहा था। तो उसके बाद उन्हें हमने बताया कि गोला छोड़ेंगे तो पानी रुकता है, तो किसी ने आवाज दी, दादा आप नल की वो गोले को छोड़ दीजिए तभी पानी अपने आप रुक जाएगा। और पुराने जमाने में बुजुर्ग लोग ऐसे भोले भाले होते थे, ऐसा हमारे साथी ने बताया।

हमारे एक और साथी बता रहे हैं कि रात की छत, खुले आसमान के नीचे चारपाइयों पर लेटना, तारों को गिनना, सूरज ढलते ही मैदान आबाद हो जाते थे, ना कोई होमवर्क की चिंता, ना सुबह जल्दी उठने का डर, बस गलियों में क्रिकेट, पकड़म कड़ाई या गिल्ली डंडा, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी वाली बात तो अपनी जगह है, लेकिन वो धूप में तपती दोपहरी वाली मस्ती भी एक अलग ही किस्म का सुकून देती है। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि गर्मी की छुट्टी का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता था, क्योंकि नानी के घर जाते थे, वो भी रेलगाड़ी से, उस पर भी यदि विंडो सीट मिल गई तो फिर तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती थी, लेकिन भाई बहनों से लड़ाई भी होती थी और फिर बारी बारी से सब बैठते थे, सैर सपाटा, पिकनिक, बाग बगीचा सब कुछ जैसे पीछे छूट गया, क्योंकि अब तो स्वरूप भी बदल गया बहुत सारी चीजों का। और एक साथी कहती है कि गर्मी की छुट्टी का और रेलगाड़ी का बहुत पुराना नाता है, बचपन में जब गर्मी की छुट्टी होती थी तो हम कैसे खुश हो जाते थे कि अब नानी दादी के गांव जाने को मिलेगा, वे दिन सैर सपाटे के थे, अब कहां चले गए पता नहीं चला। और हमारे साथियों ने बहुत से गीतों के बारे में लिखा है कि कौन कौन से गीत हो सकते हैं, आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आपके लिस्ट में से कितने गीत आज के इस कार्यक्रम में अब तक शामिल हुए। तब तक हम आपको सुनवाते हैं ये गीत, बताइए किसकी आवाजें हैं इसमें।

सुजाता फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले और गीता दत्त की आवाजों में। हमारे साथी कह रहे कि पहले के समय में फिल्म देखकर जो आते थे उसकी स्टोरी सुनाने का भी तो रिवाज था। हाँ, ये रिवाज तो अब भी बना हुआ है। और हमारे एक और साथी कह रहे कि मेरे गानों की लिस्ट में से 6 गाने बच चुके हैं, किसी की लिस्ट में 4 में से 2 गाने शामिल हो चुके हैं, तो किसी की लिस्ट में से कुछ गाने शामिल हुए हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि जो आगे के गाने आएंगे वो उनकी लिस्ट के गानों में से ही होंगे। हमारे एक साथी कहने कि गर्मी की छुट्टियां बचपन की सबसे मीठी यादों का खजाना होती है। जैसे ही छुट्टियां शुरू होती मन में नानी के घर जाने की खुशी उमड़ पड़ती थी। रेलगाड़ी का सफर अपने आप में एक उत्सव सा लगता था। खिड़की से भागते पेड़, खेत, छोटे छोटे स्टेशन और कुल्हड़ वाली चाय आज भी यादों में मुस्कान भर देती है। आज समय बदल गया है लेकिन गर्मी की छुट्टियों के भी मधुर स्मृतियां आज

भी मन को ठंडी छांव जैसा सुकून देती है। वहीं हमारे एक साथी ने लिखा है कि आजकल के बच्चे मोबाइल के मिसयूज में लगे रहते हैं, पूरे टाइम स्क्रीन में लगे रहते हैं, वो तो ये सारी गर्मी की छुट्टियों का आनंद नहीं लेते। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये भी सोचना होगा कि इसमें हमारी भी तो कोई गलती है, क्योंकि अगर हम उन्हें ये नहीं बताएंगे कि क्या क्या किया जा सकता है तो वो जो सामने आएगा वही सीखेंगे। वही हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जब छोटे थे तब वेकेशन में नाना नानी या दादा दादी के घर जाते थे, ट्रेन में सबसे पहले खिड़की वाली सीट को हासिल कर लेते थे, पेड़ को पीछे की ओर जाते देखने में मजा आता था। मन में सवाल ये भी उठता था कि सूरज गाड़ी के साथ क्यों और कैसे आता जाता है। ट्रेन में खाने पीने की चीज लाने वाले सेल्समैन को देखकर लालच भी होता था, पर असली मजा तो घर से लाए हुए थेपले और अचार में ही आती थी। अरे आप जब ट्रेन का सफर करते थे तो क्या लेकर जाते थे अपने साथ खाने के लिए, ये हमें बताइए। तब तक हम आपको ले चलते हैं ट्रेन के सफर पर। बताइए किस फिल्म का

परिणीता फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम हमने आपसे पूछा, आपने बिल्कुल सही बताया। हमारे साथी कह रहे हैं कि खेलों में एक बेईमान का होना एक अलग ही मजा देता था, वाद विवाद ना हो तो क्या बचपना। वही हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि कई बार बहुत सी मतलब बेईमानी तो थोड़ी बहुत करते थे लेकिन बाद में कह दिया करते थे कि उन्होंने झूठ बोला है। तो इस तरह की मासूम बेईमानियां होती थी। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हम लोग घर से चावल, भुजिया, रोटी, आलू की भुजिया, गुजिया, ठेकुआ, चिप्स, बहुत सारा खाना लेके जाते थे, पेपर ले जाते थे, पानी ले जाते थे। भाई जो जाते थे इतनी खुशी होती थी, पर जब वापस आना होता था तो बड़ा दुख होता था। लेकिन क्या करें, उसके लिए भी तैयारियां होती थी नानी की तरफ से या दादी की तरफ से, जहां भी हम जाते थे। और मन में कुछ टीस की भाव होते थे क्योंकि अगर गाड़ी हो सवेरे की तो जाना होता था। चलिए सुनते हैं वो गीत, बताइए किस फिल्म का।

लैड साहब फिल्म का ये गीत आपने सुना और जैसा इसमें कहा गया भी समय जब होता है तो जाना ही होता है, तो छुट्टियां खत्म होती है तो हम भी लौटते हैं और कार्यक्रम का वक्त भी हो चुका है तो हमें भी इस कार्यक्रम से लेनी होगी इजाजत। आप सभी बने रहिए विविध भारती के साथ, क्योंकि विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहता है 24 घंटे।

आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर श्रोता सुन रहे हैं हमारी पहली सभा के कार्यक्रम। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय दिन के 1 बजने को है। थोड़ी देर में हमारे प्रादेशिक एकांश समाचार प्रसारित होंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को 14 जून तक प्रवेश पत्र उपलब्ध करा दिए जाएंगे। श्री प्रधान ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कम्प्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भविष्य में किसी भी तरह की अनियमितताओं को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने संबंधी उपाय किए जाएंगे। वैश्विक ईंधन संकट के बीच तेल विपणन कंपनियों ने देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। पेट्रोल की कीमतों में प्रति लीटर 3.14 रूपये जबकि डीजल की कीमतों में 3.11 रूपये प्रति लीटर की वृद्धि हुई है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। अब पेट्रोल की कीमत पटना में 108.67 रूपये प्रति लीटर हो गई है। वहीं डीजल की कीमत 94.65 रूपये प्रति लीटर हो गई है। इसके साथ सीएनजी के दामों में भी 2 रूपये प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऊर्जा संरक्षण की अपील का बिहार में असर दिखने लगा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने सरकारी आवास से सचिवालय तक पैदल पहुंचे। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश भी पैदल अपने कार्यालय पहुंचे। वहीं

0: शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ई रिक्शा की सवारी कर अपने कार्यालय पहुंचे। सचिवालय के अधिकारियों और कर्मियों ने भी कार्यालय पहुंचने के लिए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग किया। इधर खगड़िया के जिलाधिकारी नवीन कुमार और पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार साइकिल से अपने कार्यालय पहुंचे। गयाजी स्टेशन परिसर में आरपीएफ के जवानों ने गाड़ियों की जगह साइकिल से गश्ती की। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। मौसम विभाग ने आज किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सीतामढ़ी, वैशाली और समस्तीपुर समेत राज्य के उत्तर पूर्वी और उत्तर मध्य जिलों में बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। इधर विभाग ने अगले कुछ घंटों के दौरान औरंगाबाद, गया, कैमूर और रोहतास जिले में कुछ स्थानों पर बारिश की चेतावनी जारी की है। एकलव्य आवासीय खेल प्रशिक्षण केंद्र और जिला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में दाखिले के लिए आज से सिलेक्शन ट्रायल्स शुरू हो गया है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन ने बताया कि ट्रायल 22 मई तक चलेगा। उन्होंने बताया कि एकलव्य प्रशिक्षण केंद्र में दाखिले के लिए 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के, जबकि जिला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में दाखिले के लिए 16 से 18 वर्ष आयु वर्ग के खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। गोपालगंज की एमपी एमएलए अदालत ने जदयू विधायक अनंत सिंह को हथियार प्रदर्शन के मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने इस मामले में पुलिस से केस डायरी तलब की है। एग्री स्टैक योजना के तहत फार्मर आईटी बनाने में सुस्ती बरतने के आरोप में पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी ने फेनहारा, पिपरा, कोठी और बनकटवा के प्रखंड कृषि पदाधिकारियों के वेतन पर रोक लगा दी है। सुपौल जिले के चदिया थाना से पुलिस ने 1 किलो 440 ग्राम मादक पदार्थ स्मैक के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं भागलपुर जिले के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने मादक पदार्थ स्मैक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। मधुबनी जिले में रसोई गैस वितरण में अनियमितता बरतने के आरोप में 4 गैस एजेंसियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। सहरसा जिले के कासनगर थाना क्षेत्र में एक ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार पिता पुत्र की मौत हो गई। भोजपुर जिले के महुली गंगा घाट पर धार्मिक अनुष्ठान के दौरान गंगा जी में 2 सगे भाई डूब गए। इनमें से एक का शव बरामद कर लिया गया है। एक लापता की तलाश की जा रही है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

लीटर हो गई है। वहीं डीजल की कीमत 94.65 रूपये फी लीटर हो गई है। इसके साथ ही सीएनजी की कीमतों में भी 2 रूपये फी किलो का इजाफा किया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तवानाई तहफ्फुज की अपील का बिहार में असर नजर आने लगा है। वजीर आला सम्राट चौधरी आज अपनी सरकारी रहायशगाह से सेक्रेटेरिएट तक पैदल पहुंचे। पंचायती राज के वजीर दीपक प्रकाश पैदल ही अपने दफ्तर पहुंचे, जबकि वजीर तालीम मिथिलेश तिवारी ई रिक्शा की सवारी करके अपने दफ्तर पहुंचे। सेक्रेटेरिएट के अफसरान और मुलाजमीन ने भी दफातर पहुंचने के

साइकिल से गश्ती की। महकमा मौसमियात ने आज किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सीतामढ़ी, वैशाली और समस्तीपुर समेत रियासत के शुमाल मशरिक और शुमाल वस्ती इलाकों में बारिश का इम्कान जाहिर किया है। इस दौरान कुछ मकामात पर तेज हवा के साथ बिजली गिरने की भी वार्निंग जारी की गई है। इधर महकमा ने आइंदा कुछ घंटों के दौरान औरंगाबाद, गया, कैमूर और रोहतास जिले में कुछ मकामात पर बारिश की वार्निंग जारी की है। एकलव्या रहायशी खेल ट्रेनिंग सेंटर और जिला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में दाखिले के लिए आज से सिलेक्शन ट्रायल शुरू हो गया है। बिहार रियासती खेल अथॉरिटी के जनरल डायरेक्टर रविंद्रन शंकरन ने बताया कि ये ट्रायल 22 मई तक चलेगा। उन्होंने बताया कि एकलव्या ट्रेनिंग सेंटर में दाखिले के लिए 12 से 14 वर्ष की उम्र के, जबकि जिला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में दाखिले के लिए 16 से 18 वर्ष की उम्र के खिलाड़ी हिस्सा ले सकते हैं। गोपालगंज की एमपी एमएलए अदालत ने जेडीयू रुकन असेंबली अनंत सिंह को असलहा नुमाइश के मामले में पेशगी जमानत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने इस मामले में पुलिस से केस डायरी तलब की है। एग्री स्टैक मंसूबे के तहत फार्मर आईडी बनाने में तसाहली बरतने के इल्जाम में मशरकी चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट ने फिनहारा, पिपराकोठी और वनकटवा के ब्लॉक एग्रीकल्चर अफसरान की तनख्वाह पर रोक लगा दी है। सुपौल जिले के जदिया थाना से पुलिस ने 1 किलो 440 ग्राम नशा आवर अशिया स्मैक के साथ 4 स्मगलरों को गिरफ्तार किया है। वहीं भागलपुर जिले के मधुसूदनपुर थाना इलाके से पुलिस ने नशा आवर अशिया स्मैक के साथ एक नौजवान को गिरफ्तार किया है। मधुबनी जिले में रसोई गैस की तकसीम में बेजाबतगी बरतने के इल्जाम में 4 गैस एजेंसियों के खिलाफ इत्तलाए अव्वल दर्ज की गई है। सहरसा जिले के कासनगर थाना इलाके में एक ट्रक की जद में आने से मोटरसाइकिल सवार बाप बेटे की मौत हो गई। भोजपुर जिला के महुली गंगा घाट पर मजहबी अनुष्ठान के दौरान गंगा जी में 2 सगे भाई गर्कयाब हो गए। इनमें से एक की लाश बरामद कर ली गई है, जबकि एक लापता की तलाश की जा रही है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: इधर आइए इधर।
1: इधर?
0: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
2: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
1: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
2: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
1: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9416122225042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
2: शुभवाणी,
1: लाभवाणी,
2: आकाशवाणी।
3: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, अब रोजगार सूचना सुनिए। बिहार लोक सेवा आयोग 72वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए कुल 1230 पदों पर भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक होना चाहिए, न्यूनतम आयु 20 और अधिकतम 37 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर होगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। अंतिम तिथि है 31 मई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं, पता नोट करें www.bpsc.bihar.gov.in। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग अधिनायक अनुदेशक यानी हवलदार इंस्ट्रक्टर के 122 पदों पर भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम 37 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है।

0: आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर होगी। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 1 जून 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं, पता नोट करें www.bpsc.bihar.gov.in। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कांस्टेबल टेक्निकल और कांस्टेबल ट्रेडमैन के 9175 पदों पर भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम 23 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट प्राप्त है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर होगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा जिसकी अंतिम तिथि है 19 मई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं, पता है www.crpf.gov.in। रोजगार सूचना समाप्त हुई।
1: इधर आइए, इधर।
2: इधर?
1: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
3: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
2: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
3: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
2: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबू धाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता का आश्वासन दिया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेंद्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की।
1: यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया है, ये किसी भी रूप में स्वीकार करना नहीं है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम

0: अखंडता बनाए रखें, आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।
1: राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद को भाई कहकर संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने चुनौतीपूर्ण समय में यूएई नेतृत्व के लचीलेपन की प्रशंसा की। श्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।

0: पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी पर प्राथमिकता दी है और उसको फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखा है। यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और यूरोप के 6 दिन के दौरे के पहले चरण में आज अबूधाबी पहुंचे। हवाई अड्डे पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में औपचारिक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। यूएई के F-16 लड़ाकू विमानों ने उनके विमान को अमीरात हवाई क्षेत्र में प्रवेश कराते हुए सुरक्षा प्रदान की। एक रिपोर्ट।
2: बातचीत के नतीजे सामने आने शुरू हो गए हैं। दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक MOU पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर RBL बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉ जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। एक रिपोर्ट।
3: विदेश मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने लगातार सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था का समर्थन किया है जो मौजूदा वास्तविकताओं को दर्शाए तथा उभरते बाजारों तथा विकासशील देशों की आकांक्षाओं को पूरा करे। उन्होंने कहा कि सभी देशों को न केवल वैश्विक चुनौतियों का प्रबंधन करने के लिए बल्कि और अधिक लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व करने वाली और समानतापूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने में मिलकर काम करना चाहिए। डॉ जयशंकर कहा कि सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन होना चाहिए। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। डॉ जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराग्ची की भागीदारी की सराहना भी की। विदेश मंत्री ने क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिग्स पेरेला और युगांडा के विदेश मंत्री ओडोंगो जेजे से भी मुलाकात की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल में प्रवेश के लिए NEET UG 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में OMR मोड में आयोजित होने वाली NEET UG परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी CBT माध्यम से होगी।
4: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, OMR शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते NTA ने त्वरित एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुँच जाएगा।
1: श्री प्रधान ने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अपनी पसंद का शहर चुनने का अवसर मिलेगा।
5: जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी 0 फीस होगा। हम

0: विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए, हम उसकी दायित्व ले रहे हैं। लेकिन प्रथम दृष्टया जो एनटीए ने तय किया है कि हम एक सप्ताह विद्यार्थियों को अवसर देंगे, वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते हैं, ये विंडो खुला रहेगा।
1: श्री प्रधान ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की आवश्यकता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। ये परियोजनाएं सेमीकंडक्टर, रेलवे और सीवेज जल शोधन संयंत्र से जुड़ी हैं। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य में कई परियोजनाएं शुरू की गई, जिससे विकास को गति मिल रही है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
2: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है। आज मोबाइल फोन भारत से एक्सपोर्ट होने वाली एक नंबर सबसे पहली कमोडिटी बन गई है।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने तेल कीमतों में वृद्धि पर कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बाद जब विश्व में ईंधन की कीमतों में वृद्धि देखी गई, तब भारत उस स्थिति में सबसे अलग खड़ा रहा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि जहां कई देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 20% से लगभग 100% तक वृद्धि की गई है, तब भारत ने पेट्रोल के दाम में केवल 3.2% और डीजल के लिए 3.4% की वृद्धि की है। श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जनकल्याण के साथ आर्थिक स्थिरता को संतुलित कर रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की कथित विदेश यात्राओं पर सवाल उठाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक सांसद को संबंधित अधिकारियों को अपनी विदेश यात्राओं की जानकारी देना अनिवार्य है और विदेश में मेहमान नवाजी के संबंध में FCRA अधिनियम 2010 के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में रथेंद्र बसु निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। श्री बसु कोचबिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस रॉय की देखरेख में आज सुबह चुनाव संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने औपचारिक रूप से श्री बसु के नाम का प्रस्ताव रखा। सदन ने ध्वनिमत से उनके नाम की पुष्टि की। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य चुनाव प्रक्रिया के दौरान उपस्थित नहीं थे, लेकिन बाद में सत्र में शामिल हुए। उधर पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के वरिष्ठ विधायक ए अम्बालगन को 16वीं विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सिफारिश पर यह नियुक्ति की है। श्री अम्बालगन पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और ओपलम से विधायक हैं। विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में औपचारिक पदभार ग्रहण करने के बाद वे विधानसभा में नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। पंजाब के लुधियाना को हलवारा हवाई अड्डे पर एयर इंडिया की पहली उड़ान के आगमन के साथ भारत के वाणिज्यिक विमानन नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने हवाई अड्डे के संचालन को क्षेत्र में उद्योग, व्यापार और आर्थिक विकास के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन बताया। एयर इंडिया ने लुधियाना और दिल्ली के बीच दैनिक उड़ानें शुरू की हैं। इससे ब्रिटेन और रोम, मिलान तथा पेरिस सहित अन्य गंतव्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी संभव हो सकेगी। वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल एपी सिंह ने आज कहा कि ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियां वायु शक्ति का ही विस्तार हैं। मानव रहित हवाई प्रणालियों पर सेंटर फॉर एयरोस्पेस पावर एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज तथा इंडियन मिलिट्री रिव्यू द्वारा आयोजित एक संयुक्त सेमिनार और प्रदर्शनी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियां अभियानों के दौरान मानव जीवन के जोखिम को कम करती हैं। ओमान के मुलद्दा में बांग्लादेश के 4 भाइयों के शव एक खड़ी कार के अंदर मिलने से प्रवासी समुदाय और उनके गृहनगर चट्टोग्राम में शोक का माहौल है। पुलिस को शवों की जानकारी 2 बांग्लादेशी प्रवासियों द्वारा दी गई। कांगो गणराज्य के उत्तर पूर्व में इबोला के प्रकोप से 65 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों लोग संक्रमित हो गए हैं।

0: अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने बताया कि लगभग 246 लोगों में इबोला होने का संदेह है। और अब खेल खबरों के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा।
1: सबसे पहले बात बैडमिंटन की। थाईलैंड ओपन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने ताकुमी नोमुरा और युइची शिमोगामी की जापानी जोड़ी को 21-12, 21-13 से हराया। उधर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु को जापान की अकाने यामागुची से हार का सामना करना पड़ा। आज पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला थाईलैंड के कुनलाउत विदत्सरन से होगा। टेनिस कोर्ट का रुख करें तो इटली ओपन में महिला सिंगल्स फाइनल मुकाबला कल यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना और अमेरिका की कोको गॉफ के बीच होगा। सेमीफाइनल में स्वितोलिना ने पोलैंड की इगा स्वियातेक को, वहीं कोको गॉफ ने रोमानिया की सोरोना क्रिस्टिया को पराजित किया। कोको गॉफ वीनस विलियम्स के बाद लगातार इटली ओपन के फाइनल में पहुंचने वाली सबसे युवा अमरीकी टेनिस खिलाड़ी बन गई है। इस बीच क्रिकेट की बात करें तो आईपीएल में आज लखनऊ में शाम 7:30 से लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। कल मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया था।
0: मौसम विभाग ने आज कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में रात के समय मौसम गर्म रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबूधाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेंद्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

सदाबहार गीतों की बहार लिए कार्यक्रम के सदाबहार गीतों में हम आज सदाबहार नगमे कार्यक्रम के साथ हम हाजिर हैं। आजाद फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, राजेंद्र कृष्ण के बोल, सी रामचंद्र का संगीत। आपको बता दें कि आज शाम 4 बजे आप सुन सकते हैं गीतों भरी कहानी में श्वेता उपाध्याय की लिखी कहानी जीवन एक सरल रेखा। और अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का ये गीत।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में बारादरी फिल्म का गीत आपने सुना। खुमार बाराबंकवे ने इसे लिखा, शौकत दहलवी नौशाद का संगीत इस गीत में आपने सुना। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में शकील बदायूनी के बोल, नौशाद का संगीत फिल्म उड़न खटोला की इस गीत में।

0: जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म का गीत आपने सुना मजरूह सुल्तानपुरी के बोल ओपी नैयर की तर्ज आवाज गीता दत्त मोहम्मद रफी की। और अगर आपको पुराने गाने सुनते सुनते नए गाने सुनने का मन करता है और नए गाने सुनते सुनते आप पुराने गाने सुनना चाहते हैं तो आपके लिए भी है एक कार्यक्रम हमारे पास। शाम 5:30 पर रोजाना आप सुन सकते हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने, जिनमें पुराने और नए गानों को मिलाकर ही तैयार की जाती है लिस्ट गानों की। तो आप सुनिएगा ये कार्यक्रम आज भी और रोजाना। तब तक हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का ये अगला गाना।

0: ओपी नैयर के संगीत से सजा ये गीत आप सुन रहे थे, जिसे लिखा जानिसार अख्तर ने, गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजों में आपने सुना सीआईडी फिल्म का ये गीत। और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि कौन सा कार्यक्रम कब आएगा विविध भारती पर, इसके लिए आपको सीआईडी की तरह पड़ताल करनी पड़ेगी, तो बिल्कुल भी नहीं, आप सुबह और शाम 6:30 से सुन सकते हैं कार्यक्रम विवरण झरोखा के अंतर्गत। सुबह के झरोखा में बताए जाते हैं दिन भर के प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण, वहीं शाम के झरोखा में आप सुन सकते हैं शेष कार्यक्रमों के साथ साथ अगले दिन के सभी मुख्य कार्यक्रमों का विवरण भी। और अब हम दे देते हैं आपको विवरण अगले गीत का, जो है बारिश फिल्म से आशा भोसले और सी रामचंद्र की आवाजें, राजेंद्र कृष्ण के बोल, सी रामचंद्र का संगीत।
1: जो सीने में दिल होता तो फिर हम तुम पे क्यों मरते, हाँ बोलो ना।

0: कभी हुआ है और न होगा देखो मेरे जैसा।
1: पहले तो दिल फेंक कभी ना देखा ऐसा वैसा।
0: कभी हुआ है और न होगा देखो मेरे जैसा। मानो या

0: शादी।
1: अरे हेलो हेलो हेलो।
2: राजा मेहदी अली खां का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे। नाशाद का संगीत, आशा भोसले की आवाज, बड़ा भाई फिल्म का ये गीत आपने सुना। रोजाना शाम को 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत सजते हैं अलग अलग कार्यक्रम के रंग, और आज आप सुन सकते हैं गजलों का कार्यक्रम गुलदस्ता इस श्रृंखला के अंतर्गत 7:45 से। और इस वक्त सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, और आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत। लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन की तर्ज है। न्यू दिल्ली फिल्म से सुनिए ये गीत।

0: साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा, मुझे दीजिए इजाजत।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम। हेलो सहेली के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

क्यों भावनाएं जब शब्दों का हाथ थामती हैं, तब रिश्तों में अपनापन खिल उठता है। जब दिल बोलता है तो शब्द केवल आवाज नहीं आत्मा का संगीत बन जाते हैं, है ना। अपने परिजनों से दिल की बात साझा करना मानो बंद खिड़की से ताजी हवा का भीतर आना है। और विविध भारती भी अपना एक बड़ा पूरा परिवार है, तो आज अपनी सखियों से बातें करने के लिए विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद है मैं आपकी अपनी सहेली सोनाली पाठक। और इस चिलचिलाती गर्मी में आपके फोन कॉल्स देंगे हमें सुखद एहसास, तो जल्दी से फोन घुमाइए, देखते हैं कौन सी सखी का

0: पहला फोन आता है और ये बजी घंटी और ये आ गया पहला फोन कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: कौन सहेली बात कर रही हैं आप?
1: मैं विनीता पाठक बोल रही हूँ रायपुर छत्तीसगढ़ से। सोनाली जी, मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी और अब जाके मेरा नंबर लगा है।
0: बहुत बहुत बधाई। और पहली बार आपका कॉल लगा है?
1: जी पहली बार मेरा कॉल लगा है
0: जी। तो विनीता जी बताइए, अपने बारे में बताइए।
1: सोनाली जी, मैं यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ जैसा कि मैंने बताया, और यहाँ पर मैं मिलेट से रिलेटेड बेकरी आइटम बनाती हूँ। बेकरी में सभी लोग कुकीज पे तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन हम डेली रूटीन में काम आने वाली ब्रेड, पाव, पिज्जा बेस, बर्गर, हम ये बना रहे हैं ताकि जो 3 अगस्त बच्चे हैं वो अपनी चॉइस का पिज्जा और ये सब खाएं, तो हेल्दी बेस के साथ खाएं, तो हम इस पे काम कर रहे हैं।
0: क्या बात है। मिलेट्स यानी फिर रागी है, ज्वार है, बाजरा है, इनसे बनी बेकरी आइटम्स आप बनाते हैं ना?
1: जी।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर किसी को चटपटा खाना पसंद होता है, पर हम थोड़ा सा डर जाते हैं कि उसमें मैदा होगा या वनस्पति घी होगा तो वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। पर आप जो इस तरह से मिलेट्स का इस्तेमाल करके बेकरी आइटम बना रहे थे, ये तो बहुत अच्छी बात है। विनीता जी, आज 15 तारीख है, 15 मई है, आज परिवार दिवस है, तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि परिवार की क्या अहमियत है आपके जीवन में?
1: परिवार सभी के लिए बहुत अहमियत रखता है। हम आजकल जो छोटी फैमिली हो गई है उसके बहुत सारे लॉसेज हैं, जैसे मेरे मम्मी पापा बहुत कम एज में डेथ हो गई थी, तो हम भाई बहन एक साथ हो गए और हम बड़े से बड़ी मुसीबत को आसानी से निकाल ले जाते हैं, और कोई छोटा सा भी पर्व हो उसमें हम लोग सब इकट्ठा होकर बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं, और हमारे साथ साथ हमारी जो अगली पीढ़ी है, हमारे बच्चे आपस में मिल के मतलब चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, तो वहां तक जा रही है, तो वो लोग भी अब इतना समझ में आने लगा है कि नहीं, फैमिली तो होना ही चाहिए, नहीं तो आप अकेले पड़ जाओगे। तो हर खुशी के मौके में बहुत ही अच्छा लगता है जब हम सब साथ होते हैं।
0: क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही। और साथ में जो वर्किंग महिलाएं होती हैं, जैसे आप कुछ काम कर रही हैं, तो उस वक्त जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं उस वक्त दादा दादी नाना नानी का उन्हें सपोर्ट मिलता है, सहयोग मिलता है, तो बहुत खुशी मिलती है कि चलो हम बाहर हैं तो घर में तो कोई है हमारे बच्चों को संभालने के लिए।
1: बिल्कुल। मैं भी बहुत निश्चिंत होकर बेफिक्र होकर मैं काम पे निकल जाती थी, क्योंकि घर में दादा दादी हैं, मेरे हस्बैंड हैं, मेरे देवर हैं, हम लोग सब भी साथ में रहते थे, तो बच्चा सब बड़ा हो गया, कैसे बड़ा हो गया और इतनी अच्छी परवरिश के साथ बड़ा हुआ, तो वो सभी संभव है जबकि हम परिवार के साथ होते हैं।
0: क्या बात है, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। विनीता जी बताइए, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: चुरा लिया है तुमने जो दिल को, ये 1973 की एक मूवी है, यादों की बारात। हाँ जी, तो ये मुझे गाना बहुत पसंद है, इसे आशिया जी और मोहम्मद रफी सर ने गाया है और जीनत अमान और विजय अरोड़ा पे फिल्माया है, तो ये गाना मुझे बहुत पसंद है, तो अगर ये सुना देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
0: जी विनीता जी, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: बताइए कौन सहेली बात कर रही है?
1: जी मेरा नाम वर्षा धगट है। जी मैं वैसे तो मुंबई की हूँ, पर अभी फिलहाल छुट्टियों पर जबलपुर आई हुई हूँ, मध्य प्रदेश में।
0: क्या बात है, यानी आप मायके गई हुई हैं?
1: बिल्कुल सही पहचाना आपने, मायके आई हुई हूँ।
0: यानी मायके का लुत्फ उठा रही है माँ के साथ में, ना?
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने।
0: अच्छा वर्षा जी, बताइए आपके बारे में बताइए।
1: सोनाली जी, मेरे बारे में बस क्या बताऊं, मैं वैसे एक्ट्रेस हूँ, टीवी टेलीविजन करती हूँ, और हाल ही में मेरी एक फिल्म भी रिलीज हुई है, और इसके अलावा मैं प्रोफेशनल एंकर भी हूँ, म्यूजिकल शोज होस्ट करती हूँ, और थोड़ी सिंगिंग भी कर लेती हूँ।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज 15 मई है, आज परिवार दिवस है, तो मैं वर्षा जी आपसे एक सवाल करना चाहूंगी कि परिवार की आपके जीवन में क्या अहमियत है?
1: ओ, सवाल वाकई बहुत अच्छा सवाल किया सोनाली जी आपने। और परिवार की अहमियत, मेरे ख्याल से परिवार के बिना तो हर कोई अधूरा है, और शादी जैसे ही होती है और हमारी एक अलग दुनिया बस जाती है, और परिवार हमारे ख्याल से हमारे लिए सबसे जरूरी होता है, और परिवार के लिए मेरे ख्याल से हर स्त्री अपना पूरा जीवन दे देती है,
0: चाहे फिर वो ससुराल हो या मायका हो, है ना?
1: बिल्कुल, ससुराल वालों के साथ भी रहते हुए और मायके वालों के साथ भी वो दोनों ही तरफ बड़े अच्छे से एडजस्ट करती है।
0: और
1: ये हर महिला, मेरे ख्याल से भारत की हर महिला का यही किरदार होता है।
0: और परिवार का अगर हमें साथ मिलता है ना, तो हम यानी हमेशा खुश रहते हैं, क्योंकि हमें डर नहीं होता है कि अरे हमारा क्या होगा, हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ कोई तो है, है ना?
1: ये आपने 100% सही बात कही कि जैसे हम अपने लेडीज जो भी कर पाती हैं, जैसे शायद आप ये जॉब कर पा रही हैं, ये भी आपके परिवार की स्वेच्छा से ही आप और उनके मोटिवेशन से ही शायद आप इधर तक पहुंची। एम आई राइट?
0: बिल्कुल सही कहा आपने, उनके बिना ये कल्पना ही नहीं हो सकती कि उनके सपोर्ट के बिना हम महिलाएं आगे नहीं बढ़ सकती। बहुत संबल मिलता है जब परिवार का साथ होता है हमें।
1: बिल्कुल, हर महिला को खासतौर पर पति का सपोर्ट मिल जाए तो पत्नियां बहुत कुछ कर सकती हैं।
0: जी बहुत सही बात आपने कही, और आपकी बात सुनकर बहुत सारे लोग प्रेरित भी होंगे कि अगर हम अपने घर की महिलाओं को सपोर्ट करेंगे तो हमारी महिलाएं भी, हमारे घर की जो परिवार की महिलाएं हैं, वो बहुत आगे बढ़ेगी।
1: बिल्कुल सही कहा सोनाली जी आपने। जी
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। और वर्षा जी बताइए, आपकी पसंद का कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: जी पसंद के गीत तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल मैं ये पर्दा हटा दो जरा मुखड़ा दिखा दो, ये पर्दा हटा दो जरा मुखड़ा दिखा दो, हम प्यार करने

0: अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: क्या नाम है सहेली जी आपका?
1: प्रगति मुड़े।
0: प्रगति मुड़े जी, कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: नांदेड़ से
0: फोन लगाया। प्रगति जी, आपके बारे में बताइए, क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: मैं घर पे हूँ अभी।
0: हाउस वाइफ हूँ।
1: हाँ।
0: मैं हाउस वाइफ को प्रगति जी हाउस क्वीन कहूंगी, है ना, क्योंकि वे घर परिवार की जिम्मेदारी कितनी खूबसूरती के साथ निभाती हैं। आपके कारण घर के जो परिवार के अन्य सदस्य हैं काम पे जाते हैं, घर पे आते हैं तो सुकून की सांस लेते हैं कि देखिए कोई तो है घर में हमारा ख्याल रखने के लिए, है ना। और आज है परिवार दिवस, तो प्रगति जी आपके जहन में परिवार की क्या महत्ता है, यानी आपके लिए परिवार का कितना महत्व है आपके जीवन में?
1: परिवार का महत्व तो बहुत रहता है, परिवार के बिना तो कुछ नहीं होता।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने कि परिवार अगर साथ है तो हम महिलाएं हर काम बड़ी आसानी के साथ खूबसूरती के साथ कर सकते हैं। तो बताइए आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आप?
1: हाँ, मैं काम चोर मुझे प्रीत लगाई करें।
0: बहुत सुंदर गाना है। और विविध भारती सुनती हैं आप?
1: हाँ।
0: कौन से कार्यक्रम अच्छे लगते हैं आपको?
1: मैं तो न्यूज सुनती हूँ, न्यूज चैनल।
0: अरे वाह। और सखी सहेली सुनती है?
1: सहेली सुनती हूँ।
0: और हेलो सहेली भी सुनती है?
1: और हेलो सहेली।
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, तो चलिए धन्यवाद।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: कौन सहेली बात कर रही हैं?
1: मैं साक्षी खिरवड़कर बोल रही हूँ।
0: साक्षी जी, कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: जी मैंने भोपाल से फोन लगाया है, मध्य प्रदेश।
0: साक्षी जी, जरा अपने बारे में बताइए।
1: जी मैं गृहिणी हूँ, अपना घर संभालती हूँ अच्छे से और बस अपने आप में खुश रहती हूँ, बढ़िया रहती हूँ।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात।
1: समय निकालती हूँ बहुत अच्छे से।
0: साक्षी जी, आज है परिवार दिवस, 15 मई को हम परिवार दिवस मनाते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि परिवार का क्या महत्व है आपके जीवन में?
1: परिवार का बहुत महत्व है हमारे जीवन में। परिवार है तो हम सुरक्षित रहते हैं, खुश रहते हैं, उनके बिना तो फिर कुछ है ही नहीं।
0: जी,
1: उन्हीं के आसपास हमारी पूरी दुनिया घूमती है।
0: जी,
1: बहुत महत्व है सभी के लिए।
0: सचमुच, यानी परिवार ही हमारे जीवन का आधार है ना?
1: जी।
0: और हम महिलाओं को खासकर बहुत संबल मिलता है जब परिवार का सपोर्ट मिलता है ना?
1: जी जी, बहुत।
0: और विविध भारती सुनती हैं आप?
1: जी बिल्कुल, शुरू से सुनती हूँ, सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है।
0: कौन सा कार्यक्रम आपको पसंद है?
1: मुझे हेलो सहेली, सखी सहेली बहुत अच्छा लगता है सुनना।
0: तो चलिए बताइए, कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मैं सुनना चाहती हूँ लग जा गले।
0: अरे वाह, बहुत सुंदर गाना आपने चुना है, तो सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: क्या नाम है आपका?
1: अंबिका विजय मारवाड़ी
0: जी। कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: शिरपुर से।
0: शिरपुर से फोन लगाया जी।
1: हाँ,
0: क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: मैं मेस चलाती।
0: मेस चलाती हैं, क्या बात है, बहुत
1: हाँ,
0: अच्छी बात है।
1: हाँ,
0: ये
1: हाँ,
0: तो बहुत अच्छी बात है कि आपके कारण कितने सारे लोग जो हैं उन्हें पेट भर खाना
1: हाँ,
0: मिलता है ना।
1: जी,
0: बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप। और इसमें मैं आपसे पूछूंगी कि इसमें आपको बहुत खुशी मिलती है जब कोई आपके?
1: हाँ, खुशी मिलती, खाने को आते जाते वो अच्छा खाना बनाए बोलते, कभी कम ज्यादा हो जाता।
0: और सचमुच जब हाँ, कोई हमारे खाने की तारीफ करता है ना तो हमारी जो थकान है ना वो छूमंतर हो जाती है ना।
1: हाँ हाँ, खाने के तो अच्छे से अपनी थकान जाती, सब अच्छे बोलते खाने का।
0: हाँ, यानी अगर किसी ने तारीफ कर दी कि अरे कितना अच्छा खाना बनाया तो हम सचमुच खुश हो जाते हैं और हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि मैं इतनी थक गई थी, है ना।
1: मेहनत मेहनत से फल मिलता ऐसा हो जाता।
0: हाँ बिल्कुल, मेहनत का फल तो मीठा होता ही है।
1: हाँ,
0: और रेडियो सुनती हैं आप?
1: हाँ।
0: कौन सा कार्यक्रम अच्छा लगता है आपको?
1: तो हेलो फरमाइश।
0: हेलो फरमाइश,
1: गाने सुनते हो? तो रहता रेडियो दिन भर,
0: दिन भर रेडियो चालू रहता। बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: अनाड़ी पिक्चर, मतलब
0: अनाड़ी फिल्म का कौन सा गीत?
1: फूलों का चेहरा।
0: ओके, अनाड़ी फिल्म का आपकी पसंद का ये गीत सुनवाते हैं।

0: अंतराल के बाद हम फिर हाजिर है, कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: क्या नाम है आपका?
1: राजबाई। राजबाई धाकड़।
0: राजबाई धाकड़, कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: बड़े गांव से।
0: बड़े गांव?
1: हाँ, गुना जिले।
0: जी, तो क्या करती हैं आप, अपने बारे में बताइए।
1: अपन घर के काम करती हैं, गेहूं बोते हैं, धना बोते हैं, चना बोते हैं।
0: क्या बात,
1: खेती बाड़ी काम करे हैं अपन।
0: बहुत अच्छी बात है, जो किसान बड़ी मेहनत से खेती बाड़ी करते हैं, फसल उगाते हैं, तभी तो सारे लोगों को इतने सारे अनाज मिलते हैं और हम लोग स्वस्थ रहते हैं।
1: तीन बहने हैं, तीन बच्ची है अपने और दो बच्चा है, पांच बहन भाई है।
0: क्या बात है, सचमुच यानी परिवार के साथ रह के अच्छा लगता है ना?
1: अच्छा लगे, देवर है, देवरानी है, देवर के मोड़ा मोड़ी है।
0: चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें सुन के। और रेडियो सुनती हैं कि नहीं आप?
1: हाँ, रेडियो सुनती हैं।
0: अच्छा लगता है रेडियो सुनना?
1: बहुत अच्छे लगे हैं।
0: और बताइए, कौन सा गाना सुनना चाहती है आपके पसंद का?
1: जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर लो गाड़ी दो गाड़ी।
0: बहुत अच्छा गाना आपने चुना है, और विविध भारती हेलो सहेली कार्यक्रम में फोन करने के लिए धन्यवाद।

0: हेलो सहेली।
1: नमस्ते।
0: क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सुनंदा है।
0: सुनंदा जी, कहाँ से फोन लगाया?
1: हम यवतमाल महाराष्ट्र से है।
0: यवतमाल से फोन लगाया। अपने बारे में बताइए सुनंदा जी, अपने बारे में बताइए।
1: मैं तो घर में रहती हूँ मैडम, खाना बनाती।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। घर में रहना यानी बहुत से आम जो महिलाएं होती है ना, गृहणियां होती है, उन्हें ऐसे लगता है कि अरे हम तो घर में रहते, पर घर में रह के भी बहुत अच्छा काम करती हैं। आपके बदौलत आपके परिवार के लोग जो है ना, आराम से बाहर जाते हैं, काम करके आते हैं। घर में आने के बाद उन्हें एक सुकून का एहसास होता है कि चलो घर में कोई तो है हमारा ख्याल रखने के लिए, है ना। और रेडियो सुनना पसंद है आपको?
1: बहुत बहुत पसंद है।
0: कौन सा कार्यक्रम पसंद है आपको?
1: हमको सच्ची सहेली है, बहुत सारे कार्यक्रम पसंद है।
0: अच्छा, और बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: हम वो आपके ऐसे नाते का गीत सुनना चाहते हैं मैडम, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है।
0: तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, बहुत सुंदर गाना आपने चुना है। सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: अपना नाम बताइए।
1: लक्ष्मी विलास भोले
0: जी। कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: खामगांव से।
0: खामगांव से लगाया, खामगांव महाराष्ट्र से फोन लगाया। अपने बारे में बताइए, क्या करती है आप जिंदगी में?
1: कुछ नहीं करती, घर का काम खाली।
0: घर का काम करती है तो ये बहुत बड़ी बात है। आप कहती है कुछ नहीं करती, ये सब कुछ करती हैं आप। आपकी बदौलत ही जो ना घर वाले खुश रहते हैं ना, कि वे लोग खुश है कि चलो कोई तो है घर संभालने वाला, ताकि हम जब बाहर से घर आए तो हमें कितना अच्छा लगता है। घर साफ सुथरा होता है, खाना बना होता है ना, सारे काम किए होते हैं। तो हमें, हम गृहिणियों को खुश रहना चाहिए या कहना चाहिए कि हाँ हम हाउस क्वीन है घर की, है ना। और खुद के लिए जीती है आप कभी? खुद की खुशी का काम करती हैं आप? यानी खुद के लिए जब ऐसा होता है ना कभी कभी कि अरे हमारी पसंद का काम हम कर ही नहीं पाते।

0: तो आप करती हैं अपनी पसंद का कोई काम?
1: नहीं, वो तो टाइम नहीं मिलता, ऐसे दिन में बच्चे का वो करते करते टाइम हो जाता है।
0: टाइम निकालना जरूरी है।
1: खेत में, खेत है हमारा, खेत में जाना पड़ता
0: है। खेत में जाना पड़ता है, वो सब ठीक है, पर आप अपने लिए वक्त निकालिए। आपको जो काम अच्छा लगता है, जैसे कि अपनी पसंद का खाना बनाना या फिर गाना सुनना, तो चलिए बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: हम आपके हैं कौन, मतलब माई माई गाना है।
0: हम आपके हैं कौन फिल्म का, माए ने माए मुंडेर पे तेरी, बहुत अच्छा गाना आपने चुना है, तो सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: बताइए कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमें?
1: हम रेखा मुखर्जी, वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद हाटुई से बोल रहे हैं।
0: क्या बात है, बताइए रेखा जी अपने बारे में बताइए, क्या करती हैं जिंदगी में?
1: हम हाउसवाइफ हैं, रेडियो का गाना सुनते हैं, प्रोग्राम जितना होता है सुनते हैं, जो हेलो सहेली है वो भी सुनते हैं, लाइव फोन में सुबह सकाल में फोन में बात करते हैं रेडियो में, आकाशवाणी मुर्शिदाबाद में हम

0: मैसेज भेजते हैं, गीतांजलि में लिखा भेजते हैं, शांति निकेतन में भी भेजते हैं और मुर्शिदाबाद में भी लिखा भेजते हैं। हम पोयम लिखते हैं, स्टोरी लिखते हैं और घर का काम लपेट लेते हैं, गान सुनते हैं, रेडियो का साथ जुड़े रहता है।
1: जी बहुत अच्छा लगा कि आप रेडियो भी सुनती हैं, कविताएं भी लिखती हैं और फिर घर में भी रहती हैं, यानी पूरी जिंदगी का लुत्फ उठा रही हैं आप, है ना?
0: हाँ हाँ, हम चाहे सिलाई सिलाई उलाई भी करते हैं।
1: क्या बात है, यानी आप ऑलराउंडर हैं, है ना?
0: हम अकेले सब समेट लेते हैं।
1: ये बात बहुत अच्छी बात है। बस मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी रेखा जी, कि खुद के लिए आप जीते हैं क्या? ऐसे कुछ पल होते हैं जब हम सिर्फ अपने लिए जीते हैं, यानी कि सारे काम निपटाने के बाद में हमें ऐसा लगता है कि ये पल सिर्फ मेरे लिए है, ये एक घंटा मैं मेरे लिए जीना चाहती हूँ, तो ऐसा कुछ करती हैं आप?
0: हाँ करते हैं, एक घंटे के लिए हम सिलाई उलाई करते हैं।
1: और उसमें आपको खुशी मिलती है?
0: खुशी मिलते हैं, हाँ, अपना हाथ से सिलाई करने के बाद हमको खुशी मिलता है।
1: बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब हम महिलाएं खुश रहती है ना, तो परिवार भी खुश रहता है और पूरा परिवार खिला खिला सा रहता है, सभी लोग स्वस्थ जीवन जीते हैं। तो बस खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और विविध भारती सुनते रहिए। और आप
0: विविध भारती सुनते हैं जी?
1: जी। और आपने पसंद
0: दो महीना से छटपटा रहे थे हाँ, जी कब दो महीना पूरा होगा?
1: अच्छा चलो बहुत खुशी की बात है। और बताइए कौन सा गीत आज आप सुनना चाहती हैं?
0: सत्यम शिवम सुंदरम।
1: सत्यम शिवम सुंदरम,
0: जसमती मैया तेरे बोले नंदलाला।
1: सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली दीदी, मैं सातारा महाराष्ट्र से बोल रही हूँ।
0: क्या नाम है आपका?
1: मेरा उषा नाइक नाम है दीदी।
0: उषा नाइक सातारा से बात कर रही है जी। बताइए, अपने बारे में बताइए।
1: सातारा ये छत्रपति शिवाजी महाराज का ऐतिहासिक किला है, अजिंक्य तारा है, प्रतापगढ़ है, ताज तालाब है, महाबलेश्वर है।
0: जी जी जी, सातारा घूमने लायक बहुत अच्छी जगह है।
1: बहुत ही अच्छा जगह है
0: जी।
1: नटराज मंदिर है, बहुत ही अच्छा है। आप आइए कभी, शूटिंग भी होती है इधर।
0: जी हम जरूर आएंगे। आप अपने बारे में बताइए, आप क्या करती है जिंदगी में?
1: दीदी मैम, तो मैं जॉब में हूँ। मैं साड़ी सेंटर में हूँ, सिटी साड़ी सेंटर में हूँ। मैं जॉब करती हूँ। मैंने आज छुट्टी लिए, खास आपके लिए फोन करने के लिए।
0: क्या बात है, क्या बात है। और बहुत खुश होंगी ना आज कि फोन लग गया?
1: बहुत ही खुश हूँ, मेरा फोन लग गया। मैं इसके वास्ते आज रूम में घर रही हूँ। 4 महीने बाद मेरा फोन लगा है।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी हुई हमें। और आपसे एक सवाल है कि आप नौकरी भी करती हैं, घर भी संभालती है, तो आप खुद के लिए जीती हैं क्या? अगर खुद के लिए जीती हैं तो आपकी पसंदीदा कौन सा काम है जो आपको करने से आपको बहुत खुशी मिलती है?
1: जी मेरा 57 एज है दीदी।
0: अच्छा
1: 57। मैं

0: घर में नहीं रहती हूँ, मैं बोर हो जाती हूँ घर में। मेरा बेटा है, बहू है, जमाई है, सब अपने अपने संसार में व्यस्त है। फिर घर में क्या करने का, इसी वास्ते में 10 साल से मैं सेल्समैन का काम करती हूँ।
1: क्या बात,
0: साड़ी सेंटर में, सिटी साड़ी सेंटर में।
1: यानी आप व्यस्त और स्वस्थ रहती है, यानी आपका ये मानना है कि जब हम व्यस्त रहते हैं तब हम स्वस्थ रहते हैं, है ना?
0: हाँ, और मेरा यही है कि मेरा सभी गाना सुनने में बहुत ही मेरा दिल से है, मेरा पूरा दिन आनंद आनंद में ही जाता है
1: जी।
0: 11:30 बजे तक हाँ गाना ही सुनती हूँ मैं रेडियो का।
1: क्या बात है, रेडियो सुनना अपने आप में बहुत खुशी देता है ना, हम खुश हो जाते हैं। हाँ, प्यारे प्यारे गीत सुन
0: बहुत के ही खुश। और मैं टीवी भी नहीं देखती हूँ, और मेरा छोटा सा नोकियो का फोन है, बड़ा भी एंड्रॉइड नहीं है, मेरा छोटा ही है।
1: क्या बात,
0: काम मेरा चल जाता हूँ और मैं बहुत ही खुश हूँ।
1: ये बात है, नहीं तो देखिए लोग हमेशा परेशान रहते हैं जिंदगी में कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, पर सचमुच आपसे सीखने लायक बात है कि छोटा सा फोन है फिर भी आप रेडियो सुन के खुश रहती है, तो खुश रहना बहुत जरूरी है ना।
0: जरूरी है, बराबर है
1: जी। बताइए कौन सा गीत आप आज सुनना चाहती है?
0: दीदी बहुत ही धूप है बाहर, धूप में निकला ना करो रूप की रानी।
1: बहुत प्यारा गीत आपने चुना, ये गाना आप गुनगुना के सुना सकती हैं?
0: धूप में निकला ना करो रूप की रानी, गोला रंग का लानी।

सरला मध्य प्रदेश के सिहोरा में गणित की अध्यापिका हैं। पिछले 3 वर्षों से जबलपुर से सिहोरा अप डाउन करती सरला मिश्रा अपने सरकारी वेतन से जितनी प्रसन्न है उतनी वे जीवन की किसी और बात से प्रसन्न नहीं है। यूं तो हर साल ये स्थानांतरण की अर्जी देती रहती हैं, पर इस साल से अर्जी देना इन्होंने बंद कर दिया है। क्यों? वो इसलिए कि सिहोरा के इस शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या कम होने के कारण इन्हें आराम रहता है और इनके पति नीलकांत मिश्र घूस देकर कोई काम नहीं करवाते। उनके हिसाब से तो सरला हमेशा से बस से आना जाना करती रही हैं, तो अभी भी कर सकती हैं। जबलपुर सिहोरा यूं भी राष्ट्रीय मार्ग से लगे हुए हैं। नीलकांत मिश्र क्योंकि ग्रामीण बैंक में कार्यरत हैं, तो उनकी पोस्टिंग तो वैसे भी जबलपुर के आसपास के गांव में ही होती है। इस तरह दोनों अलग अलग दिशाओं से सफर करते हुए घर लौटते हैं। आज सितंबर की रवानगी हो चुकी थी और जाड़े की सुगबुगाहट के साथ दशहरे से दीपोत्सव तक की छुट्टियों का सरकारी आदेश आ चुका था। विद्यालय के कॉरिडोर्स में हलचल मची हुई थी। खुशी से कदम बढ़ाता कोसीलाल हर कक्षा में नोटिस पर हस्ताक्षर कराने के लिए तेज चलने का प्रयास कर रहा था। सभी शिक्षक शिक्षिकाएं अपनी अपनी कक्षा की देहरी पर खड़े अपने साथी शिक्षक शिक्षिका के साथ गपी आने में मशगूल होने लगे थे। प्रसन्नता की इस बयार ने सरला के कानों में कुछ ऐसा फुसफुसाया कि उसका मन अवकाश के बादलों के संग उड़ने लगा। सरला सोचने लगी, इस बार कश्मीर घूमने जाऊंगी तो खूब सी फोटो अपनी फोन गैलरी में सेव करूंगी, हो सके तो नया मोबाइल लेती हूं जिसका कैमरा शानदार हो।

विचलित सरला कक्षा की देहरी पर खड़े होकर पूरे कॉरिडोर का मुआयना करने लगी। अपनी मनगढ़ंत योजनाओं से निकलकर जब उसने ब्लैकबोर्ड को देखा तो उसे ज्यामितीय रेखाएं किसी पेड़ की शाख जैसी नजर आईं, जिस पर नव पल्लवन होना बाकी था। सरला ने आज ब्लैकबोर्ड से नजरें फेर लीं। पीरियड खत्म हुआ, घंटी बजी और प्राचार्या ने कक्षा में कदम रखा। अरे अब ये क्यों चली आई? ये हमेशा दबे पांव ही आती हैं। मन ही मन ये बोलते हुए सरला सहजता से मुस्कुराई। क्या पढ़ाने में व्यस्त थी आप सरला मैडम? बच्चों को कुछ गृह कार्य देकर दूसरे काम पूरे करिए। वैसे क्या प्लान है? क्या कर रही हैं आप अवकाश में? प्राचार्या कक्षा और ब्लैकबोर्ड को बारीकी से देख रही थी। अरे मैडम कुछ नहीं, बस कहीं घूम फिर आएंगे। जब से सिहोरा में पोस्टिंग हुई है अप डाउन की थकान कुछ और प्लान करने ही नहीं देती। जबलपुर इतना दूर तो नहीं सरला मैडम? हाँ, घर के काम निपटाकर सही समय पर विद्यालय पहुंचना ज्यादा कठिन है। आपकी पेंटिंग्स के क्या हाल हैं? पूछते हुए प्राचार्या आगे बढ़ने लगी और सरला उनके पीछे चल दी। अरे मैडम मेरी पेंटिंग्स अधूरी हैं, इन छुट्टियों में उनकी रंगत सुधारूंगी। बहुत साल हुए कहीं गए नहीं, ये अवकाश लंबा है, कहीं जाऊंगी इनके साथ। सरला ने बात बदली, क्योंकि पेंटिंग्स तो उसने विद्यालय के वार्षिकोत्सव के बाद कभी बनाई ही नहीं। अरे वाह, कहां की बुकिंग हुई? द हेवन ऑन अर्थ कश्मीर मैडम। आज प्राचार्या भी प्रसन्न थी। यूं तो गणित पढ़ाने वाले अध्यापक उन्हें वैसे भी ज्यादा प्रिय हैं, पर त्योहारों के समय मिली सरकारी छुट्टियां किसे नहीं गुदगुदाती। इस बातचीत के बीच सरला को याद आया वो सफेद कैनवस जो प्राचार्य महोदया ने पिछले वर्ष उसे उपहार में दिया था। वो घर के गलियारे में यूं ही पड़ा पड़ा पिलिया रहा है। वो कैनवस और रंग जो उसे जन्मदिन पर उपहार में मिले थे उसने आज तक नहीं छुए। विद्यालय में सभी सरला की प्रज्ञा और चित्रकारी से परिचित और प्रभावित थे, पर घर और विद्यालय के बीच की खींचतान में वो कैनवस कोरा ही रहा।

0: स्टाफ रूम में एक बच्चे की कॉपी पे नजर दौड़ाते हुए सरला का ध्यान अचानक उसके हाथ की खुश्क पड़ती चमड़ी पर गया। उसने ध्यान से अपने हाथों को देखा। साथ बैठी हिंदी की अध्यापिका सरला को अपने हाथों पर वैसलीन मलता देखकर बोली, सरला मैडम, इन हाथों में अब नमी की उतनी ही कमी है जितनी आपके जीवन में आनंद मंगल की। ये बात सरला को मधुमक्खी के डंक सी चुभी। क्या कमी है उसके जीवन में आनंद मंगल की? कभी प्रतिकार न करने वाली सरला ने आज उत्तर दिया, आप तो बस मेरे पीछे ही पड़ी रहती है मैडम, ये भी कोई मजाक हुआ? मेरे जीवन का आनंद मंगल आप क्या समझेंगी? सरला झुंझला उठी, अरे मजाक कर रही हूं, ये चिड़चिड़ापन तुम पर हावी होता जा रहा है, इतनी खिन्नता अच्छी नहीं, विनोद की भी कमी है तुम्हारे जीवन में। ऐसा है मैडम कि घर हो या विद्यालय, लोग मेरे स्वभाव में उपजी खिन्नता का कारण उनके विवेक और परिस्थिति के अनुरूप खोज लेते हैं, समानुभूति कोई नहीं रखता। अरे तुम घर के उलझे समीकरण भले न सुलझा सको, पर गणित की कक्षा में हर समीकरण का हल खोज लेती हो। हिंदी की अध्यापिका ने सरला का मन ये कहकर बहलाना चाहा। उम्र का ये 45वां साल सरला के लिए कुछ उलझन भरा था। उसके तन और मन का बदलता ताप कभी उसे अफसोस से भर देता तो कभी भावातिरेक से। उसकी बेटी कुहू भी दिल्ली जा चुकी थी और अब उसके साथ शाम को हंसी चिठोली करने वाला कोई नहीं था। शायद प्री मेनोपॉज भी सरला को परेशान कर रहा था। कॉपी करेक्शन पूरा करते हुए सरला सौम्य अंदाज में बोली, मैडम आज मैं घर लौटते वक्त किसी अच्छी कंपनी की क्रीम खरीदूंगी, ये वैसलीन अब चिपचिपी लगती है। आज का दिन यूं तो सबके बीच अति उत्साह में बीता, पर उसकी नजर अपने रूखे हाथों पर बार बार जाती रही जाती रही। शाम को जब लंबे अवकाश की आश्वस्ति लिए वो बस अड्डे पर पहुंची तो वहां बस और मनपसंद खिड़की वाली सीट उसका इंतजार कर रहे थे। बस में सफर करते हुए सरला ने अपना फेसबुक अकाउंट खोला। वहां उसे दिखे कुछ अनजाने खिलखिलाते चेहरे जो बिना पति भाई बहन या प्रेमी के यात्रा पर निकले थे। वो रोमांच से भर उठी। धुंधली नजर आती उन तस्वीरों में कुछ स्त्रियां तो उससे भी बड़ी उम्र की मालूम होती थीं। ये सब देखते देखते कब बस आधार ताल चौराहे तक पहुंच गई उसे पता ही नहीं चला। शायद इस बार भगवान उसकी छुट्टियां मंगलमय रखेंगे और वो अपने परिवार के साथ भारत के स्वर्ग कश्मीर को देख सकेगी। ये सोचते हुए वो बस से उतरी और उसने रिक्शे वाले को रोका, सुनो भैया, पहले बाजार का काम करूंगी, उसके बाद तुम मुझे सुंदर कॉलोनी छोड़ देना।
1: देखो हम 150 रुपया लेंगे।
0: ठीक है चलो। आज सरला को कोई फिक्र नहीं थी। उसने कई दिनों से एक लिस्ट बना रखी थी और आज इसीलिए वो पर्स में पैसे रख के निकली थी। उसने सोच लिया था कि वो रिक्शे वाले को घर आने से थोड़े पहले ही रोक देगी ताकि अम्मा को लगे कि वो पैदल ही आई है। आज उसे ब्रश खरीदने थे, रंग खरीदने थे, अच्छे ब्रांड की क्रीम लिपस्टिक खरीदनी थी। उसकी लिस्ट में तो बहुत कुछ था, पर ये सब खरीद कर उसे शाम 7 बजे से पहले घर भी पहुंचना था। सरला को लगा कि रिक्शा कर ही लिया है तो वो अपने सारे काम निपटा लेगी। विद्यालय में सब उसे कंजूस कहते हैं। अब कौन

बताए इन स्टाफ रूम में बैठी अध्यापिकाओं को कि रिक्शा या ऑटो से घर जाने पर अम्मा का मुंह फूल जाता है। उनके हिसाब से बस स्टॉप से घर तक पैदल आया जा सकता है। 1 किलोमीटर की दूरी दूरी नहीं होती। रिक्शे में बैठी सरला सोचती रही कि उसे घर के गलियारे में पड़े पिलियाते कैनवस को सूर्योदय की रोशनी से रंगना है। किसी दिन प्राचार्य ने तस्वीर दिखाने को कहा तो वो झूठी साबित हो जाएगी। यूं भी सरला को उकेरना था उस कैनवस पर एक चलचित्र, जहां साल के सघन जंगलों के बीच एक नदी बहती हो, वृक्ष के आसपास सफेद बटन वाले कुकुरमुत्ते हों, धरती पे हरी लंबी घास हो और वहां विश्राम करती एक स्त्री हो। पर ये सब कब और कैसे होगा, ये सरला की दिनचर्या सुनिश्चित नहीं कर पा रही थी। अम्मा ने तो कैनवस को फालतू का सामान समझकर यूं भी कमरे के पीछे बने गलियारे में रखवा दिया था। इन विचारों से मुक्त होकर सरला ने मोबाइल पे आया संदेश देखना चाहा। सरला की आंखें बिना चश्मा पहने साफ नहीं देख पा रही थीं। शायद कुहू ने कुछ भेजा था। आज वो चश्मा क्या भूल गई, आधी दुनिया उसे धुंधली नजर आ रही है।

हाँ हाँ बेटा, मैं बस तुझे कॉल करने ही वाली थी। रिक्शे से उतर रही हूं। आज मैं वाकई अपनी संरचना में अधूरा रह गया। कुहू हमेशा की तरह जल्दी में थी। क्या मम्मी, आपने अभी तक अमाउंट ट्रांसफर नहीं किया? मैंने तो आपको टेक्स्ट किया था कि मेरी फेयरवेल पार्टी है, थीम पार्टी है मम्मी, आप समझती ही नहीं हो। अच्छा बेटा, 7 बजे तक घर पहुंच जाऊंगी, फिर बात करती हूं। नहीं मम्मी, आप मुझे तुरंत 10,000 रुपए भेज दो, मैं मॉल में ही हूं, ड्रेस सिलेक्ट कर चुकी हूं। 10,000? अरे ऐसे कितनी ड्रेस ले ली तूने? मैं बिलिंग काउंटर पे हूं मम्मी, वेट नहीं कर सकती, अब जल्दी पैसे भेजो यार। ठीक है कुहू, मुझे बताती जा बेटा कि ये पेमेंट कैसे करना है, कहीं जल्दीबाजी में किसी और को पैसा ना पहुंच जाए। सरला पर्स में नगद ही रखती थी, वो भी जरूरत का। यूपीआई पेमेंट पति ही करते थे। अरे मम्मी, ऐप खोलो, फिर आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में मेरा नंबर है ना, बस उसी नंबर को क्लिक करो, मैं कॉल पर हूं। सरला ने धुंधले चश्मे से कुहू का नंबर खोजा, 10,000 का अमाउंट डाला और डरते हुए ओके के बटन को दबाया। अगले ही मिनट में कुहू चहकी, आ गया अमाउंट मम्मी, शाम को बात करेंगे, ओके बाय। अब सरला ने कोई महंगी क्रीम खरीदने का प्लान किसी और दिन पर टाल दिया और जैतून के तेल के गुणों के बारे में सोचते हुए रिक्शे वाले से बोली, भैया रिक्शा सुंदर कॉलोनी की तरफ मोड़ लो, और हाँ वो जलेबी वाले की दुकान पर रुकना, खोए की जलेबियां उसके घर में सबको बहुत पसंद है। वो जब भी देर से घर लौटती है जलेबियां ले लेती है, अम्मा का मुंह खोए की जलेबियां देखकर नहीं भूलता। जीवन के इस पड़ाव तक आते आते सरला समझने लगी थी कि जरूरतों का मुंह बंद करने के लिए लगातार अर्थोपार्जन में जुटे रहना भी जरूरी है और रिश्तों में मधुरता बनाए रखना भी। संयुक्त परिवार में प्रेम विवाह कर आई सरला के जीवन की धुरी उसका घर और विद्यालय था, पर घर और विद्यालय की कई धुरियां थीं। सरला जीवन के कुछ समीकरण बहुत देर से समझ रही थी। बस बस भैया, रिक्शा यहीं रोक दो। सरला अपने घर से पहले वाले मोड़ पर सामान लेकर उतर गई। शाम के 7 बज रहे थे। संझा की दियाबाती सरला ही करती थी। तेज कदम बढ़ाकर जब सरला घर पहुंची तब तक नीलकांत घर लौट चुका था। अम्मा कुछ कहें इससे पहले सरला ने खोए की जलेबी का डिब्बा अम्मा को पकड़ा दिया, साथ में ताजा मुंगोड़े भी थे। सरला नील को देखते ही चहकी, पता है सरकार ने दीपावली का उपहार पहले ही दे दिया। इतनी वाक्य फिर अपनी संरचना में अधूरे रह गए। इतनी देर से लौटी तुम? अम्मा कितनी बार दरवाजे तक जाकर लौटी, एक कॉल ही कर देती अगर इतनी देर हो रही थी तो। नीलकांत का स्वर खींचा हुआ था, जाने क्यों। अच्छा किया जो जलेबियां लेती आई, नहीं तो बेचारे नील को दौड़ना पड़ता। अम्मा सरला के देर से घर लौटने पर नाराज नहीं थी, ये बात थोड़ी अजीब थी, पर नील का मूड क्यों उखड़ा हुआ है, ये बात सरला की समझ से परे थी। हाथ पैर धोती सरला सोच रही थी कि क्या ये वही नील है जो 20 बरस पहले उसके लिए बस में खिड़की वाली सीट रोक कर रखता था। उसे बताया था सरला ने कि अगर वो खिड़की वाली सीट न चुने तो उसे मिचली सताती है।

ब्यूटी स्टोर तक पहुंचने से पहले इतनी देर से शांत पड़ा मोबाइल बजा। हेलो मम्मी, कहां हो आप? आप टेक्स्ट रिप्लाई क्यों नहीं करती?

बस फिर क्या था, नील ने बस कंडक्टर के साथ साठ गांठ करके बस की सबसे आगे वाली सीट अपने और सरला के लिए बुक कर दी थी। वो बैंक में पदस्थ था और सरला की नियुक्ति शिक्षा कर्मी के तौर पर हुई थी। दशहरा और दीपावली के अवकाश के दौरान नीलकांत किसी रविवार सरला से मिलने जरूर चला जाता था। बस इसी बीच विवाह का ख्याल सरला के परिवार वालों को यूं भी आ गया कि नीलकांत को दहेज से नफरत थी। नीलकांत सरला के एमएससी गणित से इतना प्रभावित था कि वो इसके आगे कुछ जानना समझना नहीं चाहता था। सरकारी नौकरी में तो वो लग ही चुकी थी। दोनों ब्राह्मण परिवारों को इस विवाह से कोई समस्या नहीं थी। सरला को नील की आंखों में अपने लिए प्रशंसा और सम्मान मिला और नीलकांत को मिली सरल सरला, जो उसकी बहनों की परवरिश में उसकी सहभागी बनी। अब क्या करने लगी सरला, चौके में घुसो, आज जीजी की ननद ननोई आ रहे हैं खाने पर। उनके परिवार में एक अच्छा कमाऊ लड़का है अपनी मिली के लिए। नीलकांत की पुकार सुन सरला वर्तमान में आ गई। हमेशा से नीलकांत की तीन छोटी बहनों की जिम्मेदारी नीलकांत की ही थी। पहली दो तो आराम से ब्याह गईं, पर नीलकांत की सबसे छोटी बहन मिली के लिए वर मिलना लगभग असंभव होने लगा था। न शिक्षा, न रंग रूप, न कोई कला कौशल, न कुछ करने की चाह। आलस्य से भरी 32 साल की मिली के लिए नीलकांत और उसकी अम्मा पिछले 10 साल से योग्य वर खोज रहे थे। अम्मा ने चौके में सरला को सुनाते हुए कहा, मिली को अच्छा दहेज देकर ब्याहूंगी ताकि उसे कोई ससुराल में दबा न सके। सरला को पूड़ी का आटा गूंथते हुए नजर आ रही थी कश्मीर की वो रील्स जो उसे कुहू भेजती रहती है। सरला और नील के जीवन में जिम्मेदारियों का हरा पौधा अब परजीवी बन चुका था। एक ऐसा परजीवी जो सरला और नीलकांत के बीच सदैव कुछ लेने के लिए खड़ा रहता। मेहमानों की रवानगी के बाद अम्मा और नीलकांत पूरी बातचीत का मुआयना करने बैठ गए और सरला घर के गलियारे में रखे कैनवस को साफ करने लगी। कैनवस पूरी तरह से बदरंग हो चला था।

अगली सुबह सरला देर तक बिस्तर से नहीं उठी। सारी रात उसके सपनों में पहाड़, नदी और कुहू आते रहे। जब उसका कैनवस पैसों, जेवरों और बर्तनों से सजने लगा तब उसकी नींद टूटी। ओह, घड़ी में 8 बज रहे थे। बैठक में नीलकंठ और अम्मा चाय के साथ बासी पूड़ियों का नाश्ता करते बड़े प्रसन्न नजर आ रहे थे। अम्मा ने उसे चाय का कप मुस्कुराते हुए थमाया। क्या हुआ अम्मा, आप जगा देती मुझे? सरला ने बैठक में बिखरे कुशन समेटते हुए कहा। अरे सरला, अपने तो भाग ही खुल गए, मिली के लिए हाँ कह दी उन लोगों ने। भले लोग हैं, बस इतना चाहते हैं कि विवाह धूमधाम से हो और स्वागत सत्कार में कोई कमी ना रहे। मतलब अम्मा? मतलब ये कि अपनी अपनी पेंशन निधि से या फिक्स डिपॉजिट से पैसा निकलवाने की अर्जी दे दो। सोने का भाव तो आसमान चढ़ रहा है, लड़की को सूने हाथ तो नहीं भेज देंगे ना। फिर शादी भी तो जबलपुर में नर्मदा पैलेस से करना चाहते हैं वो लोग। सब कुछ मिलाकर 20 लाख रुपए तो चाहिए। क्यों नील? जी अम्मा, इतने तो लग ही जाएंगे। नीलकंठ यूं भी अपनी अम्मा की हर बात से सहमत ही रहता था। अम्मा, 35 साल की उम्र में शादी करने वाला इतना टीम टाम क्यों चाहता है? सोचिए, प्राइवेट नौकरी है उसकी, क्या वो खुद 20 लाख का लोन लेने की ताकत रखता है? 20 लाख सुनते ही सरला का मन घबराने लगा। ये सब ज्ञान की बातें हैं सरला, सबको नील का

अंत नहीं मिलता, इतना तो करना ही पड़ेगा। अभी से अर्जी दे देंगे तो पीएफ से तुम्हारा और मेरा फंड एक माह के भीतर निकल जाएगा सरला, तुम चिंता मत करो। नीलकांत सब सोच चुका था। मिली अपनी बिखरी अलमारी आज बरसों बाद सहज रही थी। शायद अम्मा ने उसे बता दिया था कि अब उसे नई रेशमी साड़ियां खरीदनी और पहननी हैं, जिन्हें पहनकर वो सुंदर दिखे। अम्मा ने आज खुशी खुशी चौका संभाला, एक बार भी सरला को आवाज नहीं दी। नीलकांत बैंक अकाउंट चेक करते रहे और सरला, वो बैठ गई रंगों और कूचियों के साथ उस कैनवस के सामने जिसे उसने एक साल से नहीं छुआ था। सारा दिन घर ठहाकों से गूंजता रहा और सरला उकेरती रही पहाड़, पेड़, नदियां और कुकुरमुत्ते। एक स्त्री जो सरला की कल्पनाओं में थी, वो कैनवस के लैंडस्केप में अनुपस्थित थी। सरला, तुम ये सब क्या लेकर बैठ गई? चलो बाजार चलो, सोने का भाव आसमान छू रहा है। मिली और अम्मा तैयार हो गई हैं। नीलकांत अब तक डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स की स्पेंडिंग लिमिट चेक कर चुका था। उसका उतावलापन बता रहा था कि अब वो रुकेगा नहीं। नहीं नीलकांत, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे 2-3 दिन बाद एक ट्रिप पर जाना है जिसका पेमेंट मैं कर चुकी हूं। पगला गई हो क्या? कौन सी ट्रिप सरला? अरे घर में 2 महीने में शादी है और तुम ये सब क्या सोच रही हो? हम कश्मीर अगले साल चले जाएंगे। वैसे भी टिकट्स कंफर्म नहीं हुई थी इसलिए मैंने कैंसिल कर दी। कम से कम रिफंड तो मिल गया। इस वक्त सरला को वो सारी यात्राएं याद आने लगी जो यात्रा के 2-3 दिन पहले रद्द हो जाती थी। कभी अम्मा बीमार हो जाती थी, कभी जीजी अपने बच्चों के साथ मायके आ जाती थी, कभी बहनों की शादी का बोझ था तो कभी मकान की प्लानिंग। नीलकांत की लिस्ट में सरला के साथ सिर्फ सब्जी खरीदने जाने का प्लान था, क्योंकि सरला मूल भाव में कच्ची थी। चलो भी तैयार हो जाओ। नीलकांत को पता था सरला को मनाना समझाना बहुत कठिन नहीं, आखिर बिन दहेज के ब्याह लाया है उसको। नील, मैं अकेली जाऊंगी ट्रिप पर, सरकार ने लंबा अवकाश दिया है। पहले कुहू के पास दिल्ली जाऊंगी और फिर वहां से निकलूंगी एक समूह के साथ। सुनो यार, मैं समझता हूं कि हमारे कश्मीर न जाने के प्लान से तुम अपसेट हो रही हो, पर जरा सोचो, ये भी कोई वक्त है अपने बारे में सोचने का? मिली, अम्मा और जीजी सब क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? कुछ नहीं सोचेंगे नील, क्योंकि उनको तो पीएफ से पैसा चाहिए। तीसरी बार पीएफ से पैसा निकालने के बाद इस अकाउंट में जूठन ही बचेगी कुहू और मेरे लिए। सरला का स्वर स्पष्ट था। अम्मा और मिली गलियारे की देहरी पर खड़े चुपचाप ये बातचीत सुन रहे थे। जाओ नील, अम्मा और मिली इंतजार कर रहे हैं, मेरे साथ बहस में मत पड़ो। एक खुशनुमा दिन तनाव से भर उठा था। अम्मा और मिली नीलकांत का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले गए। सरला बहुत देर तक अपने उकेरे चित्रों को देखती रही।

कहां है वो इस परिवार में, नील के जीवन में? उसकी इच्छाओं का कभी कोई मूल्य क्यों नहीं रहा? संभवतः इसलिए क्योंकि उसने हमेशा हां कहा। उसने कभी अपने लिए जीना नहीं सीखा। मोबाइल चलाया तो यूपीआई से डरती रही, सैलरी मिली तो डेबिट कार्ड रखने से डरती रही, बाहर निकली तो अम्मा के डर से रिक्शा नहीं किया, और तो और कभी अपनी सेहत की भी परवाह नहीं की। बिना दहेज के विवाह को वो खुद पर किया गया एक एहसान मान बैठी। अब तो उसके जीवन का आधा पड़ाव पार हो चुका है। अगर आज भी वो भय के साए में जीती रही तो अपने लिए कब जिएगी? क्या आज भी वो वही करेगी जो सब करना चाहते हैं? आज पहली बार सरला ने जोर देकर कहा, नहीं, मैं अपना जीवन दूसरों की आशा के अनुरूप नहीं जी सकती। मैंने आज तक अपना हर कर्तव्य निभाया है, पर अब मुझे अपने मन की भी सुननी है। मैं परिवार छोड़कर तो नहीं जा रही जो कोई ग्लानी पाल बैठूं। उसने कुहू का नंबर डायल किया, कोई जवाब नहीं आया, शायद वो व्यस्त हो। बैठक में आराम से पैर फैलाकर बहुत देर तक सरला लिली फीमेल ट्रैवलर्स का वो वेब पेज देखती रही जिसे वो पिछले 2 साल से फॉलो कर रही थी। उसने चश्मा लगाकर देखा तो तस्वीरों में उसे अम्मा की उम्र की स्त्रियां भी नजर आईं। कैसे खिले खिले से चेहरे थे उन सबके। वो कब इस तरह से खिलखिलाएगी? इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ सरला के पास था। इस वेब पेज पर कुछ स्त्रियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए वीडियो भी डाले थे।

कैसी विचित्र बात है कि सबकी यात्रा संकोच और भय से ही शुरू हुई थी, और सरला की वो यात्रा कैसे शुरू होगी? यकीनन वो एक असहमति से शुरू होगी। सरला ने थरथराती उंगलियों से अपने डिटेल्स भरे और लिली फीमेल ट्रेवलर्स के साथ यात्रा पर जाने की स्वीकृति और राशि दोनों ही भेज दी। अब उसके अकाउंट में जितने पैसे थे वो इस समूह के साथ यात्रा करने के लिए पर्याप्त थे। मिली के विवाह में जो खर्च होना है वो उसे रोक नहीं सकती, पर अपनी कमाई से वो खुद को खुशी के कुछ लम्हे तो दे ही सकती है। सरला आज सच में खुश थी। उसने एक बड़ा यूपीआई पेमेंट अपने लिए किया था। उसने नीलकांत को ना कहा था। आज पहली बार उसने खुद को चुना था। जब नील, अम्मा और मिली बाजार से लौटे तो सरला सूटकेस की धूल झाड़ पोंछ रही थी, और उसने अपने ट्रैवल डिटेल्स भी कुहू और नीलकांत को भेज दिए थे। आज सबकी आंखों में एक प्रश्न था, पर सरला की आंखों में नई यात्रा पर जाने की चमक थी। आज उसे रोकने का साहस किसी में भी नहीं था।

जीवन एक सरल रेखा, ये थी श्वेता उपाध्याय की लिखी कहानी। वाचन आपके इस दोस्त यूनुस खान का था। संपादन काजल भदरगे, प्रस्तुति जुबैर खान।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जान

जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमान

0: उड़ उड़ जाए।
1: भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में।
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग, द्विपक्षीय व्यवहार और प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की।
1: यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया है, ये किसी भी रूप में स्वीकार करना नहीं है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और विजन का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और यूरोप की 6 दिन के दौरे पर पहले चरण में आज अबू धाबी पहुंचे। हवाई अड्डे पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने उनका स्वागत किया। एक रिपोर्ट।
2: बातचीत के नतीजे सामने आने शुरू हो गए हैं। दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
0: विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉ जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। डॉक्टर जयशंकर ने आज मलेशिया के विदेश मंत्री मोहम्मद हसन से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत माध्यम लड़ाकू विमान AMCA निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता हैं और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल में प्रवेश के लिए NEET UG 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में OMR मोड में आयोजित होने वाली NEET UG परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी CBT माध्यम से होगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज गुरुग्राम में भारतीय पेट्रोलियम प्रबंधन संस्थान में 11वें विचार मंथन सत्र की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने बताया कि सत्र में भारत के तेल और गैस क्षेत्र में अनुसंधान, विकास, नवाचार और स्टार्टअप्स पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया गया। पश्चिम बंगाल विधानसभा में रदेन्द्र बसु निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। श्री बसु कूच विहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं।

0: उधर पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के वरिष्ठ विधायक ए अम्बा लगन को 16वीं विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सिफारिश पर यह नियुक्ति की। भारत का माल और सेवा कुल निर्यात अप्रैल 2026 में 80 अरब 80 करोड़ डॉलर रहने का अनुमान है। यह पिछले वर्ष अप्रैल की तुलना में 13.6% अधिक है। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के 26 मई तक आने की संभावना है। केरलम में मानसून के आगमन की सामान्य तिथि 1 जून है। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी समाचार अभी आप सुन रहे थे हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। हमारी स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:05 हुए हैं। अब आरंभ होती है हमारी आज की सांध्यकालीन सभा। सबसे पहले आइए डालते हैं एक नजर आज इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर।

अब से थोड़ी देर में हमारे श्रोता सुनेंगे भक्ति गीतों का कार्यक्रम वंदन। इसके अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे बेहतरीन भक्ति गीत शाम 5:10 पर। शाम 5:30 पर हमारे श्रोता सुन सकेंगे महिला बहनों का कार्यक्रम घर आंगन। शाम 6:00 हम अपने श्रोताओं के लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम गांव घर। विश्व शांति में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका विषय पर आप सुनेंगे वार्ता। वार्ताकार होंगे अमित मुखर्जी। शाम 6:30 पर आप सुन सकेंगे भोजपुरी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सांझ गीत।

शाम 7:15 पर हमारे श्रोता सुनेंगे सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास से। 7:25 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल हमारे आकाशवाणी के पटना केंद्र से। शाम 7:50 पर आप सुनेंगे ईमेल आधारित फरमाइशी नगमों का कार्यक्रम ई मनपसंद। 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात्रि 9:00 हमारे श्रोता लेंगे आनंदे भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम होगा लोक धारा।

आज बंदगी कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे कव्वाली। रात्रि 9:15 पर, 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के फनकार हमारे विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

रात्रि 10 बजे हमारे श्रोता सुनेंगे हिंदी एल्बम सॉन्ग्स पर आधारित कार्यक्रम रस रंग। रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे सदाबहार हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट तराने।

रात्रि 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी समाचार और उसके बाद 11:05 पर अंग्रेजी समाचार हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से और रात्रि 11:10 पर हमारी आज की यह सभा संपन्न हो जाएगी।

अभी हम अपने श्रोताओं को जानकारी दे रहे थे आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:10 हो चुके हैं। भक्ति गीतों का कार्यक्रम वंदन में आइए सुनते हैं कुछ बेहतरीन भक्ति गीत। पहला भक्ति गीत हमने लिया है अनूप जालोटा की आवाज में, शब्द हैं रवि चोपड़ा के और संगीत दिया है शिवा चोपड़ा ने।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्र

श्रोताओं, संजय गिरी द्वारा गाए इसी भक्ति गीत के साथ भक्ति गीतों का कार्यक्रम वंदन अब यहीं संपन्न होता है। एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:30 हो चुके हैं। अब लीजिए प्रस्तुत है महिला बहनों का कार्यक्रम घर आंगन।

सभी सुनने वाली सखियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सखियों, मैं हूँ आज आपकी रेडियो सखी विनीता सिंह और घर आंगन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। तो सखियों, तैयार हो जाइए हमारे साथ इस आनंद को जीने के लिए, जिसमें हम आप मिलकर बहुत ढेर सारी बातें करेंगे। सखियों, पता है हम सब जब इस दुनिया में आते हैं, अपनी आंखें खोलते हैं, तो हम सब एक परिवार में एक नए सदस्य के रूप में प्रवेश करते हैं और एक परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। जैसे पहले से ही फिक्स रहता है कि हम एक परिवार के सदस्य बनने वाले हैं। सखियों, परिवार फैमिली एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इसके मायने बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा है। परिवार सिर्फ रिश्तों का नाम नहीं होता है, बल्कि वो एक एहसास होता है, एक अपनापन होता है, जहां माँ का प्यार, पिता का भरोसा, भाई बहनों का साथ और अपनों की परवाह, फिक्र इंसान को हर मुश्किल वक्त में लड़ने की ताकत देती है। परिवार सिर्फ खून के रिश्तों का नाम नहीं होता है सखियां, बल्कि ये वो जगह होती है जहां इंसान कोई भी सबसे ज़्यादा सुरक्षित और अपनापन महसूस करता है। प्यार, भरोसा और साथ, एक दूसरे के साथ को मजबूती से भावनात्मक सहारा देना, लेना, ये सब परिवार में ही मिलता है। संस्कार, सुरक्षा देना, ये हमें परिवार में ही मिल पाता है। बच्चों की परवरिश से लेकर बुजुर्गों की देखभाल तक हर जिम्मेदारी में परिवार की अहम भूमिका होती है। सखियों, आज के दौर में परिवार की अहमियत और बढ़ गई है, क्योंकि आजकल लोगों में तनाव, चिंता, अकेलेपन की समस्याएं ज़्यादा तेजी से बढ़ रही हैं। आपने भी ऐसा महसूस किया होगा। ऐसे में परिवार मानसिक और भावनात्मक सहारा देने का काम करता है। जब हम टूटने लगते हैं, जब हम परेशान होते हैं, तो परिवार के लोग ही आकर के हमारी ताकत बनते हैं। दुनिया भर में कई सारे शोध हो चुके हैं, रिसर्च हो चुके हैं, उनसे भी ये पता चलता है कि जिन लोगों को परिवार का सहयोग मिलता है, वे मानसिक रूप से ज़्यादा मजबूत होते हैं। उनकी अपेक्षा जो अकेले होते हैं या दुर्भाग्यवश अनाथ बच्चे होते हैं या जिनका कोई नहीं होता है दुनिया में, उनसे जो परिवार में बच्चे पलते बढ़ते हैं, जो परिवार में रहते हैं, वो ज़्यादा मजबूत, अंदर से मजबूत होते हैं, मतलब मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। सखियों, आज की तेज रफ्तार भरी जिंदगी में लोग काम और जिम्मेदारियों में इतने उलझ गए हैं कि परिवार के साथ साथ सुकून से बैठकर दो पल बात करने का समय भी बड़े मुश्किल से मिल पाता है, और ऐसा हो भी रहा है।

आजकल, और आजकल काम और जिम्मेदारियों में हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि परिवार के साथ समय बिताना कम होता जा रहा है। ऐसे में संयुक्त परिवार की कितनी जरूरत होती है, या पहले के समय में जो संयुक्त परिवार होता था उसमें इन सब ये सब कोई परेशानी ही नहीं आती थी। एक कारण सोशल मीडिया और मोबाइल इंटरनेट भी है इसके लिए जिम्मेदार, क्योंकि सोशल मीडिया और मोबाइल के इस जमाने में लोग एक दूसरे से कटे रहते हैं, उसी में व्यस्त रहते हैं। तो ऐसे में परिवार दिवस से हमें काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलता है। सखियों, आगे हम कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के बारे में और चर्चा करेंगे, बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये गीत।

सखियों सही बात है कि जब हम साथ साथ होते हैं परिवार में तो परिवार कितना मजबूत होता है और हमारे लिए परिवार कितना महत्वपूर्ण है। इस गीत में तो हम

ने समझ ही लिया है। सखियों, ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हमें अपने रिश्तों को समय देने और अपनी भावनाओं को समझने का मौका देता है, क्योंकि कार्यक्रम में पहले हम बात कर रहे थे कि परिवार हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। उसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए ये कह रहे हैं कि परिवार हर लिहाज से हम सबके लिए बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है, और एक खुशहाल परिवार ही अच्छे समाज और बेहतर भविष्य की नींव होता है। परिवार साथ हो तो जिंदगी की हर परेशानी आसान लगने लगती है। सखियों, आज हम परिवार पे इतनी बातें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है जो हर साल 15 मई को मनाया जाता है पूरी दुनिया में। यह दिन हमें अपने रिश्तों को समय देने, अपनी भावनाओं को समझने और परिवार की अहमियत को महसूस करने का मौका देता है, यानी हर तरह से हम परिवार की कीमत को समझें। यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन की शुरुआत की ताकि दुनिया भर में परिवारों से जुड़े मुद्दों और उनकी जरूरतों पर ध्यान दिया जा सके। क्योंकि एक टाइम था सखियां कि परिवार के लिए लोग दिन रात समर्पित रहते थे, लेकिन धीरे धीरे औद्योगिकीकरण, शहरीकरण हुआ, दुनिया तेजी रफ्तार से आगे बढ़ी, तो परिवार बिखरने लगे, टूटने लगे। संयुक्त परिवार की जगह पे एकल परिवार ने जन्म ले लिया। और एकल परिवार छोड़िए, इस समय तो एक फैमिली में पति पत्नी, लड़का लड़की, कहीं पति कहीं जॉब कर रहा है, पत्नी कहीं कर रही है, बेटा कहीं है, बेटी कहीं, यानी फैमिली में चार मेंबर हैं, चारों चार शहर में हैं। ऐसी स्थिति आ गई है, इसमें अकेलापन होना, तनाव चिंता होना, क्योंकि जब परेशानी आती है तो एक दूसरे के साथ सहारा बन के भावनात्मक सहारा मिलती है, वो चीज़ तो मिलती नहीं है। चाहे दुनिया की कोई भी गैजेट हो, कोई भी मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कोई भी टीवी सीरियल, कुछ भी आप देख लीजिए, लेकिन जो आपको भावनात्मक मजबूती जो मिलती है वो परिवार के सदस्यों से ही मिलती है। यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन की शुरुआत की ताकि दुनिया भर में परिवारों से जुड़े मुद्दों और उनकी जरूरतों पर ध्यान दिया जा सके। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 1993 में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाने का फैसला लिया था, यानी उसने सोचा था। इसके बाद पहली बार 15 मई 1994 को इसे दुनिया भर में मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र का मानना था कि अगर परिवार मजबूत होंगे तो समाज और देश भी मजबूत बनेंगे। तभी से हर साल ये दिन अलग अलग थीम के साथ मनाया जाता है। 2026 की थीम परिवारों के बीच बेहतर समझ, साथ, भावनात्मक जुड़ाव को बढ़ावा देने पर जोर देता है। और सखियों, आप जानती ही हैं कि आज मोबाइल और सोशल मीडिया के दौर में लोग एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। ऐसे में ये थीम याद दिलाती है हमें कि परिवार के साथ बातचीत और समझदारी पूर्वक रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए ही जरूरत है और बहुत जरूरी है हम सब के लिए। तो सखियों, ये हुई बातें कि हम परिवार के साथ कैसे समझदारी भावनात्मक रिश्तों के साथ जुड़ें, परिवार को समझें, परिवार के साथ जुड़ के रहें। ये परिवार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हमें एहसास कराता है, बताता है। और अब आइए सखियों, फिर से सुनते हैं गीत।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: सखियों, पता है हम सब जब भी कुछ करने का इरादा लेकर जीवन में आगे बढ़ते हैं तो जरूरी नहीं है कि पहले ही प्रयास में हमें सफलता मिल जाए। पहली बार में कुछ लोगों को तो सफलता मिल जाती है, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कई बार पूरे लगन और कठोर मेहनत करने पर भी सफलता नहीं मिल पाती है। तो इसका मतलब सखियां ये नहीं है कि ऐसे लोग हार मान लें। ऐसे लोगों को तब तक हार नहीं माननी चाहिए जब तक सफलता उनके कदम ना चूम ले। और सखियां, पता है स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो जागो तब तक

ना रुको जब तक तुम्हें सफलता ना मिल जाए। और जब कभी भी आपको या हमको ऐसा हार का सामना करना पड़े या निराशा महसूस हो तो हमें ये बातें याद कर लेनी चाहिए। और सखियों, हम सबका जीवन उतार चढ़ाव से भरा होता है, ये तो हम सभी जानते हैं। हर समय या हर साथ एक जैसी परिस्थिति किसी के साथ नहीं रहती है। कभी सफलता के शिखर पर तो कभी अपने जीवन में विफलता यानी हार का सामना हम सबको करना पड़ता है। लेकिन हार में अपना आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच सदैव दृढ़ रखना चाहिए। यही आपके जीवन की पूंजी है, यही आपके जीतने का जज्बा है। जीवन में हार ना मानना और लगातार संघर्ष करना ही सफलता की कुंजी है। मुश्किलें आपको कमजोर करने नहीं बल्कि और मजबूत बनाने आती हैं। हार मान लेना आसान है जबकि डटे रहना आसान नहीं। और इस बात पे जरूर गौर करना चाहिए कि पिछली असफलता में या पिछली हमारे जो पहले जो हम असफल हुए हैं, पिछली असफलताओं से मिली सीख से नए दृष्टिकोण के साथ फिर से प्रयास करना जरूरी है। और जब दृढ़ता के साथ यानी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो निश्चित ही सफलता हमें मिलती है। आत्मविश्वास के साथ जब हम दृढ़ निश्चय करके आगे बढ़ते हैं तो हमें सफलता मिलती ही मिलती है। और जब हम सब चुनौतियों को अवसरों के रूप में देखते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है सखियां। और खुद पर भरोसा करके लगातार संघर्ष करते रहें तो यही संघर्ष आपका कल पहचान बन जाएगा, आप सफल हो जाएंगे। इसलिए जीवन में कभी हार ना माने और संघर्ष करें और तब तक जब तक अपने प्रयास में सफल ना हो जाएं। और अभी हम लोग कार्यक्रम की सफलता के लिए सुनते हैं ये गाना।

सखियों, इस गर्मी के मौसम में अगर हम सबको एक गिलास ठंडा ठंडा शरबत मिल जाए तो क्या कहना। और हमारे देसी शरबत में तो बहुत सारे शरबत होते हैं, हम नींबू का शरबत और सौंफ का शरबत, बेल का शरबत, ना जाने कितने तरह का शरबत घरों में बनाते हैं, पीते हैं, पिलाते हैं, क्योंकि ये देसी शरबत हमारे स्वास्थ्य के लिए तो वरदान होते हैं। और उस पर सत्तू का शरबत इस मौसम में मिल जाए तो क्या कहना। और हम सब के घरों में चने का सत्तू तो रहता ही है सखियाँ। और इस चने के सत्तू से अगर हम शरबत बनाकर पीते हैं जिसमें नींबू, हरा पुदीना, हरा धनिया, काला नमक, भुना हुआ जीरा पाउडर डाल करके जब ये हम सत्तू बनाकर पीते हैं तो हमारा तो पेट भरता ही है, गर्मी और प्यास से भी राहत मिलती है। और ये सत्तू जो हम चने का सत्तू का शरबत बनाते हैं ये प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है, तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि इससे पाचन सही होता है और पेट साफ होता है, यानी कब्जियत दूर होती है और पानी की कमी दूर होती है। तो है ना सत्तू के शरबत पीने के बहुत फायदे। और हम सब ने देखा है हमारे घरों में जो पहले बड़े बुजुर्ग होते थे और आज भी सुबह सबसे पहले उठ करके सत्तू का शरबत पीते हैं ताकि दिन भर उनके पेट में ठंडापन रहे, उनको कब्ज ना हो। और सत्तू का शरबत हर तरह से, चाहे सत्तू का सेवन हम शरबत के रूप में करें चाहे और किसी भी रूप में करें, सत्तू हम ऐसे भी खाएं किसी भी रूप में, तो इस मौसम में या हर मौसम में हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। इसीलिए सखियाँ हम सब महिलाएं अपने घर में ज़रूर सत्तू रखते हैं। और सत्तू हम बाज़ार से खरीद के लाते हैं, बहुत सारी सखियाँ घर में भी सत्तू पीस के रखती हैं और तरह तरह के फ्लेवर के साथ सत्तू का शरबत बनाती हैं। और उसमें सबसे अच्छा फ्लेवर जो सबको पसंद आता है वो है कि हरा पुदीना और हरी धनिया को पीस करके चटनी जैसा, और काला नमक और भुना जीरा पाउडर डाल करके, और उसमें नींबू के दो चार बूंद एक गिलास शरबत में मिला दीजिए, तो बहुत टेस्टी स्वादिष्ट सत्तू का शरबत तैयार होता है जो

पीना पिलाना हम सब के लिए बहुत फायदेमंद होता है, सेहत के लिए तो बात ही मत कहिए सखियां, कितना ज्यादा फायदेमंद है। तो हम रोज अपने घरों में सत्तू का शरबत पिए पिलाएं, प्रोटीन और फाइबर से भरपूर और पेट में ठंडा भी हमारे पेट के लिए करता है। सखियों ये हुई बातें कि सत्तू का शरबत हमारे लिए कितना फायदेमंद है। और सखियों अब समय समाप्त होने को है कार्यक्रम का, तो अपनी सहेली विनीता सिंह को कार्यक्रम संपन्न करने की दीजिए अनुमति। सखियों नमस्कार।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे महिला बहनों का कार्यक्रम घर आंगन एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारी स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6 बज चुके हैं। अब लीजिए पेश है ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम गांव घर।

आकाशवाणी के एक कार्यक्रम गांव घर में आप सबके हार्दिक स्वागत बा और हम आपके साथ बने सुगिया बहिन श्रोता भाई बहिन। आज हमनी के विषय बा अपना परिवार पर भी दे ध्यान। कहे कि आज मनावल जा रहल बा इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज यानी अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। परिवार केवल रिश्ता के नाम ना है बल्कि ई प्रेम सहयोग सुरक्षा और संस्कार के सबसे मजबूत नींव है। बदलत जीवन शैली और भाग दौड़ भरल जिंदगी में हम अक्सर अपना परिवार के समय देना भूल जानी जा। ऐसन में हमने के ई दिवस याद दिलावेला कि जीवन के असली खुशी परिवार के साथ जुड़ाव में बा। एक समय रहे जब गांव में संयुक्त परिवार के परंपरा बहुत मजबूत रहे। घर में दादा दादी चाचा चाची भाई बहन सब साथ मिलकर रहत रही जा। हर दुख सुख मिलके बांटल जात रहे। बच्चा के संस्कार मिलत रहे और बड़ बुजुर्ग के सम्मान मिलत रहे। लेकिन आज के समय में कामकाज और व्यस्तता के कारण परिवार में दूरी बढ़त जा रहल बा। लोग एक ही घर में रहते हुए भी एक दूसरे से खुल के बात नहीं कर पावत। एकर असर बच्चा बुजुर्ग और अपना परिवार पूरा परिवार के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ रहल बा। परिवार में प्रेम और संवाद बनाए रखल बहुत जरूरी बा। श्रोता भाई बहन, यदि परिवार मजबूत हुई तो समाज भी मजबूत बनी। परिवार के खुशहाल बनावे रखल में छोट छोट बात बहुत महत्वपूर्ण बा। सबसे पहले परिवार के साथ समय बिताई। दिन में कुछ ऐसा समय जरूर निकाली जब सब सदस्य एक साथ बैठ के बातचीत कर सकस। भोजन एक साथ करे के आदत भी परिवार के जोड़ेला। दूसरा बात बा बुजुर्ग के सम्मान करें। तीसरा बात बा बच्चा के मोबाइल से ज्यादा परिवार के साथ दी बच्चा के साथ खेली उनकरा से बात करी और उनका

समस्या के समझी। परिवार के प्यार बच्चा के अतिरिक्त आत्मविश्वास के बढ़ावा देला। चौथा बात बा, परिवार में छोट छोट खुशी के मनाई। जन्मदिन, त्योहार या कोई छोटा सफलता जब मिलकर मनावल जाला तब रिश्ता में मिठास बढ़ जाला। श्रोता भाई बहन, आज के समय में मानसिक तनाव तेजी से बढ़ रहा बा, ऐसन में परिवार सबसे बड़ सहारा बन सकता। जब घर के माहौल अच्छा होला तब व्यक्ति हर कठिनाई के सामना आसानी से कर लेला। विशेषज्ञ भी माने निजा कि जौना लोग के पारिवारिक संबंध मजबूत होला वो अधिक खुश और स्वस्थ रहेलन। परिवार बच्चा के सुरक्षा देला, युवा के दिशा देला और बुजुर्ग के सम्मान देला। गांव में आज भी परिवार और समाज के भावना मजबूत दिखाई दे रहल बा। जरूरत बा कि हमनी के अपनी पुराना परंपरा और संस्कार के बनौले रखी जा। श्रोता भाई बहन, परिवार केवल खून के रिश्ता से ना बल्कि अपनापन और विश्वास से चलेला। ऐसे अपना परिवार के सदस्य के भावना के समझी, उनकर बात के महत्व दी और एक दूसरे के सहयोग करी। अगर परिवार में कोई सदस्य परेशान बा तो ओकरा के अकेला महसूस मत होके दी। मिल बैठ के समस्या के समाधान खोजी। याद रखी, जहाँ परिवार के साथ होला वहाँ छोटा छोटा मुश्किल एकदम छोटा लगे लगेला, बड़ा मुश्किल भी छोटा बन जाला। तो आई ए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर हम सब मिलके संकल्प लिही जा कि हम अपना परिवार के समय देव, बुजुर्ग के सम्मान करब, बच्चा के अच्छा संस्कार देव और परिवार में प्रेम तथा अपनापन बना के रखब जा। काहे कि मजबूत परिवार ही खुशहाल समाज और मजबूत देश के पहचान है। और अब ए वार्ता के बाद, अब ए चर्चा के बाद, अब हमने के एक लोकगीत के आनंद लिहल जाओ। आज के लोकगीत में हमनी के पूर्वी सुनब जा। कलाकार बानी सुरेंद्र प्रसाद।

0: कलाकार के बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोता भाई बहन, विश्व शांति में संयुक्त राष्ट्र के संघ के भूमिका जोन बा बहुत अच्छा रहे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरा दुनिया युद्ध के भयावह के देखले रहे। लाखों लोग के जान गई, शहर उजड़ गई और मानवता संकट में पड़ गई। ऐसन समय में विश्व के देश जोन बा मिल के एक ऐसन संगठन के आवश्यकता महसूस कैलस जवन देश के बीच शांति और सहयोग बना के रख सके। ए उद्देश्य से वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के स्थापना कैल गई। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य उद्देश्य है विश्व में शांति बनवले रखल, युद्ध रोकना, मानवाधिकार के रक्षा करना और देश के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना। श्रोता भाई बहन, संयुक्त राष्ट्र संघ अनेक बार युद्ध और संघर्ष के रोके में महत्वपूर्ण भूमिका निभैलस। जब दो देश के बीच तनाव बढ़ेला तब संयुक्त राष्ट्र के बात और समझौता के माध्यम से समाधान निकाले के प्रयास कैल जाला। एकरा के शांति विश्व संस्था जैसे यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनेस्को मानव कल्याण खातिर निरंतर कार्य कर रहल बा। कोविड-19 महामारी के दौरान भी संयुक्त राष्ट्र और ओकर संस्था जोन बा दुनिया के देश के स्वास्थ्य संबंधी सहायता और दिशा निर्देश प्रदान कैलस। एकरा से इस सिद्ध होला कि विश्व शांति केवल युद्ध रोके से ना बल्कि लोग के जीवन के सुरक्षित और बेहतर बनावे से भी आवेला। हालांकि आज भी दुनिया में कई चुनौती मौजूद बा। आतंकवाद, युद्ध, हथियार के होड़ और राजनीतिक मतभेद। ऐसन में संयुक्त राष्ट्र संघ के भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाला। आवश्यकता यह बात के बा कि सब देश मिलके एकर उद्देश्य के सामना करी, सम्मान करी और शांति, सहयोग और मानवता के मार्ग पर आगे बढ़ी। अंत में यह कहल जा सकता कि संयुक्त राष्ट्र संघ के विश्व के एक परिवार मान के शांति और विकास के दिशा में निरंतर प्रयास कर रहल बा। यदि सब देश एक दूसरा के सम्मान करें और संवाद बनाए रखें तब विश्व में स्थायी शांति स्थापित कैल जा सकता। अब हमनी के एक यही विषय पर वार्ता सुने के आज के वार्ताकार बनी अमित मुखर्जी और वार्ता के विषय बा विश्व शांति में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका। तो सुने के ई वार्ता।
1: द्वितीय विश्व युद्ध सभ्य मानव के लिए त्रासदी थी एवं मानवता के लिए एक शर्मनाक घटना। इस विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में विश्व में शांति स्थापित करने के मुख्य उद्देश्य के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। यह संघ मानव मात्र की शांति और मैत्री की लालसा का प्रतीक है। युद्ध की विभीषिका के विरुद्ध यह एक बांध है। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों में सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य विश्व शांति और सुरक्षा की स्थापित करना है। इसके अतिरिक्त युद्ध और विवाद के कारणों को दूर कर राष्ट्रों के बीच मैत्री भाव की स्थापना, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय एकता के लिए प्रयत्न, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की स्थापना तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाना इसके अन्य उद्देश्य हैं। विश्व में शांति स्थापित हो इसके लिए यूएनओ देशों के बीच प्रत्यक्षतः युद्ध को रोकने में कामयाब तो हुआ ही है, साथ ही यह संस्था इस बात पर विशेष बल देती है युद्ध मानव मस्तिष्क से आरंभ होती है, अतः ऐसे साधनों का विकास किया जाए जिससे मानव के दिमाग में युद्ध की बात कम से कम आए। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ अपने विभिन्न अभिकरणों के द्वारा जैसे यूनेस्को के द्वारा पूरे विश्व में शिक्षा एवं संस्कृति का विकास, यूनिसेफ के द्वारा बाल विकास, आईएलओ के द्वारा विश्व के श्रमिकों को बेहतर दिशा एवं उपयुक्त दशा बनाए रखने के लिए प्रयास, एफएओ, डब्ल्यूएचओ के द्वारा खाद्य समाधान, स्वास्थ्य समाधान, भूखमरी का निपटारा, यूएनएचसीआर, आईएईए

WTO, IBRD, CTBT इत्यादि उपायों से आंतरिक विकास, गरीबी, भूखमरी का समाधान, शिक्षा एवं व्यापार का विकास होता है। फलतः जागरूकता, आत्मनिर्भरता, सचेतता में वृद्धि होती है और आंतरिक स्तर पर शांति स्थापित होती है। जब अंतस्थ शांति के स्थापित होती है तो स्वभावतः अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करने में मदद मिलती है। इस कार्य में यूएनओ काफी सफल रहा है। इसकी सफलता इस बात से स्पष्ट होती है कि इसके अभिकरणों को कई बार नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर राल्फ बूचे 1947 में छिड़े अरब इजराइल युद्ध को समाप्त करने एवं समझौता कराने में मध्यस्थता। दूसरा UNHCR 1954 विश्व भर में शरणार्थियों को सहायता देने में उत्कृष्ट भूमिका हेतु। तीसरा यूनिसेफ 1965 बच्चों के जीवन सुरक्षा और विकास। चौथा ILO। पांचवा UNHCR 1991। छठा UNO एवं इसके महासचिव कोफी अन्नान 2001 मानवाधिकार के लिए कार्य करने तथा विश्व में संघर्षों को समाप्त करने के लिए। IAEA 2005 नाभिकीय शस्त्रों के प्रसार पर अंकुश लगाने हेतु। यूएनओ अपने विशिष्ट अंग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा देशों के आपसी संघर्ष या विवाद को कई मौके पर विवश कर शांति स्थापित करने में सफल रहा है, जैसे भारत और पाक के बीच सर क्रीक विवाद। इसके अतिरिक्त प्रत्यक्षता युद्ध को रोककर या युद्ध की संभावना को समाप्त कर देशों के बीच समझौता कर एवं देशों पर अपने शांति सेना के द्वारा दबाव डालकर शांति स्थापित करने में भी सफल रहा है। 1946 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ ने रूसी सैनिकों को ईरान से हटाने में विवश किया। इंडोनेशिया को डच साम्राज्यवाद के चंगुल से निकालकर स्वतंत्र बनाने का श्रेय यूएनओ को है। 1948 में कोरिया दो भागों में बट गया, उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया। 1950 में युद्ध शुरू हुआ, यूएनओ के प्रयास से 1953 में युद्ध समाप्त हो गया। 1956 में मिस्र में स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण के कारण अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां गंभीर हो गई थीं। इजराइल, फ्रांस और ब्रिटेन ने संयुक्त रूप से मिस्र पर आक्रमण कर दिया था। यूएनओ के प्रयास से युद्ध बंद हुआ और वह विश्व युद्ध में परिणत नहीं हो सका। भारत और पाक में कई बार युद्ध हुआ, उन युद्धों को रोकने में यूएनओ को सफलता मिली। 1958 में लेबनान संकट को दूर किया। 1960 में कांगो गणतंत्र की क्षेत्रीय एकता बनाए रखने में मदद किया। 1964 में साइप्रस में यूएनओ को यूनानी और तुर्की मूल के साइप्रस वासियों के बीच व्यापक युद्ध को रोकने में सहायता मिली। उपरोक्त तथ्य यूएनओ के सकारात्मक भूमिका को स्पष्ट करते हैं, किंतु कई बार यूएनओ अपने उद्देश्य को पाने में असफल भी रही है। फिलिस्तीन, इजराइल और अरब के बीच कोई स्थायी समझौता नहीं हो सका है, फलतः पश्चिमी एशिया में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। कश्मीर का प्रश्न अभी तक यूएनओ नहीं सुलझा सका है, जिसके कारण सीमावर्ती क्षेत्र आतंकवाद से ग्रस्त हैं एवं अशांत हैं। दक्षिण अफ्रीका के प्रवासी भारतीयों की समस्याओं को सुलझाने में अभी तक यूएनओ असफल रहा है, अभी भी रंगभेद बना हुआ है। अनेकों प्रयासों के बावजूद अभी तक राष्ट्रों का निशस्त्रीकरण नहीं हो सका है। आणविक हथियारों का निर्माण अधिकाधिक हो रहा है तथा प्रमुख राष्ट्रों के बीच शीत युद्ध जारी है। यूएनओ ने मानवाधिकारों तथा मूल स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इसने परतंत्र राज्य क्षेत्रों तथा उपनिवेशों को स्वतंत्र करा के तथा इस प्रकार के लोगों को आत्मनिर्धारण का अधिकार प्रदान करके महत्वपूर्ण कार्य किया है। ये सब बातें दर्शित करती हैं कि यूएनओ मानव की गरिमा को मान्यता देता है। इसने विश्व के अत्यधिक गरीब तथा असुविधा संपन्न लोगों को आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास में अभिवृद्धि किया है। राज्यों का लोकतांत्रिकरण,

0: शरणार्थियों का संरक्षण तथा पुनर्वास, बालकों के अधिकारों की मान्यता, महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव, शांति तथा विकास में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की अभिवृद्धि आदि ऐसे क्षेत्र हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि यूएनओ एक अपरिहार्य संस्था है तथा यह विश्व संघ या विश्व सरकार की भूमिका में कार्य कर रहा है। आज विश्व के समक्ष अनेक समस्याएं मुंह बाएं खड़ी हैं। परस्पर देशों में युद्ध सामग्री निर्माण की होड़ लगी हुई है। साम्यवादी, पूंजीवादी, साम्राज्यवादी और लोकतंत्रवादी विचारधाराओं के समर्थकों में खींचातानी हो रही है। निःशस्त्रीकरण हेतु प्रयास किए जा रहे हैं, इस हेतु सम्मेलन भी बुलाए जा रहे हैं। विश्व के कर्णधार इसमें भाग लेते हैं और उनके प्रस्ताव बनते बिगड़ते हैं। युद्ध के बादल आते हैं और गरजते प्रतीत होते हैं, लेकिन यूएनओ के प्रयास से सभी शिथिल पड़ जाते हैं। वास्तव में संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व शांति हेतु सक्रिय प्रयत्न किया है, जिसमें इसे बेहद हद तक सफलता मिली है। साथ ही साथ विश्व बंधुत्व तथा सह अस्तित्व की भावना के विकास में इसकी भूमिका नकारी नहीं जा सकती है। संक्षेप में, संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय विवादों को उग्र होने से रोकने के लिए एक सेफ्टी वॉल्व का काम करता है। रॉल्फ वुनवे के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख विशेषता यह है कि यह राष्ट्रों की बातचीत में व्यस्त रखता है। वे जितनी अधिक देर तक बात करते हैं उतना ही अधिक अच्छा है, क्योंकि उतने समय तक युद्ध टल जाता है।
1: आपन बिजनेस बढ़ावे खातिर लीही आकाशवाणी के सहयोग, देहियों के बुलंदियन के पाख।
2: आपको बिजनेस स्थानीय बा चाहे देश स्तर का, आकाशवाणी देले उपभोक्तन तक पहुँचे का विकल्प।
1: अब घर, दफ्तर चाहे दुकान पर बैठल करी आकाशवाणी के कोनो केंद्र खातिर विज्ञापन बुकिंग।
2: आकाशवाणी का चैनलन पर विज्ञापन देहल भइल सस्ता असुलभ।
1: तब बुकिंग खातिर संपर्क करी 8700014242 पर।
2: जी हाँ, नंबर बा 8700014242।
3: अभी हमने के सुनत रही जा अमित मुखर्जी से एक वार्ता। वार्ता के विषय रहे विश्व शांति में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका। ये अच्छा सा जानकारी खातिर अमित मुखर्जी जी के बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोता भाई बहन, पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शांति पूर्वक सहज जीवन दिवस, ये दोनों दिवस हमने के जीवन में ज्ञान, विज्ञान, मानवता और प्रेम के साथ आपसी भाईचारा के संदेश देला। जहां प्रकाश दिवस हमने के अंधकार से उजाला की ओर बढ़े के प्रेरणा देला, उन्हें शांतिपूर्वक सहज जीवन दिवस हमने के ई सिखावेला कि विभिन्नता के बावजूद भी हम सब मिलजुल के कैसे रह सकता नहीं जा। ता आई आज के यह विशेष कार्यक्रम के शुरुआत कर जाओ। हर साल 16 मई के पूरा दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनावल जाला। ए दिवस के मनावे के शुरुआत संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्था यूनेस्को द्वारा कैल गई रहे। यह दिन के उद्देश्य है लोग के प्रकाश और प्रकाश विज्ञान यानी लाइट साइंस के महत्व के बारे में जागरूक करना। हमनी के जीवन में प्रकाश के कितना महत्व बा ये हम सब कोई जानत नहीं जा। यदि प्रकाश न हो तो जीवन की कल्पना भी कठिन हो जाला। सूर्य के प्रकाश हमनी के ऊर्जा देला तो पौधा के भोजन बनावे में भी सहायता करेला और पृथ्वी पर जीवन के संभव बनावेला। प्रकाश केवल रोशनी ही ना देला बल्कि विज्ञान, तकनीक, शिक्षा, चिकित्सा और संचार के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा भूमिका निभावेला। आज फाइबर ऑप्टिक तकनीक

लेजर उपचार, सोलर ऊर्जा, मोबाइल इंटरनेट, कैमरा और आधुनिक चिकित्सा सब प्रकाश पर ही निर्भर बा। श्रोता भाई बहन, भारत जैसे कृषि प्रधान देश में भी प्रकाश के विशेष महत्व बा। सौर ऊर्जा के माध्यम से किसान सिंचाई कर रहल बानी जा। सोलर पंप, सोलर लाइट और सोलर ड्रायर जैसन उपकरण ग्रामीण जीवन के आसान बना रहल बा। आज गांव में भी सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली पहुंच रहल बा। एकरा से न केवल सौर ऊर्जा केवल ऊर्जा के बचत हो रहल बा, बल्कि पर्यावरण भी सुरक्षित हो रहल बा। प्रकाश हमनी के केवल बाहरी उजाला ही ना देला, बल्कि ज्ञान के भी प्रतीक है। हमनी के देश में कहल गइल बा, तमसो मां ज्योतिर्गमया, अर्थात हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। ई अंधकार केवल रोशनी के ही ना, बल्कि अज्ञानता, भेदभाव और नफरत के भी हो सकता। जब शिक्षा के प्रकाश फैलेला, तब समाज आगे बढ़ेला। श्रोता भाई बहन, एक शिक्षित समाज ही प्रगति कर सकता। जब बच्चा तक शिक्षा के प्रकाश पहुंचेला, तब उनकर भविष्य उज्जवल बनेला। आज डिजिटल शिक्षा, ऑनलाइन पढ़ाई और स्मार्ट क्लास जैसन सुविधा भी प्रकाश तकनीक की ही देन है। मोबाइल स्क्रीन, प्रोजेक्टर और इंटरनेट संचार सब प्रकाश विज्ञान पर ही आधारित बा। ऐसे हमनी के विज्ञान और तकनीक के प्रति जागरूक होके के चाहिए और नया पीढ़ी के भी वैज्ञानिक सोच अपनावे के खातिर प्रेरित करे के चाहिए। आज दुनिया ऊर्जा संकट और प्रदूषण जैसन समस्या के सामना कर रहल बा। ऐसन में सौर ऊर्जा एक बड़ा समाधान बन के सामने आयल बा। यदि हम सौर ऊर्जा के अधिक उपयोग करब, तब बिजली के बचत होई और पर्यावरण भी सुरक्षित रही। हमनी के अपना घर और गांव में ऊर्जा बचावे के आदत डाले के चाहिए। जैसे जरूरत न होके पर बिजली बंद करना, एलईडी बल्ब के उपयोग करना और प्राकृतिक रोशनी के अधिक से अधिक प्रयोग करना। छोटा छोटा प्रयास मिलके बड़ा बदलाव ला सकता। अब हमनी के बात कहल जाओ अंतर्राष्ट्रीय शांतिपूर्वक सहज जीवन दिवस के। ई दिवस भी हर साल 16 मई के ही मनावल जाला। ए दिवस के उद्देश्य बा दुनिया में शांति, सहिष्णुता, भाईचारा और आपसी सम्मान के बढ़ावा देना। आज दुनिया में अलग अलग भाषा, धर्म, संस्कृति और परंपरा के लोग रहे निजा। हमनी के सोच और जीवन शैली अलग अलग हो सकता, लेकिन मानवता हम सबके जोड़ के रखेला। शांतिपूर्वक सहज जीवन के अर्थ बा एक दूसरा के विचार के सम्मान करते हुए प्रेम और सद्भाव के साथ रहना। भारत विविधता के देश है। यहाँ अनेक धर्म, भाषा और संस्कृति बा, फिर भी एकता में अनेकता हमनी के पहचान है। हमनी के त्योहार, हमनी के परंपरा और हमनी के संस्कृति सबके साथ मिलजुल के रह के संदेश देला। गांव में आज भी लोग सुख दुख में एक दूसरे के साथ देवे नीजा और ये सहज जीवन के सबसे सुंदर मिसाल है। जब समाज में आपसी प्रेम और सहयोग होई, तब विकास के राह आसान हो जाला। श्रोता भाई बहन, जहां शांति होला वहां विकास होला। जहां हिंसा और नफरत होला वहां भय और अशांति फैलेला। आज सोशल मीडिया और तेज संचार के दौरान हमनी के बहुत सावधान रहे के जरूरत बा। कभी कभी अफवाह और गलत जानकारी समाज में तनाव पैदा कर देवेला। ऐसे हमनी के हमेशा सत्य के जानकारी पर विश्वास करे के चाहिए और एक दूसरा के प्रति सम्मान के भाव रखे के चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शांतिपूर्वक सहज दिवस पर हमनी के संकल्प लिहल जाओ कि सहिष्णुता और मानवता के पाठ हमनी के हमेशा पढ़त रहल जाई और

अब एक नजर आज मौसम पूर्वानुमान पर। कल के अधिकतम तापमान 38 डिग्री, न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 65% और न्यूनतम 20% रहे के संभावना पा। हवा की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा और पवन दिशा 90 रही। यही के साथ घड़ी के इशारा बा आप सबसे विदा लेबे के चलते चलते दही जा सुगिया बहिन के इजाजत। नमस्कार।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम गांव घर। एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब वक्त हो चुका है कार्यक्रम सांझ गीत का। कार्यक्रम सांझ गीत में अब आइए लेते हैं आनंद कुछ बेहतरीन भोजपुरी फिल्मी गीतों का। पहला भोजपुरी फिल्मी गीत हमने लिया है फिल्म विदाई से, आवाजें हैं उदित नारायण और इंदु सोनाली की। धनंजय मिश्रा के शब्द हैं और संगीत दिया है विनय बिहारी ने।

हमारे श्रोता सांगीत कार्यक्रम में अभी सुन रहे थे फिल्म प्रतिज्ञा का यह बेहतरीन भोजपुरी गीत। आवाजें थी कल्पना पटवारी और उदित नारायण की, शब्द थे विनय बिहारी के और संगीत दिया था राजेश रजनीश ने। श्रोताओं सांगीत कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं फिल्म साजन चले ससुराल से उदित नारायण और खुशबू जैन की आवाज में यह खूबसूरत भोजपुरी गीत। शब्द है प्यारे लाल यादव के और संगीत दिया है अशोक कुमार दीप ने।

कार्यक्रम में अभी आपने सुना फिल्म साजन चले ससुराल का यह भोजपुरी गीत। आवाजें थी उदित नारायण और खुशबू जैन की। प्यारे लाल यादव के गीत थे और संगीत दिया था अशोक कुमार। दीप ने कार्यक्रम का अगला गीत है बलमा बड़ा नादान फिल्म से। आवाज कल्पना पटवारी की है और संगीत है सुजीत कुमार का।

बलमा बड़ा नादान। जी हाँ श्रोताओं, अभी आपने इस फिल्म का यह भोजपुरी सुना। आवाज थी कल्पना पटवारी की। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं हेमलता की आवाज में। फिल्म का नाम है नदिया के पार। गीत और संगीत हैं रविंद्र जैन के।

श्रोताओ, अब आइए कार्यक्रम का अगला गीत हम सुनते हैं महेंद्र कपूर की आवाज में। फिल्म का नाम है जय संतोषी मां। कवि प्रदीप ने इस गीत को लिखा है और सी अर्जुन ने संगीत से नवाजा है।

सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंत में श्रोताओं, आइए सुनते हैं अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडेकर की आवाजों में फिल्म दुल्हा बाबू का यह गीत है विनय बिहारी के और संगीत है दुर्गा नटराज के।

एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। अब लीजिए पेश है सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास।

गुड इवनिंग रोहतास कार्यक्रम के आज के इस एपिसोड में सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है। श्रोताओं, आइए सबसे पहले हम एक नजर डाल लेते हैं रोहतास और कैमूर जिलों की आज की गतिविधियों पर। श्रोताओं, जिला प्रशासन रोहतास द्वारा जिले के सभी किसानों से अपील की गई है कि वे शीघ्र अपना किसान रजिस्ट्री पंजीकरण कराएं, ताकि सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कृषि योजनाओं एवं सुविधाओं का लाभ पारदर्शी एवं सरल तरीके से उन्हें मिल सके। जिलाधिकारी रोहतास श्रीमती उदिता सिंह ने कहा कि किसान रजिस्ट्री व्यवस्था किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे किसानों को उर्वरक खरीद, फसल अधिप्राप्ति, फसल बीमा, कृषि ऋण तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर और पारदर्शी तरीके से मिलेगा। उन्होंने बताया कि किसान रजिस्ट्री होने से किसानों को उर्वरक खरीद प्रक्रिया में काफी सुविधा होगी। किसान मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन खाद बुकिंग कर सकेंगे तथा क्यूआर कोड आधारित प्रणाली के जरिए अधिकृत दुकानों से आसानी से उर्वरक प्राप्त कर पाएंगे। इससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी एवं तकनीकी आधारित बनी। बीजापुर नक्सल विरोधी अभियान में शहीद हुए रोहतास के जवान दिलीप कुमार पासवान के आश्रितों को 21 लाख रुपए की अनुग्रह सहायता राशि रोहतास जिले के चेनारी प्रखंड अंतर्गत सेमरी गांव निवासी जवान दिलीप कुमार पासवान के परिजनों को बिहार सरकार की ओर से अनुग्रह सहायता राशि प्रदान की गई। यह सहायता राशि राज्य सरकार द्वारा शहीद जवान के परिवार के प्रति सम्मान, संवेदना एवं सहयोग के रूप में दी गई है। हम आपको बता दें कि सिपाही जीडी दिलीप कुमार पासवान आरक्षी केंद्र के बल संख्या 196 बल वाहिनी में पदस्थापित थे। 23 अप्रैल 2025 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के महादेव घाटी क्षेत्र में चलाए जा रहे नक्सली विरोधी अभियान के दौरान नक्सलियों द्वारा लगाए गए प्रेशर आईडी विस्फोट में वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घायल अवस्था में उन्हें बेहतर इलाज के लिए नई दिल्ली स्थित एम्स ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली थी। बिहार सरकार के सैनिक कल्याण निदेशालय के निर्देश के आलोक में शहीद जवान के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पूरी की गई। इस संबंध में अंचल अधिकारी चेनारी, भूमि सुधार उपसमाहर्ता सासाराम एवं अनुमंडल पदाधिकारी सासाराम द्वारा आवश्यक जांच एवं अनुशंसा की गई, जिसके उपरांत सहायता राशि की स्वीकृति प्रदान की गई। श्रोताओं, सचिव समाज कल्याण विभाग बिहार पटना के आलोक में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के मृत पेंशनधारियों को चिन्हित करते हुए इसे ई लाभार्थी पोर्टल के डाटाबेस से अपडेट करते हुए कॉमन सर्विस सेंटर CSC के माध्यम से निशुल्क जीवन प्रमाणीकरण दिनांक 22/11/2025 से प्रारंभ है। पेंशनधारियों के जीवन प्रमाणीकरण की प्रगति धीमी है। इसे जिलांतर्गत अभी भी सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों का जीवन प्रमाणीकरण हेतु कई लंबित हैं। श्रोताओं, भीषण गर्मी और लू से निपटने के लिए कैमूर जिला प्रशासन मुस्तैद है। पेयजल और पशु स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा आपदा विभाग से संबंधित तथा जिले में लू की स्थिति, पेयजल आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाओं और पशु संरक्षण के लिए किए जा रहे कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। जिले के विभिन्न नगर निकायों भभुआ, मोहनिया, कुदरा, हाटा, रामगढ़ में अब तक कुल 136 पियाऊ केंद्रों की व्यवस्था की गई है। लोक के स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा जिले में खराब पड़े 1014 चापाकलों की मरम्मत की जा चुकी है।

0: किया और 29 टैंकरों के माध्यम से जलापूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। नगर परिषद भभुआ में 26 जलापूर्ति योजनाओं के जरिए पेयजल पहुंचाया जा रहा है। तो श्रोताओं, गुड इवनिंग रोहतास कार्यक्रम में अभी हम एक नजर डाल रहे थे कैमूर और रोहतास जिले की आज की गतिविधियों पर। अब हम सुनेंगे एक बेहतरीन फिल्मी गीत, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं यह संदेश।
1: दस लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
3: आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: तो श्रोताओं, गुड इवनिंग रोहतास में आइए सुनते हैं एक बेहतरीन गीते आवाज राहत फतेह अली खान की। फिल्म का नाम है रेड। तनिष्क के बागची ने संगीत से सजाया है और मजरू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा है।

तो श्रोताओं, इसी गीत के साथ सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास अब यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार।

एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:25 होने वाले हैं। अब थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल हमारे आकाशवाणी के पटना केंद्र से।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। नीट यूजी की रद्द परीक्षा का 21 जून को होगा आयोजन, अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित होगी परीक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल डीजल बचाने की अपील का दिखने लगा असर, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत कई मंत्री पैदल अपने कार्य

0: तय पहुंचे। भाजपा विधायक संजीव चौरसिया को बिहार विधानसभा में सत्तारूढ़ गठबंधन दल का मुख्य सचेतक मनोनीत किया गया और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने क्रिकेटर ईशान किशन को उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि प्रदान की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को 14 जून तक प्रवेश पत्र उपलब्ध करा दिए जाएंगे। श्री प्रधान ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कम्प्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी।
1: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारी विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने थोड़ी एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए, 2 से शुरू होगा 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
0: श्री प्रधान ने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अपनी पसंद का शहर चुनने का अवसर मिलेगा।
2: जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी 0 फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए हम उसकी दायित्व ले रहे हैं। लेकिन प्रथम दृष्टया जो एनटीए ने तय किया है कि हम 1 सप्ताह विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते हैं, ये विंडो खुला रहेगा।
0: शिक्षा मंत्री ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भविष्य में किसी भी तरह की अनियमितता को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने संबंधी उपाय किए जाएंगे। वैश्विक ईंधन संकट के बीच तेल विपणन कंपनियों ने देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। पेट्रोल की कीमतों में प्रति लीटर 3.14 रूपये जबकि डीजल की कीमतों में 3.11 रूपये प्रति लीटर की वृद्धि हुई है। नई दरें आज से प्रभावी हो गई है। अब पेट्रोल की कीमत पटना में 108.67 रूपये प्रति लीटर हो गई है, वहीं डीजल की कीमत 94.65 रूपये प्रति लीटर हो गई है। इसके साथ ही सीएनजी के दामों में भी 2 रूपये प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी अस्थायी है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि वैश्विक स्थितियां सामान्य होने पर पेट्रोलियम उत्पादों के दामों में कमी आ जाएगी।
3: इस कदम को सरकार ने अत्यंत मजबूरी के हालात में उठाया है। ये टेम्पररी और अस्थायी स्थिति है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि जैसे ही खारी युद्ध थोड़ा रुकेगा या बंद होगा तो स्थिति में सुधार हो जाए।
0: खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि सरकार एलपीजी पर निर्भरता कम करने के लिए अधिक से अधिक घरों तक सीएनजी कनेक्शन पहुंचाने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है।
4: अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है और हम लोग ज्यादा से ज्यादा ये जो गैस का इश्यूज है उसके लिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा घरों में कनेक्शन बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और अभी रिव्यू हुआ है उसमें हम लोग 10,000 तक पहुंचेंगे पर मंथ कनेक्शन देने। ये भी पॉलिसी लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां पर हम अपार्टमेंट बनाते हैं तो हम फायर का जिस तरह से परमिशन लेते हैं उसी समय हम लोग गैस कनेक्शन की कनेक्टिविटी को भी मैंडेटरी करें।
0: विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने कहा कि वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए सरकार को मजबूरी में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी करनी पड़ी है।
5: खाड़ी देशों में जो युद्ध की स्थिति बनी हुई जाकर के लगातार युद्ध हो रहे हैं उसका असर दुनिया पर हो रहा है, उसका असर डीजल पर हो रहा है, पेट्रोल पर हो रहा है। इसीलिए देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील किया है होम टू वर्क, सोना न लोग खरीदे जाकर और कम से कम डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल करें, खेतों में खादों का प्रयोग कम करें, जैविक खेती को बढ़ावा दें। संकट घड़ी में हम सबको मिल करके देश के माननीय प्रधानमंत्री खड़ा होना जाकर।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल डीजल बचाने की अपील का बिहार में असर दिखने लगा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने सरकारी आवास से सचिवालय तक पैदल पहुंचे। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश भी पैदल ही अपने कार्यालय पहुंचे। वहीं शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ई रिक्शा से जबकि गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार मोटरसाइकिल से अपने कार्यालय पहुंचे। सचिवालय के अधिकारियों और कर्मियों ने भी कार्यालय पहुंचने के लिए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग किया। इधर खगड़िया के जिलाधिकारी नवीन

0: कुमार और पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार साइकिल से अपने कार्यालय पहुंचे। गया स्टेशन परिसर में आरपीएफ के जवानों ने गाड़ियों की जगह साइकिल से गश्त की। भाजपा विधायक संजीव चौरसिया को बिहार विधानसभा में सत्तारूढ़ गठबंधन दल का मुख्य सचेतक मनोनीत किया गया है। वहीं बरौली से जदयू के विधायक मंजीत कुमार सिंह उप मुख्य सचेतक होंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार को पत्र भेजा है। परिहार विधायक गायत्री देवी, गोविंदगंज के विधायक राजू तिवारी और पिपरा विधायक राम विलास कामत समेत 9 विधायकों को सचेतक की जिम्मेदारी दी गई है। इधर विधान परिषद में जदयू के संजय कुमार सिंह उर्फ गांधी जी मुख्य सचेतक मनोनीत किए गए हैं। जनक राम को उप मुख्य सचेतक और नीरज कुमार तथा रीना देवी को सचेतक बनाया गया है। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के कई वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 2021 बैच के आईएएस टॉपर शुभम कुमार को पटना का उप विकास आयुक्त बनाया गया है। विनोद सिंह गुंजियाल को शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। के सेंथिल कुमार को श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। राजेश कुमार को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के प्रधान सचिव जबकि पंकज कुमार पाल पथ निर्माण विभाग के सचिव होंगे। अभय कुमार सिंह को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का सचिव बनाया गया है। दीपक आनंद को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। प्रेम सिंह मीणा मुंगेर प्रमंडल के आयुक्त के साथ भागलपुर प्रमंडल के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे। हिमांशु कुमार राय को दरभंगा प्रमंडल के साथ कोसी प्रमंडल के आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @news_पटना को फॉलो कर सकते हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य ईशान किशन को उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि प्रदान की। मुख्यमंत्री ने ईशान किशन को उनके सफल क्रिकेट करियर के लिए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविन्द्रन शंकरण, खेल विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर पी राजेंद्र सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। एकलव्य आवासीय खेल प्रशिक्षण केंद्र और जिला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में दाखिले के लिए आज से सिलेक्शन ट्रायल शुरू हो गया है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविन्द्रन शंकरन ने बताया कि ट्रायल 22 मई तक चलेगा। उन्होंने बताया कि एकलव्य प्रशिक्षण केंद्र में दाखिले के लिए 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के जबकि जिला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में दाखिले के लिए 16 से 18 वर्ष आयु वर्ग के खिलाड़ी भाग ले सकते हैं।
2: 15 मई से लेकर 22 मई तक एकलव्य आवासीय केंद्र एवं डिस्ट्रिक्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए ट्रायल्स का आयोजन किया जा रहा है। एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल के लिए वॉलीबॉल एवं वाटर स्पोर्ट्स का ट्रायल्स होगा और डिस्ट्रिक्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टेक्वांडो, कबड्डी एवं बैडमिंटन विधाओं में ट्रायल्स होगा। एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल के लिए आयु वर्ग 12 से 14 साल तक का है और डिस्ट्रिक्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए आयु वर्ग 16 से 18 साल तक है।
0: राज्य सरकार जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए युवा किसानों को प्रोत्साहित करेगी। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पटना में कृषि विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि जैविक खेती में बेहतर काम करने वाले युवाओं को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में 5700 हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती का लक्ष्य रखा गया है।

0: योजना से जुड़े किसानों को 4000 रूपये प्रति एकड़ की दर से अनुदान दिया जायेगा। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व बिहार में अधिकांश स्थानों पर बारिश का पूर्वानुमान है। विभाग ने कहा है कि इस दौरान मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ धूल भरी आंधी चलने की भी आशंका है।
1: दिनांक 16 मई राज्य के उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर आज औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, कैमूर, नालंदा, नवादा और रोहतास जिले में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने सीतामढ़ी के पुपरी नगर परिषद कार्यालय में पदस्थापित कनीय अभियंता विजय कुमार शर्मा को 1,45,000 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी एक संवेदक से रिश्वत ले रहा था। गोपालगंज की एमपी एमएलए अदालत ने जदयू विधायक अनंत सिंह को हथियार प्रदर्शन के मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने इस मामले में पुलिस से केस डायरी तलब की है। अब एक महत्वपूर्ण सूचना। एग्री स्टैक योजना के तहत फार्मर आईडी बनाने में सुस्ती बरतने के आरोप में पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी ने फेनहारा, पिपरा, कोठी और वन कटवा के प्रखंड कृषि पदाधिकारियों के वेतन पर रोक लगा दी है। सुपौल जिले के जदिया थाना से पुलिस ने 1 किलो 440 ग्राम मादक पदार्थ स्मैक के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं भागलपुर जिले के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने मादक पदार्थ स्मैक के साथ 1 युवक को गिरफ्तार किया। मधुबनी जिले में रसोई गैस वितरण में अनियमितता बरतने के आरोप में 4 गैस एजेंसियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है। सहरसा जिले के कासनगर थाना क्षेत्र में एक ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार पिता पुत्र की मौत हो गई। भोजपुर जिले के महुली गंगा घाट पर धार्मिक अनुष्ठान के दौरान गंगा जी में 2 सगे भाई डूब गए। इनमें से एक का शव बरामद कर लिया गया है। एक लापता की तलाश की जा रही है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सल विरोधी अभियान में शहीद हुए रोहतास के चिनारी प्रखंड के सेमरी गांव निवासी सीआरपीएफ जवान दिलीप कुमार पासवान के आश्रितों को राज्य सरकार ने 21 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की है। वरीय उप समाहर्ता ओम प्रकाश लाल और अंचलाधिकारी ने शहीद जवान की पत्नी अनिता देवी को राशि सौंपी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नीट यूजी की रद्द परीक्षा का 21 जून को होगा आयोजन। अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित होगी परीक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल डीजल बचाने की अपील का दिखने लगा असर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत कई मंत्री पैदल अपने कार्यालय पहुंचे। भाजपा विधायक संजीव चौरसिया को बिहार विधानसभा में सत्तारूढ़ गठबंधन दल का मुख्य सचेतक मनोनीत किया गया। और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने क्रिकेटर ईशान किशन को उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि प्रदान की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: और इस गीत के बाद

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है मधुबनी जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता आकिल हुसैन।
2: मधुबनी जिले में भारतीय जनगणना 2027 की तैयारी में लापरवाही के आरोप में जिला अधिकारी आनंद शर्मा ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए जिले के 118 पंचायत सचिवों को तत्काल प्रभाव से लंबित कर दिया। लंबित पंचायत सचिवों पर बिना अनुमति के लंबे समय तक गैर हाजिर रहने का आरोप है। इधर जिला अधिकारी ने जिले भर की सरकारी और सार्वजनिक जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए जिलावासियों से सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जमीन आम लोगों की धरोहर है और इसका अतिक्रमण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
3: सरकारी एवं सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण करा वाला अतिक्रमणकारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कैल जाए।
4: अतिक्रमण मुक्त वातावरण केवल प्रशासन जिम्मेवारी नहीं अपितु समाजक सामूहिक जिम्मेदारी सेवो आई।
2: मुख्यमंत्री समाज चौधरी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के मंत्रिमंडल में जिले के 3 विधायकों को जगह मिली है। यदि नेता और फुलपाज विधानसभा क्षेत्र से विधायक शीला कुमारी को विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक नीतीश मिश्रा को नगर विकास एवं आवास तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, जबकि खजौली विधानसभा क्षेत्र से विधायक अरुण शंकर प्रसाद को श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण, युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का मंत्री बनाया गया है। जिले के इन 3 नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह मिलने से जिलावासियों में खुशी की लहर है। राज्य सरकार द्वारा किसानों को डिजिटल पहचान देने के उद्देश्य से मधुबनी जिले में फार्मर रजिस्ट्रेशन के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। डिजिटल फार्मर आईडी के माध्यम से किसानों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे और पारदर्शी तरीके से मिलेगा। जिला प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि 30 जून तक चलने वाले फार्मर रजिस्ट्रेशन अभियान में अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य कराएं। ऊर्जा संकट के बीच जिले में घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को गैस आपूर्ति में हो रही अनियमितताओं और लापरवाही में रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर जांच टीम गठित की गई। टीम ने जांच के बाद 4 गैस गोदामों को तत्काल प्रभाव से सील कर उनके संचालकों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। इधर जिलाधिकारी घरेलू गैस उपभोक्ताओं से अपील की है कि जिले में घरेलू गैस भरपूर मात्रा में उपलब्ध है, उपभोक्ता घबराहट में बुकिंग न करें। मधुबनी जिले के ऐतिहासिक धार्मिक महत्व के 2 प्रमुख स्थानों हालांकि प्रखंड स्थित विश्वामित्र स्थान और कल्याणेश्वरी महादेव मंदिर के विकास कार्य के लिए बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड द्वारा टेंडर जारी कर दिया गया है। इससे मधुबनी जिले के पर्यटन विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक पहल माना जा रहा है। जिलाधिकारी ने कहा कि दोनों स्थानों के सुंदरीकरण और आधुनिक पर्यटन सुविधाओं के विकास से न केवल मधुबनी जिले में पर्यटन गतिविधियों को नया आयाम मिलेगा बल्कि पूरे बिहार के धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को भी व्यापक बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। जिले में मानसून से पहले संभावित बाढ़ प्रभावित इलाकों में जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। जल संसाधन विभाग के आदेश पर बेनीपट्टी के मेघवन पंचायत भवन के समीप बाढ़ के कटाव स्थल की मरम्मति कराई जा रही है। उक्त स्थल को मजबूत करने के लिए करीब 44 लाख रुपए की लागत से 60 मीटर क्षेत्र में कटाव रोधी कार्य कराया जा रहा है। गौरतलब है कि विगत वर्ष इसी स्थल पर देर रात बाढ़ टूट जाने से मेघवन और नजरा सहित आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इधर जिले में आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान

0: लेकर जिला प्रशासन पंचायतों में सहयोग शिविर आयोजन करने की तैयारी में जुट गई है। 19 मई से जिले की विभिन्न पंचायतों में सहयोग शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर जिला प्रशासन जागरूकता अभियान चला रहा है। जिला अधिकारी ने जिला वासियों से अपील की है कि वे बड़ी संख्या में शिविर में भाग लेकर अपनी समस्याओं संबंधी अधिकारियों के समक्ष रखें। गौरतलब है कि बीते दिनों मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सहयोग शिविर के आयोजन को लेकर दिशा निर्देश जारी किए थे। बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड पटना ने मधुबनी जिले में दर वक्फ संपत्तियों को लेकर बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। बोर्ड की ओर से जिले के विभिन्न अंचल अधिकारियों को पत्र जारी कर वक्फ भूमि की स्थिति, अतिक्रमण, खरीद बिक्री, अवैध जमाबंदी संबंधी विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। जारी पटन में रहिका, पंडौर, खजौली, कलवाही, जयनगर, बासोपट्टी, बेनीपट्टी, बिस्पी, हरलाखी, मधवापुर, घोगड़िया और मधेपुर के अंचल अधिकारियों को जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि जिला औकाफ कमेटी मधुबनी के सदस्य अधिवक्ता महताब आलम द्वारा आवेदन दिया गया है, जिसमें जिले की विभिन्न वक्फ भूमि पर अवैध जमाबंदी किए जाने की शिकायत की गई है।
1: अभी आप सुन रहे थे मधुबनी जिले की हलचल, इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता आकिल हुसैन।
2: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल हमारे आकाशवाणी के पटना केंद्र से। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब वक्त हो चला है ईमेल आधारित फरमाइशी नगमों का कार्यक्रम ई मनपसंद का, तो देर किस बात की, चलिए श्रोताओं शुरू करते हैं फरमाइशी नगमों का सिलसिला। कार्यक्रम है ई मनपसंद।

फरमाइशी नगमों के कार्यक्रम ई मनपसंद के आज के इस एपिसोड में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। गीतों के आज के इस सफर में आप हैं अपने रेडियो साथी रवि भूषण के साथ। सभी श्रोताओं का आज के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा स्नेहिल नमस्कार। तो चलिए श्रोताओं, अब आपके इस इंतजार की घड़ी को खत्म करते हुए शुरू करते हैं गानों का सिलसिला। सबसे पहले हमने लिया है फिल्में नाइट इन लंदन से यह गीत, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने। आनंद बख्शी साहब ने इसे संगीत से शब्दों में पिरोया है और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत। प्यारेलाल ने पसंद करने वाले आप सभी हैं। पंचायत दिनारा से जयराम सिंह, सुषमा सिंह, कंचन मिश्रा, श्वेता रानी पांडे, रुचि कुमारी, मदनेश्वर सिंह, प्रभात कुमार, पुरुषोत्तम सौरभ, अर्पित, हर्षित, वैभव, सीतामुनि देवी, जयराम बिंद और वीरेंद्र पांडे। तो आप सबों की पसंद पर फिल्म नाइट इन लंदन का यह खूबसूरत गीत है।

श्रोताओं, ई मनपसंद कार्यक्रम में अभी आपने जो गीत सुना उसे हमने लिया था फिल्म में पाकीजा से। आवाज लता मंगेशकर की थी, शब्द थे कैफी आजमी साहब के और संगीत दिया था गुलाम मोहम्मद ने। पसंद करने वाले आप सभी थे गढ़नोखा लालगंज रोहतास से राजकिशोर सिंह बड़क सिंह चौहान, ग्राम खरवते गढ़नोखा से मोती माला गुप्ता विजेंद्र पासवान और लाल बिहारी सिंह। इसी गीत को सुनने के लिए ईमेल किया है नागचुन रोड संजय कॉलोनी खांडवा से अब्दुल गफ्फार डावर खुशनसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर और राजेंद्र कटारे। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी और पायल जोशी।

आकाशी सासाराम से सकीबा, आलिया, इब्राहिम, कमाल, मिराज, निसार, पंकज कुमार। छोटी बलिया फिल्म नगरी मुंबई से अहमद भाई फूलवाले, दुखनी सदाफारजू, जूही इकबाल फूलवाले, इमरान अहमद फूलवाले। कापसहेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से आमना नसरीन बागवान, आसमा परी, रबिया मंतशा, आशु अहमद फूलवाले और समस्त फूलवाले परिवार। श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं फिल्में राम बलराम का यह बेहतरीन गीत। आवाजें हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की, शब्द हैं आनंद बख्शी साहब के और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने। पसंद करने वाले आप सभी हैं दीवाना रेडियो लिसनर्स क्लब जमानिया जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक के जायसवाल, स्वाति जायसवाल, गमहरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार जायसवाल, आर्य कुमार जायसवाल, जमानिया रेलवे स्टेशन से एसपी जायसवाल, डिंपल जायसवाल, आशुतोष जायसवाल और अभिनव जायसवाल। सेक्टर 67 है मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप। कालका से सुपचंद्र बजाज, साहिल बजाज और भिट्टा बजाज। नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी से अकरम हुसैन, प्रिंस डाकबाबू, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा। कुवात बिहार से शेख जफर हसन, नरगिस जफर। कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान और निकहत परवीन। तो आप सबों की फरमाइश पर लीजिए पेश है यह खूबसूरत फिल्म जिसे हमने लिया है फिल्म राम बलराम से।

अभी आपने सुना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में फिल्म राम बलराम का यह गीत, जिसे लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से और हमारे श्रोता इस वक्त सुन रहे हैं ईमेल आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम ई मनपसंद। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म तेजाब से। आवाजें हैं अनुराधा पांडवाल, अमित कुमार और साथियों की। जावेद अख्तर शाहब ने इस गीत को लिखा है और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। पसंद करने वाले आप सभी हैं ओम रेडियो श्रोता संगे कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़, साई गायकवाड़, गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नहावकर, निर्मला नहावकर और विशाल नहावकर, मलकापुर से नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे और आशीष मुहेरकर, कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिया नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुर कला जिला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय, पार्थ रेडियो क्लब छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश।

श्रोताओं, ई मनपसंद में अभी आपने सुना फिल्म तेजाब का यह बेहतरीन गीत। आवाजें थी अनुराधा पौंडवाल, अमित कुमार और साथियों की, शब्द थे जावेद अख्तर साहब के और संगीत निर्देशन था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म में दीवाना से, आवाज दी है कुमार सानू और अलका याग्निक ने। समीर ने इस गीत को लिखा है और धुन बनाई है नदीम श्रवण ने। पसंद करने वाले आप सभी हैं पाकीजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अकलम खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। करणवीर हाउस से भूचो कैंचिया बटिंडा पंजाब से परम सिंह जौड़ा, मनजीत कौर जौड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप सीमू, एकम दमन और अभिजीत। इसी गीत को सुनने के लिए हमें ईमेल किया है सासाराम के खिलनगन से राजेश कुमार, रजनीश कुमार, राकेश कुमार, टुन्नू और धीरज कुमार मौर्या।

कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए सुनिए, किशोर कुमार और मन्ना डे की आवाजों में। शब्द है मजरू सुल्तानपुरी के और संगीत दिया है एसडी वर्मन ने। पसंद करने वाले आप सभी हैं कबीरी रेडियो श्रोता संघ डोडी लोहारा से, बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी पूजा तामुरिया, राधिका और प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अल कबीर। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया। बाजू

0: जो समझाए उसी की मची धूम आ जो समझाए उसी की मची धूम
1: hey! जो समझा उसी की मची धूम जो समझा उसी की मची धूम
0: बाजू।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म रोटी से। आवाजें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, आनंद बख्शी के बोल हैं और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। पसंद करने वाले आप सभी हैं गांव फ्रांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र कुमार डूडी।

तो श्रोताओं, इसी के साथ ईमेल आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम ई मन पसंद अब यहीं संपन्न होता है। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। फरमाइशी गानों का यह सिलसिला अब यहीं होता है खत्म। आज का यह गीतों भरा सफर आपने तय किया अपने रेडियो साथी रवि भूषण के साथ। अब हमें दीजिए इजाजत। कार्यक्रम के अगले एपिसोड में आप सबों की फरमाइशी गीतों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, हमारी स्टूडियो की घड़ी में अब 8:45 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे समाचार संध्या हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में आयोजित सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और

0: आतंकवाद आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर जोर दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ आज उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है और उनको फ्री ओपन और सेफ बनाए रखा, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विजन में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
0: आकाशवाणी से बातचीत में यूएई में भारत के दूत दीपक मित्तल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई में ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग को गहरा करने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं।
3: प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान कई रणनीतिक घोषणाएं की गई। भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और भारत तथा संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करने के लिए दीर्घकालिक निर्णय लिए गए। आज नेताओं के बीच हुई चर्चाओं में प्रौद्योगिकी के विषय पर भी बातचीत हुई। भारत में 8 एक्साफ्लॉप सुपर कम्प्यूट सुविधा स्थापित करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही भारत के वादिना में जहाज मरम्मत इकाई विकसित करने में साझेदारी करने का यूएई का निर्णय भी शामिल है।
0: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में शुक्रवार देर रात नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा न केवल दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि हाल ही में संपन्न इंडिया यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के संदर्भ में पूरे यूरोप पर असर डालने वाली साबित होगी। व्यापार की दृष्टि से नीदरलैंड्स भारत का 11वां बड़ा साझेदार है। दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार गत वर्ष $27.8 बिलियन का रहा है। निवेश के मामले में भी नीदरलैंड्स चौथा बड़ा निवेशक है। प्रधानमंत्री अपने इस महत्वपूर्ण दौरे के दौरान नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब यतिन के साथ वार्ता करेंगे एवं डच राजा विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी शिष्टाचार भेंट करेंगे। शनिवार को प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स में कम्युनिटी इवेंट को संबोधित करेंगे एवं नीदरलैंड्स की प्रतिष्ठित कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। नीदरलैंड्स से आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही गई। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनीतिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। इसमें संघर्ष के मूल कारणों को संबोधित करना भी शामिल है। मंत्रियों ने बहुपक्षवाद को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता पर बल दिया। नई दिल्ली में बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध मामलों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि ब्रिक्स के सभी सदस्य सहयोगी देशों ने स्थिरता के निर्माण के लिए भारत की अध्यक्षता की

0: प्राथमिकताओं का समर्थन किया।
1: ब्रिक्स के सभी सदस्य और साझेदार देश लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के निर्माण की थीम पर भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं की सराहना और उनका समर्थन करते हैं। पिछले दो दिनों में हुई चर्चाओं और इन विचार विमर्श के आधार पर हमने एक अध्यक्षता वक्तव्य और एक परिणाम दस्तावेज जारी किया है। इसमें ब्रिक्स की रणनीतिक साझेदारी के तीन स्तंभों के अंतर्गत आने वाले लगभग सभी विषयों पर ब्रिक्स सदस्यों की साझा स्थिति को दर्शाया गया है।
0: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति स्थापना में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री अराग्ची ने कहा कि ईरान से जुड़े किसी भी मामले का सैन्य समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सभी जहाजों को गुजरने में मदद करने के लिए तैयार है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: वकील के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टॉक सीरीज नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाश अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। इससे पहले गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों में से 3 जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 नासिक से है। सभी आरोपियों को दिल्ली की अदालत ने 7 दिन के पुलिस हिरासत में भेज दिया है। कई अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आज ही कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है।
2: फ्यूज जो होता है वह किसी भी गोला बारूद का सबसे यह इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, चाहे आर्टरी शेल हो, बम हो या कोई भी युद्ध सामग्री हो। बिना भरोसेमंद इलेक्ट्रिक फ्यूज के सब बेकार है। यहाँ बनने वाले अत्याधुनिक फ्यूज हमारी सेनाओं को ताकत देंगे और यह प्रोजेक्ट हमारी एमिनेशन मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता का एक नया चैप्टर जोड़ेगा।
1: राजस्थान के मुख्यमंत्री बजेन्द्र शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
3: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है, 6 गुना वृद्धि। और भारत से एक्सपोर्ट होने वाली कमोडिटीज में आज मोबाइल फोन सबसे पहली कमोडिटी बन गई है और इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट्स इस पिछले दशक में 11 गुना बढ़े हैं।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज से ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इनमें अलग अलग दिन वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कार पूलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। ये निर्णय ईंधन की खपत कम करने के केंद्र सरकार के व्यापक प्रयासों के अनुरूप है।

0: दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया 30 जून से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि यह प्रक्रिया 29 जुलाई तक चलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ के अलग अलग हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। कोंकण और गोवा में मौसम के अत्यधिक गर्म और उमस भरे रहने का पूर्वानुमान भी जारी किया गया है। विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान जताया है। अगले दो दिन केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के 26 मई तक आने की संभावना है। केरलम में मानसून के आगमन की सामान्य तिथि 1 जून है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में आज लगभग 0.2% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 161 अंक फिसलकर 75,238 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 46 अंक डूबा और 23,644 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 21 पैसे कमजोर होकर 95.97 रुपए के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
0: भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में 11वें सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीतकर कुल 5 पदकों के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। भारत पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। अपर्णा दहिया और शिवानी ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक जीते हैं। इससे पहले एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी में भारत ने 9 स्वर्ण 6 रजत और 12 कांस्य सहित कुल 27 पदक जीते। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 127 रन बना लिए हैं। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं के 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आजीकर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: समाचार संध्या का यह अंक अभी आप सुन रहे थे हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 9 बज चुके हैं। अब आइए लेते हैं आनंद भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम है लोकधारा। पहला लोकगीत आरती माला की आवाज में।

लोकधारा में अभी आपने सुना, यह लोकगीत आवाज थी आरती माला के। अब आइए टुकू पाठक की आवाज में सुनते हैं यह भोजपुरी लोकगीत।

भरत सिंह भारती की आवाज में अभी आपने सुना यह देशभक्ति भोजपुरी लोकगीत। अगला कार्यक्रम बंदगी बस थोड़ी देर में।

एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 9:15 हो चुके हैं। वक्त हो चला है कार्यक्रम बंदगी का। बंदगी कार्यक्रम में आइए सुनते हैं एक के बेहतरीन कव्वाली। आवाजें हैं चांद कादरी और अफजल चिश्ती के, शब्द हैं कमर अमीनी के और संगीत दिया है चांद कादरी और अफजल चिश्ती ने।

चांद कादरी और अफजल चिश्ती की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदगी। इसी के साथ वंदगी कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 9:30 हो चुके हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के फनकार हमारे विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखिए सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल स्वर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

नमस्कार, कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के फनकार उस जगमगाती स्माइल के नाम जिसके जादू से बचना मुश्किल है।

0: कुछ अलग ही है उनका हर अंदाज।
1: ये निगाहें नश्तर, ये होंठ कौसर, मेरी आगोश में होश भी बेहोश होगा।
0: तो आइए मिलते हैं द गॉर्जियस सुपर टैलेंटेड डांसिंग डीवा माधुरी दीक्षित से।

की लाडली और घर में सबसे छोटी सबकी दुलारी माधुरी दीक्षित का जन्म 15 मई 1967 को मुंबई में हुआ। नृत्य के प्रति जन्मजात रुझान का असर था जो नन्ही माधुरी संगीत सुनते ही ठुमकने लगती। 3 साल की उम्र से ही उन्होंने कथक सीखना आरंभ किया। कुछ ही वर्षों में कथक की बारीकियां उनके नृत्य में नजर आने लगी। जल्दी उनकी डांस परफॉर्मेंस सराही जाने लगी और बतौर कथक नृत्यांगना उन्हें स्कॉलरशिप मिली। उस वक्त वो सिर्फ 9 साल की थी।

पढ़ाई के साथ साथ माधुरी दीक्षित कल्चरल एक्टिविटीज में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करती। स्कूली शिक्षा के बाद माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनने के उद्देश्य से उन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया। कुछ ऐसे संयोग बने कि उन्होंने हिंदी फिल्मों के रुपहले संसार में किस्मत आजमाने का मन बना लिया। वो साल था 1984 जब राजश्री प्रोडक्शंस के बैनर तले उनकी पहली फिल्म रिलीज हुई, अबोध। इस फिल्म में उनके साथ थे बंगाल के अभिनेता

अबोध को दर्शकों का प्यार तो नहीं मिल सका, लेकिन माधुरी दीक्षित को मिली आलोचकों की प्रशंसा। आने वाले समय में माधुरी दीक्षित की कई फिल्में आईं। आवारा बाप 1985 में, स्वाति, हिफाजत और उत्तर दक्षिण 1987 में, 1988 में उनकी एक साथ चार फिल्में रिलीज हुईं, मोहरे, खतरों के खिलाड़ी, दयावान और तेजाब। फिल्म तेजाब में फिल्म हिफाजत के बाद एक बार फिर उनके साथ नजर आए अनिल कपूर। तेजाब की मोहिनी ने माधुरी दीक्षित को रातों रात स्टार बना दिया।

1989 में कई सितारों से सजी फिल्म वर्दी में उनकी जोड़ी जैकी श्रॉफ के साथ जमी। इसी साल आई सुभाष घई की फिल्म राम लखन में एक बार फिर अनिल कपूर के साथ उनकी जोड़ी खूब पसंद की गई।

वक्त के साथ सफलता की सीढ़ियां चढ़ती माधुरी दीक्षित अलग अलग फिल्मों में अलग अलग किरदारों में फैंस के दिल में अपनी जगह बनाती गईं। मल्टी स्टारर फिल्म त्रिदेव की जया माथुर हो या प्रेम प्रतिज्ञा की भोली भाली लक्ष्मी राव या फिर परिंदा की पारो, रोल छोटा हो या बड़ा, माधुरी दीक्षित के अभिनय की छाप गहरी होती गई।

90 के दशक में माधुरी दीक्षित के करियर का एक नया दौर शुरू हुआ। 1990 में आई फिल्म कृष्ण कन्हैया के बाद फिल्म दिल की जबरदस्त कामयाबी ने उन्हें शिखर पर पहुंचा दिया। आमिर खान के साथ उनकी इस फिल्म के लिए उन्हें पहला फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला।

अपनी फिल्मों के जरिए माधुरी दीक्षित उस नए जमाने की लड़की की पहचान बन गई, जो खूबसूरत और स्टाइलिश होने के साथ अकलमंद भी है, आजाद ख्याल है और उसूलों की पक्की है। थानेदार, 100 डेज, साजन जैसी फिल्मों ने ये साबित कर दिया कि परफेक्ट डांसिंग मूव्स और खूबसूरती के अलावा माधुरी दीक्षित में कमाल की अभिनय

1992 में आई फिल्म बेटा, जिसमें एक बार फिर माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर की जोड़ी नजर आई। फिल्म जबरदस्त हिट हुई और माधुरी दीक्षित को मिला दूसरा फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड।

0: अपने अभिनय से हर किरदार को यादगार बनाने वाली माधुरी दीक्षित 90s की बॉक्स ऑफिस क्वीन बन गईं। फिल्म थिएटर से उतरने के बावजूद उनका रोल जहन में हमेशा ताजा रहा। भला कौन भूल सकता है फिल्म खलनायक की जाबाज पुलिस ऑफिसर गंगा को, या फिल्म अंजाम की सताई हुई शिवानी चोपड़ा को, या फिल्म मृत्युदंड की केतकी सिंह को, जो अपराध और अत्याचार के खिलाफ चुनौती बनकर खड़ी हो जाती है।
1: हम कुछ पूछ रहे हैं आपसे।
2: देखिए, जाने दीजिए हमको, दीदी का तबीयत ज्यादा खराब है।
1: हमको भी कुछ बात करना है।
2: वो हम बाद में भी कर सकते हैं।
1: बाद में नहीं, अब भी।
2: भगवान के लिए अभी ये बहस मत उठाइए, दीदी को जरूरत है हमारा।
3: देखिए श्रीमती जी, अपना औकात में रहिए, हमरा मरद बनने का कोशिश मत कीजिए।
2: औकात को ताकत का तराजू में तोड़ने का कोशिश मत कीजिए। आप हमारे पति हैं, परमेश्वर बनने का फूल मत कीजिए।
0: 1994 में माधुरी दीक्षित ने एक बार फिर राशि प्रोडक्शंस की फिल्म की हम आपके हैं कौन। सलमान खान के साथ ये उनकी एक और हिट मूवी थी, जिसके लिए उन्हें मिला तीसरा फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड।

साल 1997 लेकर आया भावनात्मक उथल पुथल से जूझते तीन किरदारों की फिल्म दिल तो पागल है। इस फिल्म में माधुरी दीक्षित के साथ शाहरुख खान और करिश्मा कपूर थे। फिल्म जबरदस्त हिट हुई और माधुरी दीक्षित ने जीता 4th फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड।

1999 में माथुरी दीक्षित अमेरिका के कार्डियोवैस्कुलर सर्जन डॉक्टर श्रीराम माधव नेने के साथ विवाह बंधन में बंध गईं।

प्रेम त्रिकोण पर आधारित माधुरी दीक्षित की फिल्मों में सन 2000 की फिल्म पुकार का जिक्र भी आता है, जिसमें प्रेम में हारी ईर्ष्या दग्ध अंजलि के रूप में उनकी जमकर प्रशंसा हुई।

माधुरी दीक्षित एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो हर उम्र हर वर्ग के दर्शकों की फेवरेट रही हैं। 2001 में मशहूर चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन साहब ने उन्हें लेकर फिल्म गजगामिनी का निर्माण किया। इसी साल रिलीज हुई राजकुमार संतोषी की फिल्म लज्जा, जिसमें जानकी के रोल में उन्हें बहुत सराहा गया।

0: देश हो या विदेश, माधुरी दीक्षित की फिल्मों का जबरदस्त क्रेज रहा है। 2002 में फिल्म देवदास आई, जिसमें माधुरी दीक्षित ने चंद्रमुखी की भूमिका निभाई। इस फिल्म में कथक नृत्यांगना माधुरी दीक्षित के अभिनय को भी बहुत प्रशंसा मिली। उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के अवार्ड से नवाजा गया।
1: धाई शाम रोक लई, रोक लई, रोक लई, धाई शाम रोक लई, और चक मुख चूम लई, मुख चूम लई, मुख चूम लई, सर से मोरी चुनरी गई, गई गई, सर से मोरी चुनरी गई, सरक सरक सरक, सरक सरक सरक, सरक सरक।
0: फिल्म देवदास के बाद माधुरी दीक्षित अपने परिवार के साथ अमेरिका चली गईं। वहीं रहते हुए उन्होंने एक फिल्म साइन की। खबर मिलते ही एक बार फिर रुपेले पर्दे पर उन्हें देखने के लिए फैंस बेकरार हो गए और सन 2007 में उनकी

2012 में वो वापस भारत लौटी और 2014 में रिलीज हुई आलोचकों द्वारा प्रशंसित फिल्म डेढ़ इश्किया, जिसमें माधुरी दीक्षित के साथ नसीरुद्दीन शाह, अरशद वारसी और हुमा कुरैशी नजर आए।

0: साल अभिनेत्री जूही चावला के साथ माधुरी की फिल्म आई गुलाब गैंग, जिसमें वुमन एक्टिविस्ट के रोल में उनके सशक्त अभिनय की बहुत सराहना हुई।
1: जैसे तिल में तेल है, चों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, तू जाग सके तो जाग। जुर्म जुर्म होता है और इंसाफ इंसाफ होता है। हमारे यहाँ कहावत है, डंडा सबका पीर होता है।
0: 2018 में माधुरी दीक्षित पहली बार एक मराठी फिल्म में नजर आईं। फिल्म का नाम था बकेट लिस्ट। इस फिल्म में एक बार फिर माधुरी दीक्षित के अभिनय की धाक जम गई।

2019 में एडवेंचर कॉमेडी टोटल धमाल में वो एक बार फिर अजय देवगन और अनिल कपूर के साथ नजर आईं। 2019 में ही रिलीज हुई फिल्म कलंक में माधुरी दीक्षित के अभिनय की सराहना हुई।

सक्रियता के अलावा माधुरी दीक्षित ने जज के रूप में रियलिटी डांस शोज किए हैं। साथ ही वो अपनी प्रोडक्शन कंपनी के प्रोजेक्ट्स में भी व्यस्त रहती हैं। अपने अभिनय और नृत्य के साथ निखरती मेस्मराइजिंग माधुरी दीक्षित हर रोल में सफल।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेत्री माधुरी दीक्षित पर। शोध आलेख और स्वर राजुल का था। प्रस्तुति सहयोग मिला आकांक्षा सिंह से और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान
2: और बीच में एक गैप था। लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

कार्यक्रम आज के फनकार अभी आप सुन रहे थे हमारे विविध भारती के मुंबई केंद्र से। अगला कार्यक्रम बस थोड़ी देर में।

ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारी स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बज चुके हैं। अब लीजिए पेश है हिंदी एल्बम सॉन्ग्स पर आधारित कार्यक्रम रस रंग। रस रंग कार्यक्रम का पहला गाना हमने लिया है एल्बम कैसे बताएं हमसे। इस गाने को गाया है निकिता गांधी ने, रश्मि विराग के बोल हैं और संगीत दिया है जीत गांगुली ने।

रसरंग कार्यक्रम का पहला गाना अभी आपने सुना निखिता गांधी की आवाज में। एल्बम का नाम था कैसे हम बताएं। रश्मि विराग के शब्द थे और संगीत निर्देशन था जीत गांगुली के। कार्यक्रम का अगला एल्बम गाना हमने लिया है एल्बम खुशी जब भी तेरी। आवाज है जुबिन नौटियाल की। AM तुराज के शब्द हैं और रोचक कोहली के संगीत हैं।

श्रोताओं, अभी आपने यह खूबसूरत एल्बम गाना सुना जुबिन नौटियाल की आवाज में। एल्बम का नाम था खुशी जब भी तेरी। एम तुराज के शब्द थे और रोचक गांगुली ने इसे संगीत से सजाया था। कार्यक्रम का अगला एल्बम सॉन्ग हमने लिया है फिल्म एल्बम विद इन यू से बैजू मंगेशकर के आवाज में। आइए सुनिए यह बेहतरीन एल्बम गाना। ख्वाजा गुलाम फरीद के शब्द हैं और बैजू मंगेशकर ने इसे संगीत से सजाया है।

श्रोताओं, रसरंग कार्यक्रम में अभी आपने सुना बैजू मंगेशकर की आवाज में एल्बम विद इन यू का या एल्बम गाना। संगीत है बैजू मंगेशकर के और इसे लिखा था ख्वाजा गुलाम फरीद ने। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से और हमारे श्रोता इस वक्त सुन रहे हैं हिंदी एल्बम सॉन्ग्स पर आधारित कार्यक्रम रसरंग। श्रोताओं, रसरंग कार्यक्रम के शेष गाने आप सुनेंगे इस संदेश के बाद।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: संदेश के बाद अब आइए रसरंग कार्यक्रम में सुनते हैं बैजू मंगेशकर की आवाज में एल्बम विद इन यू का एक और नगमा। हसरत साहू सैन के शब्द हैं और संगीत दिया है बैजू मंगेशकर ने।

रसरंग कार्यक्रम की अगली और आखिरी पेशकश एल्बम क्या खता थी मेरी से, आवाज दिलराज कौर की है, सानी असलम के शब्द हैं और आजम अली मुकर्रम ने इसे संगीत से सजाया है।

तो श्रोताओं, इसी एल्बम सॉन्ग्स के साथ एल्बम सॉन्ग्स पर आधारित कार्यक्रम रसरंग अब यहीं संपन्न होता है। एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:30 हो चुके हैं। अब लीजिए पेश है सदाबहार हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट तराने। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म मासूम से अनूप घोषाल की। आवाज़ें गुलजार के शब्द हैं और संगीत दिया है आरडी बर्मन ने।

चित्रपट तराने कार्यक्रम का पहला गीत अभी आपने सुना। फिल्म मासूम से आवाज थी अनूप घोषाल की, गुलजार के शब्द थे और संगीत दिया था आरडी बर्मन साहब ने। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाजों में। फिल्म का नाम है नूरी। इसे गीत को लिखा है जानिसार अख्तर ने और संगीत से सजाया है खयाम ने।

यह खूबसूरत गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाजों में। फिल्म का नाम था नूरी, जानिसार अख्तर के शब्द थे और खयाम ने इसे संगीत से सजाया था। श्रोताओं, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से और आप इस वक्त सुन रहे हैं सदाबहार हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट तराने। चित्रपट तराने कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है मन्ना डे की आवाज में। फिल्म का नाम है बादल, जावेद अख्तर साहब के शब्द हैं और शंकर जयकिशन ने इसे संगीत से सजाया है।

यह सदाबहार गीत मन्नाडे की आवाज में अभी आपने सुना, जिसे हमने लिया था फिल्म बादल से। शब्द जावेद अख्तर के थे और संगीत निर्देशन था शंकर जयकिशन का। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला और आखिरी पेशकश फिल्म गंगा की लहरें से। आवाजें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। मजरू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा है और संगीत दिया है चित्रगुप्त ने।

तो सोचता हूँ इसी गीत के साथ सदाबहार हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट तराने अब यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। हमारी स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:55 हुए हैं। अब कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर हम एक नजर डाल लेते हैं।

श्रोताओं, कल प्रातःकालीन सभा की शुरुआत हम करेंगे सुबह 5:51 से। 6:05 पर आप सुनेंगे वंदनवार चिंतन, श्री रामचरित मानस पाठ, संगीत सरिता और भूले बिसरे गीत। सुबह 7:30 पर आप सुनेंगे प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास।

सुबह 8 बजे आप सुनेंगे समाचार प्रभात हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 8:20 पर आप सुनेंगे पत्रों पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम पसंद आपकी। 8:45 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे आकाशवाणी के पटना केंद्र से।

फिर 5 मिनट पर आप सुनेंगे साप्ताहिक कार्यक्रम विकास के सोपान। 10:30 पर आप सुनेंगे भोजपुरी एल्बम लोकगीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी। 10:45 पर आप सुनेंगे भोजपुरी एल्बम सॉन्ग्स पर आधारित कार्यक्रम रस धार। 5:30 पर आप सुनेंगे युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी। 6:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम किसानवाणी। प्रायोजक होंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। सांझ गीत कार्यक्रम का आनंद आप लेंगे। 6:30 पर 7:00 आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम ममता का आंचल। 7:50 पर आप सुनेंगे फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम हेलो मनपसंद। 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के फनकार हमारे विविध भारती के मुंबई केंद्र से। रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे सदाबहार हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट तराने। तो श्रोताओं, अभी हम एक नजर डाल रहे थे कल की सभा में प्रसारित होने वाले खास कार्यक्रमों पर, अब एक नजर डाल लेते हैं कल के मौसम पर। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 15 मई को जिले में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी, 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने एवं हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान है। अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। तो श्रोताओं, अभी हम एक नजर डाल रहे थे कल के मौसम पर। एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में हमारी स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी का समाचार दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं। संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनयिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान एएमसीए निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख

0: स्तंभ बनकर उभर रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। विधानसभा में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने प्रश्नकाल, बहस, विधेयकों और बजटों के सीधे प्रसारण की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस राज्य की जनता को विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की गतिविधियों को देखने का पूरा अधिकार है और ये सत्र के सीधे प्रसारण के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जा सकता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीआई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय पूर्णिमा सामंत कड़ाकोटी। Prime Minister Narendra Modi today reiterated India's support for safe and unimpeded navigation through the Strait of Hormuz, underscoring its importance for regional stability as well as global energy and food security. After high-level talks with UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi, Prime Minister Modi strongly condemned recent attacks on UAE.
2: Hormuz ko free, open aur safe banaye rakhna. ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: Prime Minister Modi arrived in UAE this morning on the first leg of his five-nation tour covering the UAE and Europe. He was received by UAE President at the presidential airport and accorded a ceremonial welcome with UAE F-16 fighter jets escorting his aircraft as it entered Emirati airspace. Mr. Modi expressed gratitude to the UAE leadership for the warm reception, noting in a social media post that he looked forward to strengthening cooperation across key areas including energy, investment and supply chains. Concluding his UAE visit, the Prime Minister left for the second leg of his tour to Netherlands. Thereafter, Mr. Modi will visit Sweden, Norway and Italy during the six-day tour. Foreign ministers of BRICS have reiterated their commitment to reform and strengthen global governance. In the outcome document, the ministers called for a more equitable, democratic and accountable international and multilateral system. They noted rising global polarization and distrust and urged collective action to strengthen international peace and security. The ministers also call for addressing global challenges through diplomatic and political means to reduce conflict risks and stress the importance of conflict prevention by tackling root causes. The ministers stress their commitment to uphold multilateralism as necessary to address challenges threatening their shared planet and future, such as climate change.